श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म सिर्फ तुमसे ये गीत। गाय कलाकार हैं अलका याग्निक। गीत के लिए संगीत नदीम श्रवण ने दिया है और गीत लिखा है समीर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस माता की भेंट के साथ, जिसे गाया है अशोक चौधरी ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी अब एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, आपके सुझावों और शिकायतों का कार्यक्रम आप और हम आज आप सुनेंगे 11:05 पर। इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सुझाव कार्यक्रम संबंधी दे सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारे स्टूडियो का नंबर, जो रहेगा 01892224391। जी हाँ, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 01892224391। तो कार्यक्रम में कॉल करना ना भूलें आज प्रातः 11:05 पर। सूचना समाप्त हुई।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाक प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
0: लहरू राम सांख्यान की आवाज में अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: पवन डोगरा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क

0: में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: हिमाचली गीतों व लोक गीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: कार्यक्रम संबंधी अब एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, आपके सुझावों और शिकायतों का कार्यक्रम आप और हम आप सुनेंगे आज 11:05 पर। इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सुझाव कार्यक्रम संबंधी दे सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारे स्टूडियो का नंबर 01892224391। जी हाँ, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 01892224391। तो कॉल करना ना भूलें प्रातः 11:05 पर। सूचना समाप्त हुई।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
0: कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं ऋषि कुमार को।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। न्यायालय ने खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की कीमत और उन पर छपे MRP के बीच भारी अंतर पर कई बार सवाल उठाया और इससे मरीजों पर वित्तीय बोझ पर चिंता व्यक्त की और एक प्रभावी नियामक ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल यानी 14 अक्टूबर को लाहौल स्पीति जिला के काजा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे रोंगटोंग में 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री छिदांग तंगती से खार तेलिंग और तंजित से हिक्किम सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा काजा के आइस हॉकी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री 15 अक्टूबर को शिमला लौटेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश का माहौल पूरी तरह भाजपा के पक्ष में है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार केवल मित्रों के हित साध रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में भाजपा को मिली शानदार जीत का फायदा विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा।
1: सरकार के बारे में बड़ी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रह गई। अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के परिणाम निकले, आपने नतीजा देखा है। 12 जिला परिषद में से 11 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। नगर निगम के चुनाव हुए, 4 में से 3 जगह भाजपा जीती है। तो कांग्रेस बची कहां? सफाया तो कर दिया है और आने वाले समय में कसर रही होगी तो उसको विधानसभा के चुनाव में पूरा करेंगे। बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार।
0: प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर केंद्र से मिल रही वित्तीय सहायता का सदुपयोग करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। एक बयान में पार्टी उपाध्यक्ष और विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कुल्लू में तथ्यों के साथ राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, जिनका मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। परमार ने कहा कि केंद्र ने नेशनल हाईवे, रेल परियोजनाओं, एम्स बिलासपुर, जायका स्वास्थ्य परियोजना और किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना से विकास को गति दी है और राज्य सरकार को इन परियोजनाओं पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। दूसरी ओर सरकार ने भाजपा के आरोपों को तथ्यहीन व राजनीति से प्रेरित बताया है। शिमला से जारी एक संयुक्त बयान में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 2017 से 2022 तक भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को केवल झूठे वायदे दिए, धरातल पर कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं उतारी। उन्होंने कहा कि जब दिसंबर 2022 में वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला तो प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और लगभग 10,000 करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां थी और यदि पूर्व भाजपा सरकार सीमित संसाधनों का दुरुपयोग ना करती तो ये स्थिति ना आती। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आकांक्षी जिला चंबा में तेज गति से विकास हो रहा है। चंबा में उन्होंने कहा कि पठानकोट चंबा भरमौर नेशनल हाईवे के सुदृढ़ीकरण और पांगी के लिए स्ट्रेटेजिक सड़क के कार्य में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चंबा जिले के स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं शुरू कर उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा।
2: आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट जो है चंबा का, अभी मैं एक और प्रोजेक्ट ला रहा हूँ जिसमें 25 हमारे स्कूल जो है वो डिजिटाइज हो रहे हैं। कल मैं चिनेट में उसका उद्घाटन कर रहा हूँ, 5 साल होंगे और उसके बाद होंगे। उसके बाद मैं पांगी के भी स्कूल जो है 6 सीनियर सेकेंडरी कर रहा हूँ मैं डिजिटाइज।
0: राज्य के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ है। इस बीच राज्य में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से एक बार फिर बारिश व बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में अंधड़ चलने व बिजली गिरने की आशंका जताई है। इस दौरान उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने के भी आसार है। विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में अंधड़ व बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं और हाजिर हैं हम लेकर कार्यक्रम आप और हम। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम लाइव फोन इन है और इस कार्यक्रम में श्रोताओं के सुझाव और उनकी शिकायतें, उनकी राय हम आमंत्रित करते हैं और हमारे श्रोता हमें फोन कर सकते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में स्टूडियोज में उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत।
4: शुक्रिया नीलम
3: जी। जी श्रोताओं को हम बता दें एक बार, स्टूडियोज़ का नंबर 01892224391। इस नंबर के माध्यम से श्रोता हम तक पहुंच सकते हैं और कोई भी कार्यक्रमों से संबंधित

0: सुझाव है, कोई राय है या कोई शिकायत उन्हें है तो हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात साझा कर सकते हैं। हेलो हेलो,
1: नमस्कार जी,
0: हाँ जी नमस्ते जी, नाम बताएं।
1: मैं देसर बोल रही हूँ ब्रेड से।
0: जी देशराज जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं?
1: मैडम जी, कहना काफी दिन 3 4 महीने हुई है जेड़े प्यार होना ना भगती कार्यक्रम, तो
0: हाँ जी
1: उस जो पहाड़ी बिच नहीं कोई कहना माता जी भेट ना बाबा जी भेट
0: जी जी जी
1: हाँ शिव जी का भाषण ये नहीं सुनाते।
0: जी देशराज जी, आ, आ, कभी कभी होता है, छूट जाता है, लेकिन अक्सर सुनाते ही हैं लगभग। कोशिश करेंगे, आपने फोन किया है और
1: नहीं
0: आपने। जी
1: मैं तो आगा ही सुन रहा ही भैया,
0: जी जी
1: मैं सुने काफी दिन हुई है,
0: जी कल
1: कभी
0: ही माता की भेंट
1: कभी याद
0: चली
1: होती
0: है।
1: महीने बाद सुना ही नहीं,
0: जी चलिए,
1: मैं अभी
0: आपका
1: मेहरबानी करके
0: सुझाव,
1: भाई
0: जी देशराज जी, आपका सुझाव हमने सुन लिया है। हमारे कार्यक्रम प्रमुख भी साथ बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। तो अब पूरी कोशिश होगी कि हर कार्यक्रम में एक पहाड़ी भजन शामिल किया जाए।
1: हाँ जी, माता जी भेंट हो जाए या बाबा जी की भेंट हो
0: जी
1: जाए या
0: जी
1: शिव जी का भजन हो जाए,
0: जी देशराज जी, बिल्कुल आपने
1: क्योंकि
0: कॉल किया, शुक्रिया आपके सुझाव। जी
1: क्योंकि अपनी भाषा से जरा गीत संगीत सुनना हो तो बड़ा मजा आता
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी
1: धन्यवाद
0: बात हम मानेंगे। कॉल के लिए शुक्रिया जी।
1: जी,
0: जी
1: धन्यवाद।
0: जी श्रोताओं, आप भी फ़ोन कर सकते हैं, 01 8 9 2 2 2 4 3 9 1, ये स्टूडियोज़ का नंबर है। और कार्यक्रमों के संबंध में कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं या कोई भी सुझाव हो, आपके पास कोई राय है या कुछ शिकायत आपको है, तो उसके बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं। और हर महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को ये कार्यक्रम आप और हम लेकर हम हाजिर होते हैं, और इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जी जितेंद्र जी, कुछ एक परिवर्तन हमने कार्यक्रमों में किए हैं, तो वो श्रोताओं को हम बता दें।
1: जी जरूर,
0: जी जैसे कि इस कार्यक्रम में हमने परिवर्तन किया है, इस कार्यक्रम का समय पहले कुछ और था, लेकिन अब ये कार्यक्रम प्रत्येक महीने दूसरे और चौथे मंगलवार को आएगा। और पहले मंगलवार को हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम खेलों से जुड़ी जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाएंगे, खेल जगत। और
1: तीसरे
0: तीसरे, जी तीसरे मंगलवार को हम विकास संवाद कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। और श्रोताओं को बताएं इस कार्यक्रम में क्या विशेषता रहेगी, क्या कुछ खास रहेगा?
1: इस कार्यक्रम में हम सरकार की नीतियों के बारे में बातचीत करेंगे,
0: जी सरकारी नीतियां, योजनाएं,
1: योजनाओं के बारे में
0: जी
1: बातचीत की
0: बिल्कुल,
1: जाएगी।
0: इसके बारे में बात की जाएगी। और इस कार्यक्रम में आप भी हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ बात साझा करना चाहते हैं, कोई सुझाव है, कोई जानकारी है, या किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर आप हैं, तो उसके लिए भी आपका खुले दिल से स्वागत है। आप हमें कॉल कीजिए, 01 8 9 2 2 2 4 3 9 1, ये स्टूडियोज़ का नंबर है, और इस नंबर के माध्यम से आप हमारे स्टूडियोज़ तक पहुँच सकते हैं। हेलो, हाँ जी
1: हेलो,
0: नमस्ते जी, परिचय अपना दें।
1: नमस्कार जी,
0: जी
1: मैं सुरेंद्र भाड़िया एडवोकेट बोल रहा हूँ जी,
0: जी
1: जी
0: बोलिए जी
1: और मैं ये सुझाव देने जा रहा हूँ
0: जी
1: कि आजकल जो हॉट टॉपिक चला है वो
0: आपसे एक छोटी सी
1: है। हाँ
0: गुजारिश है, थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम कम करें या थोड़ा आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई दे थोड़ा।
1: जी, बहुत धन्यवाद, मैं दोबारा जा रहा हूँ।
0: हाँ जी
1: मेरा आपसे निवेदन है
0: जी
1: कि जो सरकार हमारे जो इतना पैसा इस्तेमाल कर रही है कांगड़ा एयरपोर्ट के ऊपर, और उसका कोई सिस्टेमेटिक से वह निर्माण नहीं हो रहा है एयरपोर्ट का,
0: जी
1: और ये जो निर्माण का ये चढ़ा रहे हैं सिर पे, ये चढ़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? 132 KV पावर लाइन,
0: जी आपको बीच में रोकना चाहेंगे, इससे संबंधित हमारा मतलब कोई वो नहीं है, हमारा कोई लिंक नहीं है इस चीज़ से, कार्यक्रमों से संबंधित कोई अगर
1: नहीं
0: आप,
1: आप बोल रहे थे ना नीतियों के बारे में,
0: जी नहीं
1: तो
0: ये,
1: मैंने उसके ऊपर
0: जी
1: ही
0: नहीं
1: भाई है।
0: ये हमारा एक कार्यक्रम आ रहा है, अभी हम शुरू करेंगे इसको नेक्स्ट
1: अच्छा,
0: मंगलवार, तो इसमें हम सरकारी नीतियों की बात
1: नीतियों के
0: करेंगे, जो
1: बारे
0: हाँ
1: में,
0: जी, सरकारी योजनाएं हैं उन पर बात की जाएगी, और किसी खास विषय को लेकर हम आया करेंगे कार्यक्रम में। लेकिन ये जो आपकी समस्या है, इसका

0: समाधान हम नहीं कर
1: नहीं
0: सकते, माफी
1: समस्या नहीं है
0: चाहेंगे। जी
1: मेरी,
0: जी जी
1: नहीं समस्या नहीं है मेरी,
0: हाँ जी
1: ये मैं सार्वजनिक रूप से ये देख रहा हूँ कि जो हमारी ये पॉलिसीज हैं, पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं,
0: जी
1: लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद हो जा रहा है। अभी हम मकान बना रहे हैं
0: जी
1: और आप पेपरों में भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं कि 15 किलोमीटर हवाई अड्डे से जो एरिया है वो डिस्कार्ड हो
0: चलिए
1: जाएगा,
0: चलिए, आपकी
1: वो
0: बात
1: कैसे
0: हम
1: हल होगा?
0: बीच में रोक रहे हैं। हम
1: जी
0: जिस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं विकास संवाद, अगर उसमें हो सका इस विषय से रिलेटेड कोई हम किसी जो अधिकारी गण है उनसे बात कर पाएँ, उनको आमंत्रित कर पाएँ और उनसे इस बारे में कुछ जान पाएँ, तो कोशिश करेंगे कि आप
1: थैंक
0: जो
1: यू।
0: चाहते हैं, आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो, जो भी आपका प्रश्न है, आपका किंतु परंतु मन में है, उसको हम समाधान करने की कोशिश करें। जी श्रोताओं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, 01-892-22-4391, ये हमारे स्टूडियोज का नंबर है। और श्रोताओं को हम बता दें कि प्रत्येक शुक्रवार को हम एक नया कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं श्रोताओं के लिए, और ये कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार 11:05 पर हुआ करेगा। और इस कार्यक्रम का बहुत प्यारा सा नाम है, रिमझिम, इस कार्यक्रम को हमने नाम दिया है। और इस कार्यक्रम में फिल्मी गीत तो हमारे श्रोता बहुत सुनते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको गैर फिल्मी यानी नॉन फिल्मी जो एल्बम्स होती हैं उनके गीत सुनवाएंगे। हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार
0: जी,
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते।
1: जी
0: हमारे
1: मैं अभी
0: कार्यक्रम
1: मतलब
0: प्रमुख भी हमारे साथ हैं, जितेंद्र जी, आप उनसे भी बात करें।
1: जितने सर नमस्कार।
2: नमस्कार जी नमस्कार।
1: सर मैं विनोद शर्मा बोल रहा हूँ नदौन के पास से। सर
2: हाँ जी बोलिए जी
1: हम ना सुबह 6 बजे FM ऑन करते हैं धर्मशाला, तो
2: जी।
1: इसमें सुबह सुबह ना भजन आते हैं, पहाड़ी भजन, कभी जानम जय सिंह की आवाज में, राणा जी की आवाज में, अधीर शर्मा की आवाज में। अब कुछ दिनों से ना ये बिल्कुल नजारद हो चुका है,
2: ठीक है जी
1: और ये सुबह पे आग भी बंद हो गया जो आता था पौने 8 बजे 7:40 पे,
2: जी
1: और एक नौखी गल नौखी गल ना आप तो अच्छा अच्छा हासा नटकाती थी, एक वो
2: जी ठीक है जी
1: ज्ञानवर्धक थी,
2: जी
1: और बाकी तो प्रोग्राम आके बहुत बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है। हम मैक्सिमम ये चाहते हैं कि एक सुबह पे आग और एक भजन सुबह सुबह ही पहाड़ी भाषा में,
0: जी
1: और नौखी गल शुरू हो जाए दोबारा। जी
2: आप आपको ये कहना चाहेंगे जो शुभ आ गया उसका हमने नाम चेंज किया, उस कार्यक्रम का नाम हिमगुंजन रख दिया अब, और उसका समय 8:30 कर दिया सुबह।
1: साढ़े हाँ 8:30 आता सर
2: हाँ
1: अभी।
2: वो शुभ आ का ही नाम चेंज किया है और
1: अच्छा हाँ
2: उसका टाइम ड्यूरेशन भी हमने बढ़ा दिया है
1: टाइम तो बढ़ गया उसका, तो ठीक है सर।
2: जी, 15 मिनट और बढ़ा दिया है।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
2: और दूसरी बात जो आप कह रहे पहाड़ी भजन, वो हम ध्यान रखेंगे कि ऑलमोस्ट रोज एक एक भजन तो चले पहाड़ी,
1: अच्छा, और एक ही नोखी लोग नोखी गल्ला नाटक,
2: उसके हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे किसी नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। उसके लिए थोड़ा सा हमें समय लगेगा लेकिन वो शुरू हो जाएगा।
1: ठीक है सर। एक शाम के टाइम आता ना शनिवार को मौजा करा लिया पहाड़ी फरमाइश, वो भी चेंज कर दिया उसका भी, और मिंजरा भी चेंज कर दिया लेडीज वाला भी,
2: नहीं वो तो चल रहा है।
1: मिंजरा में भी ना वो पहले गाने आते थे वो बरसा कटोर से, वो मुझसे सवाल जवाब करते हैं तो गाने कम देते हैं भजन वगैरह वो भेंट वगैरह।
2: कोई बात नहीं, उसका ध्यान रखा जाएगा।
1: हाँ जी, और शनिवार को आता ना मोजेंग राज में फरमाइश, आपकी फोन पे फरमाइश जो पूरी करते थे वो भी चेंज कर दिया थोड़ा।
2: उसे हम कोशिश करेंगे कि उसमें फरमाइशी ही लिया जाए।
1: वैसे तो हमें चलो आपकी मजबूरी होती है कि जो प्रोग्राम सेट करने होते हैं आपको, मुझे आपको भी पीछे से प्रोग्राम आते
2: हमें
1: हैं।
2: भी थोड़ा सा बदलाव चाहिए ना, बदलाव तो नीति है,
1: हाँ नीति तो है सर, ये तो हम भी मानते हैं।
2: लेकिन कोशिश करेंगे कि उसमें थोड़ा सा फरमाइशी हम डाला जाए। और
1: ठीक है सर जितेंद्र जी, थैंक यू।
2: ठीक है जी,
0: जी
2: ठीक है।
0: कॉल के लिए शुक्रिया जी। बाकी श्रोता भी हमसे जुड़ सकते हैं, और श्रोताओं का एक जितेंद्र जी खास ये है कि तवज्जो 7:40 पे जो हमारा पहाड़ी गीतों का प्रोग्राम चलता था उसके लिए, तो श्रोताओं को एक बार फिर से हम बता दें कि जो 7:40 पे शुभ्याग कार्यक्रम आता था उसका नाम परिवर्तन किया गया है, हिमगुंजन उस कार्यक्रम का नाम है, और उस कार्यक्रम का समय 8:30 सुबह किया गया है। और खुशी की बात यह है कि 15 मिनट इजाफा हुआ है उस कार्यक्रम में, यानी 30 मिनट का अभी ये कार्यक्रम है, और 8:30 से 9 बजे तक आप लोकगीतों का आनंद इस कार्यक्रम में ले सकते हैं। हेलो
3: हेलो नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते।
3: मैडम जी मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, जो आपने सुबह 7 बजे प्रोग्राम रखा है ना नया, ये गाने
0: जी
3: इसमें तो फिल्मी नहीं दे रहे आप, गैर फिल्मी दे रहे, तो ये कुछ मजा नहीं आ रहा मैडम जी।

0: जी, इसमें फिल्मी ही गीत चल रहे हैं, गैर
1: ये
0: फिल्मी
1: जो
0: गीत नहीं चल रहे हैं।
1: पुराने फिल्मी गीत देते थे वो तो आपने खत्म कर दिए। हाँ
0: जी
1: तो ये तो नए जो है ना, ये नए बच्चों के सुनने के हैं। रेडियो
0: जी
1: हमेशा जो सियाणा आदमी होता है वही सुनता है, जो एज होता है वही सुनता है। आजकल तो मोबाइल पर बच्चे लगे रहते हैं, वो कहाँ सुनते रेडियो।
0: जी आप अपना नाम बताएंगे एक बार?
1: हाँ जी, मेरा नाम जगदीश राज है, मैं पठानकोट से बोल रहा हूँ।
0: जी जगदीश जी,
2: जगदीश जी, ऐसा है जो हमारी श्रोता है ना, वो हर आयु के हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, तो हमने हर आयु के लोगों के लिए ध्यान रखा गया है कि उसमें नए गाने भी चलें और पुराने भी चलें।
1: पुराने चलते नहीं जी, अब नए। मैं रोज सुबह 7 बजे 6 बजे रेडियो
2: नहीं
1: लगाता हूँ आपका, मैं बिल्कुल सुनता हूँ। और
2: जी
1: दूसरा,
2: जी
1: जो ये पहाड़ी आपने प्रोग्राम रखा है, ये
2: जी
1: प्रोग्राम के नाम तो आपने बदल दिए,
2: जी
1: लेकिन
2: जी
1: गाने आप बिल्कुल ही देसी चला रहे हैं ना, बिल्कुल ही देसी चला रहे हैं। ना करनैल राणा कहता है, ना वो दूसरे शेर सिंह कहता है, ना धीरज शर्मा कहता है। तो इसमें बिल्कुल ही, अभी मैं गाना सुन रहा था, इना जालियां बुनी लिया जाल, जाले पर रोए मछली। क्या गाने हैं जी, ऐसे ऐसे क्या गाने।
0: जी
1: जो अच्छे अच्छे गाने हैं उनको दीजिए आप।
0: जी जगदीश जी, देखिए रोटेशन एक होता है, मतलब हम लोग बदल बदल के कलाकारों के गीत चलाते हैं, और एक ही सिंगर के गीत लगातार नहीं चल सकते। करनैल राणा जी के गीत चलते हैं, सुनील राणा जी के भी चलते हैं, जो हमारे पुराने कलाकार हैं उनके गीत यथा चल रहे हैं, वो जैसे चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बीच बीच में हाँ नया हमारे पास जो मटेरियल आया है उसमें से भी नए कलाकारों को हम लोग पेश करने की कोशिश करते हैं, कि हमारे जो उभरते हुए कलाकार हैं वो भी जनता को पता चले कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं हिमाचल में जो लोकगीतों को गाते हैं और हमारी जो लोक संस्कृति है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि पुराने कलाकारों को भी शामिल करें। आपने बात की है तो आपके इस सुझाव पर हम गौर फरमाएंगे, और आपको पुराने गीत भी सुनने को मिलेंगे और पुराने कलाकारों के गीत भी सुनने को मिलते रहेंगे।
1: हाँ तो ये सुबह का प्रोग्राम है जी, इसको भी थोड़ा चेंज कीजिए। पहले बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा था,
0: जी
1: अब बदल के दे दिया, तो ये नए तो हम बूढ़े कहाँ जाएं।
0: जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश का भी ख्याल रखा जाएगा, और आपने आज कॉल किया, कॉल के लिए शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: जी जी बहुत सी श्रोताओं को शिकायत है कि नए गाने चल रहे हैं, पुराने नहीं चल रहे हैं, लेकिन कभी नए चलते हैं, कभी पुराने चलते हैं, थोड़ा मिक्स सा है सब कुछ, और सब कुछ ज़रूरी है जीवन में, क्यों जितेंद्र जी?
2: जी जरूर,
0: जी नयापन भी ज़रूरी है और
2: एक और
0: पुराना।
2: कॉल आ गई।
0: जी बिल्कुल, हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ जी
2: हेलो
0: नमस्ते जी।
3: मैम, नमस्कार
0: जी,
3: मैम। क्या बोलते, प्रोग्राम तो आपके अच्छे हैं, सब बड़े चल रहे हैं, लेकिन एक विज्ञापन बहुत आते हैं आपके, सुबह से लेके जब वो करते हैं 7 बजे से लेके, तो विज्ञापन बहुत आते हैं पूरे सारा टाइम, कितना टाइम तो विज्ञापन में ही खत्म हो जाता है प्रोग्राम का।
0: जी टीवी आप देखते हैं?
3: टीवी देखते हैं मैम,
0: जी देखिए
3: लेकिन
0: ना, टीवी में जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं
3: आप
0: उसमें बहुत ज़्यादा विज्ञापन आते हैं, और वही जो होता है कमाई का जरिया होता है ना, वैसे ही हमारा भी है, हमारे यहाँ से विज्ञापन चलते हैं तो
3: मैम
0: इसी
3: वो तो ठीक
0: से
3: है, लेकिन
0: रेवेन्यू
3: एक
0: आता
3: बात
0: है।
3: है,
0: जी
3: नहीं मैम, मैम देखो देखो, जैसे विविध भारती का प्रोग्राम चलता है 1 बजे से लेके 5 बजे तक बिना रुकावट चलता है, तो उसमें भी मजा आता है हमारे को सुनने के लिए, तभी तो बोलने की वो भी इतना अच्छा चलता है, तो जैसे उसमें भी विज्ञापन बहुत आते हैं और बार बार एक ही विज्ञापन आता है थोड़ी थोड़ी देर में,
0: जी
3: तीन चार
0: अब
3: मिनट बाद।
0: इस पर हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पीछे से जो विज्ञापन आएंगे वो हमें चलाने ही पड़ेंगे, और एक कार्यक्रम के लिए जितना हमारे पास लिमिट है वो हमें पूरा करना पड़ेगा उसमें, ये तो हमारी मजबूरी
3: जी
0: है, इसमें हमारे हाथ बंधे हैं। कार्यक्रमों से जुड़ा अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं या कोई आपका,
3: वो तो ठीक है, लेकिन हाँ बस ये है, बाकी तो चलो जो भी है ठीक है। थैंक
0: चलिए ठीक है, कार्यक्रम में कॉल के लिए शुक्रिया जी।
3: यू।
0: जी 01892224391 ये स्टूडियोज़ का नंबर है, और आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जी जितेंद्र जी, अब श्रोताओं को हम बता दें कि सुबह सुहानी कार्यक्रम का समय जो है वो बढ़ गया है, 7:10 से ये कार्यक्रम शुरू होता है, और 8 बजे तक यानी पूरे 50 मिनट तक इस कार्यक्रम में हम मनोरंजन भी करते हैं और अच्छी से अच्छी जानकारी जो है वो श्रोताओं तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक कॉलर हमसे जुड़े हैं।
2: हेलो,
3: हेलो, हेलो,
2: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ जी सर जी, नमस्ते सर।
2: नमस्ते जी।
3: तो प्रोग्राम ना कैसे आ रही है जी, तो है हम तो हाँ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇਸ ਰਜੀ ਹੁੰਦੀ।

0: जी
1: तहसील
0: नोखी
1: में
0: लोग,
1: बसा हूँ
0: जी
1: बॉम्बे
0: नोखी
1: में।
0: लोग
1: हाँ
0: नोखिया गल्ला की बात कर रहे हैं आप।
1: जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: जी उस कार्यक्रम के लिए पहले भी सर ने कहा कि थोड़ा सा उस पर हम और काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा इसके लिए।
1: हाँ वो आपका बाकी अच्छे भी वो अच्छा रहेगा,
0: वो
1: रोका से आप
0: बेहतर रूप में
1: अच्छे
0: आपके
1: रहोगे।
0: सामने
1: हाँ जी,
0: प्रस्तुत किया जाएगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए।
1: हाँ जी, ठीक है
0: जी
1: सर।
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बस बाकी जो आपके प्रोग्राम सर अच्छा से वो नहीं आता एक।
0: जी ठीक है जी, कोशिश आपकी बात पर जल्दी अमल किया जाएगा और जल्दी ये कार्यक्रम सुनने को आपको मिलेगा। आज आपने कॉल किया, शुक्रिया जी। श्रोताओं आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, 01-892-22-4391 ये स्टूडियोज़ का नंबर है। और कुछ एक कार्यक्रमों में हमने बदलाव किए हैं और हमने वो श्रोताओं के साथ उन बदलावों को हम साझा कर रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव जो है हमारे केंद्र से किए गए हैं। श्रोताओं हमारे केंद्र से रात को 9:30 पर जो शुक्रवार को कार्यक्रम आते हैं उनमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है, जिनमें पहले और चौथे शुक्रवार को हिंदी नाटक रखा गया है। नाटक आप सुन सकते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार
0: हाँ जी नमस्ते जी
1: सर। मेरी ये थोड़ी टेक्निकल कंप्लेंट है जी। जी,
0: जी
1: मैंने गिरिंदर ठाकुर जी को भी ये बताई थी, कोई
0: जी
1: हल नहीं हुआ। जहाँ बात ये है, जब शिमला से न्यूज़ आती है ना इस चैनल पे, आपके धर्मशाला पे, तो
0: जी
1: आवाज कम हो जाती है। जब विज्ञापन आता है तब आवाज ज़्यादा हो जाती है।
0: जी
1: इसका हल कराया कराया जाए जी।
0: कोई बात नहीं, हम इसका हल सोचते हैं, क्योंकि
1: तो
0: ये
1: कम्युनिटी सिस्टम होगा ना आपका, जिसमें आपकी
0: जी
1: साउंड
0: जी जी
1: कंट्रोल होती होगी, तो उसका ऐसा होना चाहिए। हमें ना एकदम उठ के उसको वॉल्यूम कम करना पड़ता है, जब विज्ञापन आता है और जब खबर आती है, न्यूज आती है, तब बढ़ाना पड़ता है।
0: कोई बात नहीं, इस बात का ध्यान रखा जाएगा जी।
1: थैंक यू सर।
0: जी आपकी समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। आपने कॉल किया, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी हाँ, शुक्रवार रात के कार्यक्रमों की हम बात कर रहे थे, 9:30 पर पहले और चौथे शुक्रवार को नाटक आप सुन सकते हैं, हिंदी नाटक ये होंगे। और दूसरे शुक्रवार को फिल्म संगीत और पांचवें शुक्रवार को भी फिल्म संगीत और तीसरे शुक्रवार को तो आप राष्ट्रीय खेल पत्रिका का कार्यक्रम सुनते हैं, आकाशवाणी दिल्ली से जिसे रिले किया जाता है वो यथा समय रहेगा। और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, 01-892-22-4391 ये स्टूडियोज का नंबर है जी। और श्रोताओं को एक और हम जानकारी देना चाहेंगे, हेलो धर्मशाला कार्यक्रम जो हम लेकर आते हैं, जो सजीव फोन इन रहता था, उस दिन फोन लाइन में कुछ इशू होने की वजह से मंगलवार को बहुत कम श्रोताओं से हमारी बात हो पाती है, इसीलिए इस कार्यक्रम को अब रिकॉर्डेड रखा गया है और इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाया करेगी। अब इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग श्रोता लोगों को हम बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शनिवार को हम किया करेंगे और 1:15 से 1:45 तक ये रिकॉर्डिंग हुआ करेगी। और इस रिकॉर्डिंग में आप कॉल करके अपनी फरमाइश का गीत बता सकते हैं और ये गीत आप सुन सकते हैं मंगलवार को सुबह 9 बजे, कार्यक्रम होगा हेलो धर्मशाला। हेलो जी, 01-892-22-4391 01-922-22-4391 ये स्टूडियोज़ का नंबर है और इस नंबर को आप मिलाएं और आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ में आप सीधे पहुंच सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई आपका सुझाव है, कोई राय है, जानकारी किसी भी तरह की आप हमें देना चाहते हैं। श्रोताओं को बता दें कि रविवार को 11:05 पर पहले रविवार को धरोहर कार्यक्रम फिर से हमने शुरू किया है। इसमें हम किसी विशिष्ट स्थान का, किसी विशेष जगह के बारे में बहुत ही बढ़िया प्रारूप में जानकारी आप तक पहुंचाया करेंगे। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं और दूसरे रविवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तीसरे रविवार को साहित्य सुमन, चौथे रविवार को संगोष्ठी और पांचवें रविवार को शास्त्रीय संगीत का आनंद आप ले सकते हैं। 11:05 का ये समय रहेगा। एक कॉलर जुड़ने की कोशिश में है, बात करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत, नाम
1: मनोज
0: बताएं।
1: भाई नमस्कार, हमीद चंद बोल रहा जी।
0: जी
1: हाँ जी,
0: क्या कुछ कहना
1: ये
0: चाहेंगे
1: आप
0: कार्यक्रमों
1: और
0: के?
1: हम कार्यक्रम आप और हम
0: जी जी
1: जी जी जी
0: बिल्कुल।
1: बोलिए। अभी कोई जेडे नाटक वगैरह तो कुछ दिंदे थे, सभी बंद करते, गाने विच बड़े भारी बंद करी थे।
0: जी गाने तो नहीं बंद है लेकिन हाँ नाटक कुछ समय के लिए बंद हुआ है, जितेंद्र जी ने पहले भी कहा।
1: लोग गीत सुनांदे आज भी सुनांदे घंटा।

0: मिनट से 9 बजे तक और कार्यक्रम का नाम है हिम गुंजन।
1: और सजेशन उसमें कुछ ना कुछ मिलता था ना मैडम नाटक में तो।
0: जी आपकी बात हम समझ रहे हैं, आपकी बात हमने सुनी और हमने पहले भी यही कहा कि ये कार्यक्रम और अच्छे तरीके से आप तक पहुंचेगा, कुछ समय का वक्त लगेगा। और कुछ कार्यक्रमों की आप बात कर रहे हैं तो कार्यक्रमों में थोड़ा सा बदलाव
1: लगभग ठीक है मैडम, ये आपके कार्यक्रम धर्मशाला के ठीक है, बस
0: जी।
1: सिर्फ यही कह रहा कि हम लोकगीत बहुत सुनते हैं।
0: जी लोकगीतों का समय कम नहीं हुआ है,
2: लोकगीतों का समय बढ़ा दिया गया है, 15 मिनट और बढ़ा दिया गया है सुबह को।
1: अच्छा जी,
0: जी बिल्कुल।
1: और 9:45 सुनाते थे 2-3 गीत, वो भी बंद
2: नहीं, वो उसका समय बढ़ा के 15 मिनट और बढ़ा दिया है ना हमने।
1: अच्छा जी,
0: जी 7:40 पे जो कार्यक्रम आप सुनते थे ना, वो कार्यक्रम आप 8:30 से 9 बजे तक आप सुनेंगे।
1: अच्छा, वो तो नाटक की जगह वो।
0: जी नाटक तो सिर्फ एक दिन होता था ना, मंगलवार को, लोकगीत आप हफ्ता भर सुन सकते हैं। कॉल के लिए शुक्रिया जी। जी जी श्रोताओं को बता दें कि कार्यक्रमों में थोड़ा सा बदलाव इस कारण से भी श्रोताओं को लग रहा है क्योंकि दिल्ली से कुछ महत्वपूर्ण रिले जो है वो सुबह चलाना हमें होता है और रात को भी एशियन गेम्स का पीछे कुछ समय से आ रहा था, तो उस वजह से भी कुछ कार्यक्रम जो थे वो नहीं हमारे केंद्र से चल पा रहे थे। लेकिन कार्यक्रमों में कमी नहीं की गई है, कार्यक्रमों का समय बढ़ाया ही गया है। और जो नाटक की बात हो रही है, नाटक कोशिश की जाएगी, बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा श्रोताओं के मनोरंजन के लिए। हम पूरा ध्यान रखते हैं श्रोताओं के मनोरंजन का। हेलो हेलो जी, ये कॉल कर चुकी है और श्रोताओं को बता दें आप और हम ये कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं प्रत्येक माह मंगलवार, दूसरा और चौथा मंगलवार इस कार्यक्रम के लिए रखा गया है। समय 11:05 सुबह और इस समय श्रोता फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी सुझाव राय हो आप कार्यक्रमों से संबंधित हमें दे सकते हैं। हेलो
3: हेलो नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते जी,
3: नोटा से बोल रहा हूँ, पूजन भंडारी
0: जी। पूजन जी,
2: हाँ जी पूजन जी बोलिए जी।
3: मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ सर, और बहुत से बदलाव किए जा रहे हैं इसमें कार्यक्रमों में।
2: जी जी,
3: तो एक तो बीच बीच में आप डिटेल बताते रहे जो भी कार्यक्रमों को आप चेंज करते हैं
2: जी,
3: क्योंकि तो हमारे पहाड़ी कार्यक्रम भी बहुत कम हो जा रहे हैं आजकल।
2: नहीं पूजन जी, पहाड़ी कार्यक्रम हमने बढ़ा दिए हैं, कम नहीं हुए।
3: लाइव बंद हो गया, लाइव आज मंगलवार को लाइव आता था वो बंद कर दिया आपने।
0: मंगलवार को कौन सा प्रोग्राम सुनते थे आप लाइव?
3: सुबह 9 से लेके 10 बजे तक।
0: हाँ हेलो जी पूजन जी, आप रेडियो शायद आपने अभी लगाया, मुझे लग रहा है हम अभी यही बात कर रहे थे कि हमारा प्रधानमंत्री जी का एक स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है आजकल दिल्ली से, तो वो सुबह 9:10 से 9:50 तक चलता है, तो उसकी वजह से हेलो धर्मशाला, गीतांजलि, जनवाणी ये कार्यक्रम जो है ये नहीं प्रसारित किए जा रहे।
2: ये 17 तारीख के बाद दोबारा शुरू हो जाए।
3: अच्छा 17 के बाद शुरू
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल 17 के बाद।
3: तो बोलूंगा जो सुबह एक तो सुबह भजन आते हैं, उसके बाद आपके खबरें आती हैं
0: जी,
3: न्यूज के बाद जो है उसका आपका जो आप बताते जो भी आज क्या है जो भी दिन है, और साथ साथ में उसके बाद आप सुनते पुराने गाने
0: जी,
3: ये पुराने गाने बंद कर दिए हैं हमने और नए गाने लगाने शुरू कर दिए हैं, सुबह सुबह पुराने गाने सुनने का मजा आता है।
2: ठीक है जी, ठीक है
0: जी, बिल्कुल आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा जी।
3: पुराने गाने सुनेंगे सुबह सुबह, उसके बाद दिन भर जो भी गाने बजते हैं सभी लोग सुनते हैं, हम भी सुनते हैं
2: जी। ठीक है जी,
3: ये चीज मैंने देखी कि जो नए गाने सुनने वो टाइम नहीं है, सुबह पुराने गाने सुनने का मजा कुछ और आता है।
2: ठीक है पूजन जी,
3: तो इसे थोड़ा सा देखिए
0: जी। कॉल के लिए शुक्रिया जी। जी अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है और कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया का, और अब मुझे और जितेंद्र जी को इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार
0: जी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आप और हम, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। कुछ देर में आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक हैं। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा। और आप सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियां। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं, डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। या जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे। और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं, मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना? याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हों और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं, एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन

माल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओ, 19वीं शताब्दी में फॉस्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी, और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओ अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं? तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं, लेकिन श्रोताओं उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया। और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना। खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओ अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
2: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान

0: राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
0: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्धशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको।
4: फेंको जनाब।
5: अरे अरे, ये क्या हुआ?
4: ये क्या हुआ?
5: अरे
4: बच्चों,
5: फटने जाओ,
0: फटने जाओ। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
4: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
6: सही में
4: बहादुर सैनिक हो तुम।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
7: May I come in, sir?
3: Yes, come in.
7: Sir.
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
7: सर।
3: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
7: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
7: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
7: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
3: गो अहेड यंग मैन।
7: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट

0: को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
1: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
2: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
4: जी साहब।
5: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
6: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
2: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
2: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
2: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
2: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
1: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। हाजिर है फिल्म संगीत के इस खूबसूरत कार्यक्रम सैनिकों के लिए के साथ, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म सरफरोश से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़, संगीतकार जतिन ललित और गीतकार इसरार अंसारी।

डर फिल्म का गीत अब आपके रेडियो सेट्स पर है, जिसमें संगीत शिवहरि का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, गीत गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

श्रोताओं अब एक सूचना सुनिए। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा चयनित 101 जेबीटी अभ्यर्थियों की सूची जिला कांगड़ा में रिक्त पदों को भरने हेतु इस कार्यालय में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुई है। इन सभी के प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन नर्सरी मिडल स्कूल धर्मशाला में दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। अतः सभी चयनित अभ्यर्थी उक्त स्कूल में 15 10 2026 को प्रातः 10 बजे अपने मूल प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति सहित उपस्थित हों। प्रमाण पत्रों की सूची इस तरह से है: मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, 10+2 मूल प्रमाण पत्र, टैट प्रमाण पत्र, जेबीटी प्रमाण पत्र या समकक्ष, हिमाचल का मूल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति जाति अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र, नवीनतम सत्यापित फोटो। सूचना समाप्त हुई। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक साथियों, अब आपके रेडियो सेट्स पर है रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत, जिसमें संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और गीत गाया है विनोद राठौड़ ने।

हिम्मत वाला फिल्म के इसी खूबसूरत गीत के साथ आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए, सैनिक साथियों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम सुनो सखी।

0: जी हाँ, स्वागत है आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। और आज के इस खूबसूरत सफर में मैं हूँ आपके साथ, आप सबकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसी हैं आप सब सखियों? और नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है, भक्तिमय माहौल है हर तरफ, और इसी विषय पर आपसे आज जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी जानती हैं कि मंगलवार का ये खूबसूरत अंक रहता है आप सब सखियों से सजीव जुड़ने का, बातें करने का, और साथ ही साथ आपको आपकी पसंद के गीत सुनवाने का। तो आपको क्या करना है? जी हाँ, आप सभी को पता है कि आपको करना है डायल हमारे स्टूडियो का नंबर 01892224391। जी हाँ, 01892224391। और आज की जो हमारी चुनिंदा फिल्में हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। जी हाँ, फिल्में हैं थ्री इडियट्स, बॉबी, चलते चलते राज, राजा हिंदुस्तानी, राम तेरी गंगा मैली, साजन, सैनिक, सलामी और ताल। यह सखियो आज की हमारी फिल्में, इनमें से किसी भी फिल्म का गीत आप सुन सकती हैं। और बता दें आपको कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रहता है, तो वे ही फ़ोन करें और जब भी कार्यक्रम का नंबर, स्टूडियो का नंबर मिलाएं तो सिग्नल का ध्यान रखें ताकि आपसे हमारी बात अच्छे से हो पाए। तो लेते हैं कार्यक्रम की पहली कॉल। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार मैम जी, जय माता दी।
0: जय माता दी, नाम बताइए अपना।
1: मैं मीनू बोल रही हूँ मैम
0: जी। मीनू जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैम गढ़म से।
0: क्या करती हैं?

0: हाउस वाइफ मैं।
1: हाउस वाइफ हैं। और नवरात्रों का त्योहार किस तरह से चल रहा है
0: बहुत बढ़िया मैम,
1: जी, किस तरह से मनाती हैं?
0: बस नवरात्रि चले हुए मैम, पूजा सुबह शाम, बस यही
1: अच्छा लगता है, भक्तिमय माहौल है ना?
0: प्रोग्राम रखा हुआ है जी मैम, जगराता रखा हुआ माँ का
1: अच्छा,
0: जी मैम।
1: बहुत बढ़िया बात है। और कौन सी फिल्म का आज गीत सुनेंगे कार्यक्रम में, आपने फोन किया है?
0: माता का ही सुनना था भेंट कोई, मैंने
1: जी, तो माता की भेंट तो नहीं रखी है, फिल्में आपको पता है आज की?
0: हाँ जी मैम,
1: हाँ जी, इनमें से कोई?
0: सैनिक
1: हाँ जी,
0: फिल्म का सुना दो मैम
1: कोई सा भी
0: जी मैम।
1: जी। मीनू आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गीत, और आप सुनिए। और कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप? साक्षी
1: देखो, आपसे ना मैं माफी मांगना चाहती हूँ।
0: जी, किस बात की?
1: पता क्या किया मैंने मैंने देखा टाइम, मैंने सोचा मेरा कार्यक्रम लग पड़ा, मैं शानको के कार्यक्रम में कॉल कर दिया। पता
0: जी, चलिए कोई बात नहीं साक्षी। और
1: है मैम जी, मेरे को पता नहीं ना चला, इसलिए किया। मेरे को पता था तो मैंने ठीक करना था
0: चलिए
1: ऐसे।
0: कोई बात नहीं साक्षी, और बताइए कैसी हैं आप?
1: ठीक हो? आप बताओ, आप ठीक हो?
0: हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया है, आपसे बातें कर रहे हैं।
1: मैंने सोचा मेरा कार्यक्रम उपलब्ध पड़ा। मैम
0: जी, बड़ी
1: मैम
0: बेसब्री
1: जी,
0: से इंतजार करती हैं आप इस कार्यक्रम
1: अरे
0: का।
1: बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ, मेरे को बड़ा इंतजार रहता है।
0: जी, बहुत
1: मैंने
0: अच्छी
1: कहा
0: बात है,
1: जो,
0: बहुत
1: हाँ
0: अच्छी बात
1: जी,
0: है साक्षी, और हमें भी अच्छा लगता है कि इस कार्यक्रम से आपको खुशी मिलती है ना?

0: जी बिल्कुल साक्षी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम में आप हमेशा जुड़ती हैं। और आज कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज चलते चलते फिल्म का सुनना मैंने।
0: अच्छा, कौन सा गीत? कोई सा भी?
1: कोई सा भी, आपको पता भी है अभी मैं फिल्म में थोड़ी कम ही देखती, मैंने देखती
0: जी जी
1: तो ना, एक बार ना होता है सिर्फ आपसे बात हो जाती है, मेरे को आप नहीं सोच सकते मैं इतनी खुशी मिली है ना।
0: जी जी बिल्कुल साक्षी, आपकी खुशी आपकी बातों में जाहिर हो रही है, और इस खुशी को और मनाइए, क्योंकि आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो हम प्ले कर चुके हैं आपके रेडियो सेट पर, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया साक्षी।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी। अच्छा,
0: जी, कार्यक्रम सखियों के लिए है।
1: ये ठाकर साहब नहीं आ रहे?

0: जी हाँ सजी, फोन इन कार्यक्रम सुनो सखी आप सुन रही हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और सखियां लगातार हमें कॉल कर रही हैं। देखते हैं कार्यक्रम में अगली कॉल किसकी है। हेलो, नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: तानिया बोल रही हूँ जम्मू से मैडम जी।
0: जी कहाँ से?
1: जम्मू से बोल रही हूँ तानिया।
0: जी तानिया, कैसी हैं आप?
1: ठीक है मैडम जी, आप बताइए कैसे हो।
0: जी हम भी बहुत बढ़िया हैं, और आप बताइए किस तरह का माहौल है नवरात्रि में जम्मू में?
1: बहुत अच्छा चल रहा है मैडम जी।
0: जी
1: शाम
0: आप
1: को शाम सुबह जोत जगाते हैं माता के आगे, मुरादें मांगते हैं माता से।
0: मुरादे ही मानते हैं कि धन्यवाद भी करते हैं?
1: धन्यवाद भी करते हैं मैडम
0: जी धन्यवाद भी जरूरी है ना।
1: जी। मैडम जी
0: जी और बताइए तानिया, क्या कुछ कहना चाहती हैं कार्यक्रम में?
1: बस मैडम जी आपसे बातें करते हैं और भी खुश हो जाता है मन
0: मन खुश हो
1: अब
0: जाता है।
1: खुश हो जाता है।
0: जी और खुश रहना चाहिए हमें हर टाइम, है ना।
1: हाँ मैडम जी,
0: जी और कुछ कहना चाहती हैं?
1: और मैडम जी ठीक है।
0: जी तो कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं आज?
1: और कौन सी फिल्म रखी मैडम जी? मैंने अभी ऑन किया है।
0: जी बिल्कुल, हमारे पास आज हैं थ्री इडियट्स, बॉबी राज, राजा हिंदुस्तानी, राम तेरी गंगा मैली, साजन, सलामी और ताल।
1: राम तेरी गंगा मैली का सुना दो मैडम जी।
0: हाँ जी कौन सा गीत, कोई सा भी?
1: मीठी मीठी सरजी है ये वाला।

0: पहाड़ों का।
1: मैडम जी।
0: जी चलिए ठीक है, मीठी मीठी सर्दी तो हो ही गई है, आपके यहाँ भी हो गई है।
1: हाँ मैडम जी, दिन को थोड़ी गर्मी सी रहती है और रात को बस सर्दी हो जाती है।
0: जी, तो चलिए इस मौसम को और इस मौसम की खुशी को और दोगुना करते हैं इस गीत के साथ। शुक्रिया तान्या फोन के लिए।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: नमस्कार जी, मीठी सी आवाज़ किसकी है?
1: जी। सविता बोल रही हूँ मैम, रानीताल
0: जी जी
1: से
0: सविता जी, कैसी हैं आप?
1: जी। बढ़िया हूँ, आप कैसे हो मैम?
0: जी हम भी बहुत बढ़िया हैं। और रानीताल के क्या हाल चाल हैं, किस तरह का माहौल है नवरात्रों में?
1: जी यहाँ तो इतना नहीं होता है वैसे मैम, मेरे माइका साइड जो कांगड़ा है ना, बात बहुत ही ज्यादा रौनके लगी हुई है।
0: जी, तो रौनकों का मजा लेने नहीं आए आप?
1: हाँ जी, मैं तो अभी ससुराल में हूँ ना
0: अच्छा,
1: तो यहाँ इतना नहीं होता है मतलब ना
0: मिस करती
1: नवरात्र में।
0: हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी और सविता जी क्या कुछ कहना चाहती हैं आज?
1: बस कुछ नहीं, हैप्पी नवरात्रे आप सबको
0: जी आपको भी और अन्य श्रोताओं को भी जो भी कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं,
1: हाँ जी मैम
0: है ना?
1: जी
0: माता रानी सबकी विशेष पूरी करे।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जी
1: सबको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रहे
0: जी
1: मैम।
0: जी स्वस्थ रखे, सबसे बड़ी बात तो यही है
1: हाँ जी मैम
0: जी। और सविता जी कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं आज?
1: जी, राजा हिंदुस्तानी का सुनवा दीजिए मैम,
0: हाँ जी, कौन सा गीत?
1: अपनी पसंद का सुनवा दीजिए मैम, कोई सा भी गाना,
0: पर
1: गाने बहुत
0: कार्यक्रम तो आपकी
1: अच्छे।
0: पसंद का है
1: कोई बात नहीं मैम, आज आपकी पसंद सुन लेते
0: जी।
1: हैं, गाने
0: चलिए,
1: सभी अच्छे हैं।
0: आपकी पसंद हम पूरी करेंगे, लेकिन पहले कुछ संदेश हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद आपकी पसंद। आपने फोन किया, शुक्रिया।
1: थैंक यू मैम जी, थैंक यू।
2: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
3: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगन

0: बाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
3: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
5: पूछो जरा पूछो।
6: सविता जी की पसंद पर हम उन्हें सुनवा रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से ये खूबसूरत सा गीत, और उम्मीद करते हैं उन्हें ये जरूर पसंद आएगा।

0: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीस पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
1: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
2: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
3: हेलो जी, कार्यक्रम महिलाओं के लिए है।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
5: अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ, 12:52:57, ये वक्त हुआ है और बहुत ही कम वक्त रह गया है आपके इस खूबसूरत से कार्यक्रम सजी फोन इन कार्यक्रम सुनो सखी के लिए। तो जल्दी से सखियों डायल करें, स्टूडियो का नंबर 01892224391। जी हाँ, और बार बार हम कहते रहते हैं कि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ सखियों के लिए है, तो वे ही फ़ोन करें। और ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी कार्यक्रम में फ़ोन मिलाएं तो सिग्नल का ध्यान रखें, ताकि आपसे हमारी बात अच्छे से हो पाए। और जब तक कोई कॉल आती है, हम आपको सुनवा रहे हैं ताल फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।

सखियत ताल फिल्म के इसी खूबसूरत गीत के साथ हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में। माफी चाहूंगी इन कॉलर से जो इस समय फोन कर रहे हैं, क्योंकि वक्त नहीं है कि आपसे बात की जाए। तो यही कहना चाहूंगी, अगले मंगलवार जरूर समय से फोन करें और अपने

और अब मुझे यानी रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति, इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ।

चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आपके घर तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पाल सिंह।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में स्टार्टअप का काफी विस्तार हुआ है।
2: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम 1 महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है।

0: एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता, हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेन देन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर गृहमंत्री ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आतंकी नेटवर्क को पनाह, भर्ती, प्रशिक्षण, धन या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए क्षेत्र में कोई जगह न मिले। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 72,479 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 176 अंक की वृद्धि के साथ 22,540 पर पहुंचा। नवरात्रि का आज 3रा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन साहस, शांति और दिव्य शक्ति की प्रतीक देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Mr. Modi said India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. Mr. Modi stated that digital power has opened up greater opportunities for India.
3: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
2: The Prime Minister said India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. He said the GDP growth stood at 7.8% in the first quarter of this financial year. Mr. Modi highlighted that India had lifted 25 crore people out of poverty over the past decade.
3: पावर के पर्पज पर जो फोकस है यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: India is hosting the first Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi. This historic meeting highlights the collective commitment to combating terrorism.

तो आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है, आज अभी ये जो गीत बजा इसका शब्द था साथ। एक साथी ने लिखा है, फिल्म आशीर्वाद का प्रसिद्ध गाना रेलगाड़ी भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक और अनोखा गीत है जिसे दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि ने गाया था। इसे भारतीय सिनेमा का पहला रैप गाना माना जाता है जिसमें बिना किसी भारी संगीत के रेलवे स्टेशनों के नामों और ग्रामीण भारत की छटा को बेहद लयबद्ध अंदाज में पिरोया गया है। इस मासूम और ऊर्जावान गीत को हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी ने लिखा है, किशोरदा आप भी तो जिंदगी के इस सफर के ऐसे मुसाफिर हैं जो अपनी देह से भले ही दूर चले गए मगर अपनी आवाज के रूप में हर दिल में ठहर गए। वक्त की रेलगाड़ी आगे बढ़ती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, कितने ही स्टेशन पीछे छूट गए लेकिन आपके गीतों का कारवा आज भी उसी शिद्दत से हमारे साथ चल रहा है। आपकी आवाज सुनकर लगता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना फिर लौट आया हो, जैसे यादों की किसी पुराने स्टेशन पर जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर गई हो। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत और पहचानिएगा इस गीत का वो कौन सा शब्द है जो हमारी आज की इबारत में शामिल है। फिल्म का नाम है राम बलराम, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। बोल है आनंद बख्शी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना, इससे पहले जो गीत बजा उसमें शब्द था रास्ता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक साथ ही लिखते हैं, सफर बैलगाड़ी का हो या हवाई जहाज का या जिंदगी का, हिचकोले तो लगते ही हैं लेकिन हमेशा तो नहीं। इसलिए सुहाने सफर का आनंद भी ले तो जीवन के झटके भी हंसते हंसते लें। एक साथ ही लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी खूबसूरत सफर पर होते हैं तो ऐसी ऐसी मीठी मधुर और मधुर अनुभूति होती है जिन्हें हम कभी भी भूलना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि सफर कभी खत्म ही ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब सफर पर हमें बहुत अच्छे बातूनी लोग मिल जाते हैं या फिर हम जैसी सोच रखते हैं उस तरह की सोच रखने वाले लोग मिल जाते हैं तो बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर सफर कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। लगता है ये सफर थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं शोले फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। और आपको बताना है इस शब्द में छुपा, क्षमा कीजिए, इस गीत में छुपा वो शब्द।

0: जाती है, एक दो तीन हो जाती है।
1: बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने, शब्द था स्टेशन, जो इस गीत में शामिल था और हमारी इबारत में भी। एक साथी ने लिखा है, यादगार सफर का आनंद लिया जब ट्रेन गुजर रही थी सुरंग से, वो भी सबसे लंबी, करीब 14 किलोमीटर लंबाई से गुजरना हुआ। अगस्त 2026 में जब वंदे भारत ट्रेन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से श्रीनगर स्टेशन की ओर वापसी में मेरी धर्मपत्नी और मैंने सफर किया था। बाबा अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन लिए, रास्ते में चेनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंची ब्रिज से भी ट्रेन गुजर रही थी। कई सुरंगों और ब्रिजेस से ट्रेन गुजर रही थी जिनको देखकर हम भी आनंदित हो रहे थे। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं श्रोताओं, जो हमारी जहन में बस जाती हैं, हमें याद हो जाता है पल पल की कैसे गुजरा था और कितना खूबसूरत था। चलिए इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

अंदाज फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। साथियों, एक साथी लिख रहे हैं कि रेलगाड़ी का सफर बेहद रोमांचक, आरामदायक और यादगार अनुभव माना जाता है। खिड़की के पास बैठकर बाहर बदलते नज़ारे, खेत खलिहान, पहाड़, नदियां और छोटे छोटे स्टेशंस को देखना मन को सुकून देता है। जी हाँ, ये तो एक बड़ा ही खूबसूरत एहसास है जिसे जब तक खुद अनुभव ना किया जाए तब तक उसमें कुछ आनंद ही नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात लिखी है आपने। एक साथ ही लिखते हैं, जीवन को समझने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे एक रेलगाड़ी के सफ़र से बखूबी समझा जा सकता है। हम सभी इस संसार रूपी स्टेशन पर आते हैं, जीवन की गाड़ी में सवार होते हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं। ये यात्रा केवल एक दूरी तय करना नहीं बल्कि अनुभवों का एक विशाल संग्रह है। और आप सभी ने ये भी बिल्कुल सही पहचाना है, इस गीत में शब्द था सुहाना। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। शब्द रचना शैलेंद्र की, शंकर जयकिशन की धुन।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

तो इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसमें शब्द था रोशनी। साथियों, एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली नेहा जी और सभी गुणी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। किशोर दा हमारे ही शहर खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मुंबई में उनके निधन के बाद उनकी इच्छानुसार उन्हें खंडवा लाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। अब ये तो कहना चाहिए कि एक ऐसा अवसर था जो आप उस शहर के थे और इसलिए इसका आप इसमें शामिल हो सकें, और बड़ी मुश्किल से कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हम किसी ऐसी महान हस्ती की यात्रा में शामिल हो पाते हैं। और किशोर कुमार जी के भी कुछ जो उनके साक्षात्कार हुए, उनकी बातों में हमें कई जगह पता चलता है कि उन्हें अपने शहर खंडवा से बेहद प्रेम था और उनकी हर बातों में ये बात झलकती थी कि वे वापस खंडवा आना चाहते थे। आइए अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट हमें किया है एक साथी ने, लिखा है, मेरा सबसे लंबा सफर था जब बेटे की बारात लेकर कटक से अल्मोड़ा जाना था। राजधानी एक्सप्रेस से कटक से दिल्ली करीब 24 घंटा, फिर 12 घंटे बस द्वारा दिल्ली से अल्मोड़ा। हम 35 बाराती खूब मौज मस्ती करते गए और वापस उसी रास्ते आए। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी, जिंदगी के इस सफर में मेरे बचपन से आज तक जो विश्वसनीय साथी रहा है वो है विविध भारती मुंबई, जिसके प्रोग्राम्स जो मैं रेडियो पर सुनते हुए अपने जीवन के सफर को सुरीला बनाता रहा हूँ और आगे भी जितनी सांसें मिली हैं तब तक बनाता रहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल, तो आप सुनते रहिए विविध भारती। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत तलाक फिल्म से, आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजें। प्रदीप ने इसे लिखा है, श्री राम चंद्र का संगीत। शब्द आपको पहचानना है कौन सा है।

आप सभी ने शब्द बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था किरण। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर एक खूबसूरत नदी की तरह है जो कई मोड़ों और उतार चढ़ावों से होकर गुजरती है। इस रास्ते में कई लोग लहरों की तरह मिलते हैं और कुछ यादें बनकर पीछे छूट जाते हैं। कभी मुश्किलें चट्टान बनकर सामने आती हैं तो कभी खुशियों के झरने सुकून देते हैं। हम अक्सर किनारे यानी कि मंजिल तक पहुँचने की जल्दी में बहते पानी के आनंद को भूल जाते हैं। मंजिल तो तय है लेकिन असली सुकून हर पल को मुस्कुराकर जीने और इस सफर में यादें बटोरने में है। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है परिचय, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: मुसाफिर शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

और एक साथी ने लिखा है, एक बार रेल से सफर के दौरान हमारे कोच में आग लग गई थी। बाहर से लोग चिल्ला रहे थे कि गेट खोलो। मेरे मामा जी जो मुझे लिवाने आए थे बोले सब अंदर आना चाहते हैं, चुपचाप सो जाओ। इतने में मुझे खिड़की के पास आग की लपटें दिखाई दी। मैंने दौड़कर गेट खोल दिया, सब सुरक्षित बच गए, पर आज भी याद है आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये बात सुनकर तो हमें भी रोंगटे खड़े हो गए हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ ने उस घटना को टाल दिया कह सकते हैं। तो ये सूझबूझ कभी कभार बहुत ज़रूरी होती है। एक साथी ने लिखा है, मुझे तो रेलगाड़ी की यात्रा इतनी अच्छी लगती है कि मैं हवाई यात्रा को छोड़कर रेलगाड़ी की यात्रा करना पसंद करती हूँ। मेरे ऑफिस से मुझे बीकानेर से मुंबई तक का हवाई यात्रा का अवसर मिलता है, लेकिन मैं रेलगाड़ी से ही जाती हूँ, तो सब मेरे कलीग्स और मेरे परिवार वाले मेरी हंसी भी उड़ाते हैं कि हवाई यात्रा छोड़कर आप रेलगाड़ी में जाती हैं। रेलगाड़ी से खिड़की से झाँक कर एक एक स्टेशन देखना, धरती से धरती तक का मिलन, धरती से आकाश का क्षितिज पर मिलन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साथी ने लिखा है, मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से जब भोपाल की तरफ चलते हैं तो ट्रेन बहुत सारी सुरंगों और हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरती है। वो जंगल की छटा बरसात के समय बहुत ही रोमांचक होती है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, साथ दिया है मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। पहचानिए शब्द।

मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किलें हमारा हौसला परखती हैं। लेकिन यही उतार चढ़ाव जिंदगी को जीने का सही मतलब सिखाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का ये सफर वाकई बहुत ही अजीब है। बंद मुट्ठी आए थे, खुले हाथ जाना है। जो धन मान सम्मान कमाया वो छोड़कर एक दिन चले जाना है। न साथ लाए थे न साथ आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए हमें जीवन में हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें हमेशा ये लगना चाहिए कि हमें जो मिला है वो काफ़ी है। यानी कि जितना मिला जैसा मिला वो अच्छा है। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है।

साथी लिख रहे हैं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, बस सुरीला सफर का भी थोड़ा सा सफर बाकी है, मगर हम सोच रहे हैं काश सुरीला सफर का सफर और बढ़ जाए। गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो दोस्तों, रेलगाड़ी की तरह जिंदगी का सफर भी चलता रहता है। कुछ यादें और कुछ लोग हमेशा साथ रह जाते हैं। आज किशोर दा और दादा मुनि को याद करते हुए इसी खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। अब दीजिए आज्ञा नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, त्रिवेणी लेकर हाजिर हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। मुस्कान चेहरे पर सजी वो खूबसूरती है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। किसी की एक प्यारी सी मुस्कान हमारा पूरा दिन बेहतर बना सकती है, खासकर जब ये मुस्कान किसी ऐसे शख्स की हो जो हमारे लिए बहुत खास हो। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मन में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। शायद इसीलिए किसी की मुस्कुराहट को देखकर हम भी मुस्कुरा देते हैं। रिश्तों में भी मुस्कान की अपनी एक खास जगह है, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा असर एक सच्ची मुस्कान कर जाती है।

0: किसी खास इंसान की मुस्कान की बात ही कुछ और होती है। हम चाहें कितने भी परेशान क्यों ना हो, उसकी एक मुस्कान चेहरे पर खुशी ले आती है। कभी कभी तो उस मुस्कान में इतना अपनापन भरा होता है कि बिना कुछ कहे भी दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार में शायद इसी एहसास की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। सामने वाला हमारे साथ हो या दूर, उसकी मुस्कान की याद भी चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और जब कोई पूछता है कि आखिर इतनी खुशी की क्या वजह है, तो दिल बस उसी शख्स का नाम लेता है।
1: तेरा

मुस्कुराने की कोई एक वजह नहीं होती। जिंदगी में खुशियों के बड़े मौकों के साथ साथ छोटी छोटी खुशियां भी होती हैं, जिन्हें महसूस करना जरूरी है। सुबह की पहली किरण, किसी अपने की आवाज, पसंदीदा गीत, दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त या अचानक मिली कोई अच्छी खबर, ये सब हमें मुस्कुराने का मौका देते हैं। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बीच भी खुशियों के छोटे छोटे पल तलाशना हमारे हाथ में है। इसलिए जब भी मौका मिले, दिल खोल कर मुस्कुराइए और अपने आसपास के लोगों के साथ भी ये खुशियां बांटिए। आखिर जिंदगी है तो इसे गुनगुनाइए और मुस्कुराइए।

आपने ट्यून किया है विविध भारती, देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल। इस समय दोपहर के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री

0: कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के, कृपया इसे फिर से सुन ले, भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डाइवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेन देन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। ये मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि ये मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि

0: आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए 1 दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में नॉर्थ इसमें सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई।
2: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया

0: खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। IMF ने 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए ICC महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है अपना सबसे पसंदीदा चैनल, मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और सचिन देव बर्मन का संगीत।
2: बंसिया बजाई, अरे कैसी बंसिया बजाई, श्यामा सुध बिस राई, तरे रे तरे रे तरे रे रे रे,
3: भूल गया यार,
2: तरे रे तरे रे तरे रे रे रे। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।

0: दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में।

0: की डैम फूल है। हाँ, दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे सुर

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म उड़न खटोला से, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में नई दिल्ली फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र की रचना है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री 420। इस फिल्म का गीत आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की। शैलेंद्र ने इस गीत को रचा है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: मैं बंगाली छोकरा करू प्यार को नमस्कारम,
1: मैं मद्रासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम।
0: छोटी रे।

0: वाले रे।
1: मेरा बोझा साजना फिर बेड़ा पारो।
2: मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारो।
3: सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं एक झलक। मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म का गीत, गीता दत्त और साथियों की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं संगीत ओपी नैयर का।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान युग में डिजिटल शक्ति इस बदलाव के प्रमुख चालकों में से एक बनकर उभरी है और डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए अधिक से अधिक अवसरों के द्वार खोले हैं।
2: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से लगभग आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं, जबकि 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम एक महिला निदेशक या भागीदार है।
2: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के करीब 150 स्कूलों को CBSE से संबद्ध करने की राज्य सरकार की पहल से बच्चों और अभिभावकों का शिक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में बढ़ता नामांकन इस बदलाव का गवाह है कि सरकार ने 100 और नए स्कूलों को CBSE से संबद्ध करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 3,900 शैक्षणिक और 900 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है, जिससे स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था में सुधार होने के साथ साथ युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। भाजपा महिला मोर्चा ने पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ आज नाहन में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर देश का माहौल खराब करने और राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से घबराकर इसका विरोध कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही व्यक्ति के 4-4 स्थानों पर वोट बने हुए हैं और इस व्यवस्था को SIR के माध्यम से सही किया जा रहा है। बिंदल ने कहा कि सभी राज्यों में कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से इनकी हार हो रही है और अब कांग्रेस देश के विभिन्न राज्यों में माहौल खराब करने में जुटी हुई है।
3: कांग्रेस पार्टी ने देश भर में अराजकता का माहौल तैयार किया है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सारे भारत से एक एक करके सभी राज्यों से लगातार चुनाव हार रही और वो हार कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के कारण। राष्ट्र के खिलाफ जिस प्रकार के षड्यंत्र कांग्रेस

0: प्रोटेस्ट करती है उसके कारण कांग्रेस की हार, गरीब जनता का जो शोषण कांग्रेस ने किया उसके कारण, और भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत जन विरोधी नीतियों के पक्ष में जीत। आज प्रदेश का और देश का वातावरण खराब करने में कांग्रेस पार्टी लगी।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलन में जागरूकता व पंजीकरण शिविर सेवा सेतु का आयोजन किया गया है। 15 अक्टूबर तक चलने वाले शिविर के दौरान लोगों को इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य विद्युत बोर्ड सोलन के विद्युत उपमंडल 2 के सहायक अधिशासी अभियंता विपुल शर्मा ने बताया कि शिविर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण भी किया जा रहा है। इस दौरान अग्रणी यूको बैंक की जिला प्रबंधक तमन्ना मोदगिल ने बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बेहद कम ब्याज दर पर लोन भी दिया जा रहा है। शारदीय नवरात्रे के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश के सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है चंबा जिले की चिट्ठी। लेखक हैं विकास ठाकुर और वाचिका हैं राजकुमारी चंदेल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत नेट परियोजना के तहत चंबा जिला की 303 पंचायतों को आधुनिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में कार्य शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंबा कांगड़ा के सांसद डॉ राजीव भारद्वाज ने चंबा के करिया में भारत संचार निगम लिमिटेड के भारत नेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। समापन समारोह में एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली चंबा की धाविका सीमा कुमारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने चंबा जिला के दौरे के दौरान कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र लोगों को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत नेट परियोजना के तहत चंबा जिला की 303 पंचायतों को आधुनिक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में कार्य शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंबा कांगड़ा के सांसद डॉ राजीव भारद्वाज ने चंबा के करिया में भारत संचार निगम लिमिटेड के भारत नेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। युवाओं के लिए ये पहल नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होने से युवा ऑनलाइन शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों का लाभ अपने गांव में रहकर उठा सकेंगे। इस अवसर पर सांसद राजीव भारद्वाज ने कहा कि भारत नेट प्रोजेक्ट प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों तक संचार व निशुल्क वाईफाई की सुविधा लोगों को मिल पाएगी। इस अवसर पर राजीव भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत आकांक्षी जिला चंबा में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिसके लिए कार्य प्रगति पर है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के अंतर्गत चंबा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर साफ सफाई की गई। वहीं बच्चों व आम नागरिकों में स्वच्छता की अलख भी जगाई गई। वहीं खजियार में जिला स्तरीय जन स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अभियान का आयोजन उपायुक्त चंबा मुकेश रिप्सवाल की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा विशेष रूप से उपस्थित रहे। अभियान में जिला प्रशासन, विभिन्न भागों, पंचायती राज संस्थाओं, विद्यार्थियों, स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। अभियान के दौरान खजियार पर्यटन स्थल और आसपास के वन क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता व कचरा संग्रहण अभियान चलाया गया। प्रतिभागियों ने क्षेत्र में बिखरे प्लास्टिक व अपशिष्ट को एकत्रित कर निर्धारित स्थान तक पहुंचाया और स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उपायुक्त मुकेश रिप्सवाल ने स्वच्छता में जनभागीदारी व सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर बल देते हुए कहा कि स्वच्छ व सुंदर पर्यटन स्थलों को बनाए रखने के लिए प्रशासन के साथ साथ स्थानीय समुदाय, पर्यटकों और प्रत्येक नागरिक की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है।

0: भारत सरकार द्वारा देश के आकांक्षी जिलों में शुमार, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा को वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला की श्रेणी में शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत जिला में 5 संकेतकों पर कार्य किया जा रहा है। जिला चंबा में इन संकेतकों पर अच्छा कार्य किया है, जिसके चलते नीति आयोग द्वारा समय समय पर इसके लिए अवार्ड भी दिए गए हैं। भारत सरकार ने इसके अतिरिक्त जिला चंबा के पांगी और तीसा ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया है, जिनमें भी विभिन्न संकेतकों का कार्य जारी है। उपायुक्त चंबा मुकेश रिप्सवाल के अनुसार अभी भी जिला में स्वास्थ्य क्षेत्र और बुनियादी ढांचे को लेकर काफी चैलेंज हैं, जिन्हें पूरा करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि जिला चंबा की बेस्ट परफॉर्मेंस के चलते अब तक जिला को करीब 14 करोड़ तक की अवार्ड राशि मिल चुकी है, जिसे विभिन्न संकेतकों को पूरा करने के लिए खर्च किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला चंबा में 2 आकांक्षी ब्लॉक तीसा और पांगी भी हैं, जिनमें भी विभिन्न संकेतकों पर कार्य प्रगति पर है। इसमें आकांक्षी ब्लॉक पांगी के बेहतर कार्य के लिए नीति आयोग की तरफ से 5 करोड़ रुपए की अवार्ड राशि ब्लॉक को मिली है। इस राशि से पांगी के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में पेयजल योजना का कार्य किया जा रहा है, जिससे भविष्य में बर्फबारी के दौरान भी लोगों को पानी मुहैया हो सकेगा। इसके साथ ही चंबा जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: चंबा जिले की चिट्ठी आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की जा रही थी। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: और ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, विज्ञापन, मार्केटिंग अभियानों और केस स्टडीज से जुड़े आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं।
4: और साल 2015 में इस पोर्टल को प्राइवेट इन्वेस्टर नाम की कंपनी को बेच दिया गया था। इस समय तक ये कंपनी 3 से 4 करोड़ की लगभग बन चुकी थी, और इसके बाद साल 2015 में गेट एवेंजलाइज की को फाउंडर बनी, और एक साल बाद उन्होंने 2016 में आईजेनेरियो में पार्टनर एंड बिजनेस हेड के रूप में भी काम की शुरुआत की। यहाँ लगभग 2 साल तक काम करने के बाद ओरो वेल्थ में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट बनी, और इसके बाद मनी फ्रेंड की मार्केटिंग हेड और महिला बनी। वेबसाइट की कंटेंट एंड कम्युनिटी हेड के रूप में भी आपने काम किया।
3: और 2023 में अंकिता गाबा ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर फिबी की स्थापना की। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़ी खबरें दी जाती हैं। इस पोर्टल को पूरी तरह से सोशल मीडिया से जो प्रभावित होते हैं उन्हें समर्पित किया गया है।
4: जी, और आज अंकिता गाबा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ कर दम पर एक नहीं बल्कि कई स्टार्टअप की शुरुआत करके उन्होंने उसे सफल बनाया। और अंकिता गाबा के पुरस्कार उपलब्धियों की बात करें तो सोशल समोसा वेबसाइट को वेब समिट 2013 के टॉप 10 स्टार्टअप में जगह मिल चुकी है। और एक्सचेंज 4 मीडिया द्वारा IDMA 2013 के लिए सोशल समोसा को टॉप 5 डिजिटल स्टार्टअप में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही 2013 में उन्हें सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है,
3: और वैश्विक शीर्ष 100 सोशल मीडिया एजेंसियां और सलाहकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और अंकिता गाबा सोशल मीडिया के क्षेत्र में अपने एक्सपीरियंस और नए नए आइडियाज़ साझा करती हैं, और केवल स्टार्टअप्स की ही शुरुआत नहीं की बल्कि कई लोगों को वो नौकरी भी दे चुकी हैं इसके माध्यम से। उनकी सफलता ये सीख देती है कि एक छोटा सा इनोवेटिव आइडिया के दम पर कैसे बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आज अंकिता गाबा कई महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं। और अब सुनवाते हैं एक गाना।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर। फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और ये संदेश हमने सुनवाए अपने अपने श्रोताओं को, और हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि गरबा और दांडिया का स्वरूप बदल रहा, तो उसमें अपने उद्गार लिखे, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गरबा डांडिया के बदलते रूप में इतना ही कहना है कि घर मोहल्ले के चौराहे से पारंपरिक भक्ति अनुष्ठान से निकलकर अब कमर्शियल ग्लोबल रूप ले चुका है, जिसमें भक्ति भाव कम है और टिकट रेट ज़्यादा होता है।
4: बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि जब हम जाते हैं देखने तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे उसके टिकट के बढ़ा दिए गए हैं, और साथ साथ वेशभूषाओं पर भी बहुत सारा खर्चा होता है। देखा जाए बाजार में भरे पड़े हैं सामान और लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं, तो खर्चा भी बहुत तेज़ी
3: और
4: से होता है।
3: दोस्ती भी यहाँ पर बहुत परवान चढ़ती है, ख़ास तौर से उसमें कई बार गलत रिश्ते भी पनप जाते हैं।
4: बिल्कुल,
3: लड़के लड़कियों के बीच, कम उम्र के लड़के कम उम्र की लड़कियों को, जहाँ पर बहुत ज्यादा गलत सही का फर्क नहीं पता होता है, उनके बीच एक रिश्ता एक नाता तय होता है, तो वो रात भर गरबा के बहाने निकल के बाहर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, वो भी ठीक नहीं है।
4: बिल्कुल, उससे वो गलत ही प्रभाव पड़ता है, बाद में पता चलता है कि दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती में दरारें आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि पहले के ज़माने में गरबा गांव के मैदान में एक ही जगह सब मिलकर करते थे, अब तो हर जगह होने लगा है। पहले कम आवाज़ होता था, अब बड़े बड़े स्पीकर आ गए और शांति सुकून तो गायब ही हो गए हैं। पहले चनिया चोली और केडियो ड्रेस थे, अब वो ड्रेस तो हैं पर साथ में अंग प्रदर्शन भी होने लगा है। कुल मिला के पहले जो भक्ति भाव था वो अब, मतलब कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, ऐसी चीज़ें पहनने में दिखावे में हो गई हैं। और मेरी बात करूं तो पहले मैं भी गरबा करने जाता था, पर अब सिर्फ देखता हूं, गरबा करने का मन नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि आज के फैशन के दौर में इतनी चीज़ें निकल आई हैं, डिज़ाइनर चीज़ें आ गई हैं, कपड़े आ गए, तो लड़कियाँ उसकी तरफ भागी जा रही हैं।
3: पूरा बाजार भरा होता है।
4: बिल्कुल,
3: इस समय बाजार में जाएँ तो वही चानिया चोली और घाघरा मिलता है, और जैसे होड़ सी मची हुई है कि हम उससे ज्यादा अच्छा पहन लें।
4: बिल्कुल,
3: और रंगों के हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं उसमें लोगों को और दिक्कतें आती कि वो एक दिन पहना गया और फिर अगले गरबा में ही काम आता है, तब तक पता चला कि आप शहर छोड़ चुके होते हैं, आपका करियर बन चुका है, वगैरह वगैरह।
4: और बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी भी मिल रही है जो सिल्वर कोटेड होती है, नकली ज्वेलरी जो है, लेकिन उसको पहनने से कई बार इन्फेक्शन का भी वो हो जाता है, लेकिन फैशन है, पहनना है, हैं तो सब पहनते।
3: इसका जो उद्देश्य है मौज मस्ती
4: जी
3: और एक दूसरे से मेल मुलाकात, एक दूसरे से स्नेह प्रेम का रिश्ता वो बना रहे, बस ये उद्देश्य होना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि होली और दिवाली के अलावा जो पर्व सिनेमाई संगीत में सबसे अव्वल नंबर पर है वो है गरबा। हालांकि मैंने आज तक गरबा नहीं खेला मगर अपने आसपास के माहौल को देखती हूँ तो लगता है कि गरबा के साथ जिंदगी की रंगत कुछ और ही हो गई है। गरबा बस गीतों के सहारे धूमधड़ाका ही रह गया है। जीवन में आने वाली खुशी के छोटे छोटे पल को उत्सव में बदल देने की यह परंपरा बहुत पुरानी है। यह हमें ऐसी दुनिया में खो जाने का मौका देता है जहाँ खुशियाँ होती हैं और अपनों के साथ। गरबा नृत्य में हावी होता रिमिक्स कल्चर जीवन शैली में बदलाव की वजह से महज शोर और दिखावा ज्यादा है। अब तो उसमें बाकायदा भांगड़ा पॉप सब कुछ
4: सब चीज मिक्स हो गया है बिल्कुल,
3: और बहुत तेज संगीत। अब तो जो प्रतिबंध है कि आपको रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद कर देना है, लोग उसका भी उल्लंघन करते हैं, तो नियमों का उल्लंघन कम से कम ना करें
4: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, गरबा और डांडिया का ये बदलता स्वरूप ये साबित करता है कि हमारी संस्कृति आधुनिक समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम है। हालांकि आधुनिकता की चकाचौंध में हमें अपनी मूल परंपराओं और जड़ों को नहीं भूलना चाहिए ताकि इस पवित्र उत्सव की असल आत्मा हमेशा जीवित रहे। बिल्कुल सही बात लिखी है, हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हम सुनते हैं एक गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को

0: विविध भारती पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। मंजरी जी कहाँ गुम हो गई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर ढूंढ रही टिप्पणियां। एक अच्छी खबर सुनिए, वो ये कि एक महिला को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। वो महिला है नवनीतम नवी पिल्ले। ये भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी जज और यूएन मानवाधिकार की प्रमुख रही हैं। इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। मतलब मिला क्या, चुना गया है अभी, और वो तो बाकायदा घोषित हुआ है और जब ये सम्मानित किया जाएगा आगे चलकर
1: जी। और उन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई, प्रयास किया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने की ओर प्रयास किया। इसके लिए आप सम्मानित की गई।
0: और इसकी इनके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। 1890 के दशक में नवी के ग्रैंड पेरेंट्स बंधुआ मजदूर के रूप में गन्ने के खेतों में काम किया करते थे। मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1941 को डरबन में इनका जन्म हुआ। और पिता बस चलाते थे, यानी बस के ड्राइवर थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा
1: जी। और वे दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस की डिग्री प्राप्त करी। वे रवांडा के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ICTR की अध्यक्ष रही। इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की जज भी रही।
0: और इन्होंने 2008 से 2014 तक UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में कार्य किया। और इनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें हम विविध भारती परिवार की ओर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अब क्या इरादा है,
1: गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: मंजरी जी, फिर याद है कि माँ की अलमारी में कुछ अधूरे सपने भी छुपे होंगे, कभी टटोलने की, ढूंढने की कोशिश की आपने?
1: बिल्कुल, बहुत की, क्योंकि अक्सर
0: जब सिर्फ वो अंगूठी और जेवर लेके पहनने की कोशिश की।
1: मेरा तो जब वो खोल के, माँ जब बक्सा खोल के बैठती थी तो बस उनकी जो शादी का जो लहंगे की ओढ़नी थी तो वो बस हम बच्चे निकाल लिया करते थे, तो उसको मैं साड़ी की तरह लपेट के घूंघट काट के डोलती थी कमरे में।
0: माँ की साड़ी पहनने का भी एक अलग सुख होता था।
1: बिल्कुल,
0: कद छोटे होने के कारण माँ की साड़ी आती नहीं थी, तो उसको दोहरा करके
1: साड़ी पहन लेते,
0: साड़ी पहननी नहीं आती थी तो लपेट के आईने के सामने देखना और अलग अलग रूप रंग में जैसे जैसे माँ तैयार होती थी
1: वैसे, और माँ की माथे की बिंदी निकाल के अपनी लगा लेना, ये भी बड़ा शौक होता था।
0: तो लेकिन उनके सपनों के बारे में, तब जब हम छोटे थे तो माँ के सपनों के बारे में सोचने के लिए हम वहाँ पहुँच भी नहीं सकते थे, उनके भीतर उनके मन में क्या चल रहा होता है वो सबके बारे में, पूरे परिवार के बारे में सोचती थी, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये हर घर की कहानी है,
1: ये अब जाके हम लोग सोच पाते कि उस समय उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी अपने चीजों को बताने समेटने के लिए।
0: बिल्कुल, और वहाँ माँ की अलमारी खोलते हैं, वहाँ जो उनकी जिंदगी की बहुत सारी यादें, उनके बहुत सारे अधूरे किस्से छिपे होते थे, वहाँ कपड़े और पुरानी साड़ियों की तह में उनकी खुशबू बसी होती थी और उनकी जिंदगी के बहुत सारे अधूरे किस्से भी छिपे होते थे जो गाहे बगाहे वो बताया भी करती थी।
1: बिल्कुल,
0: अपने बचपन की यादें कि क्या हुआ था उनके बचपन में, उनके लिए कोई स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने खुद पढ़ाई की, ऐसी तमाम बातें माँ के, हम सब के माँ के, और लगभग सबकी माएँ एक जैसी होती थी उस समय
1: क्योंकि वो सारी यादें जुड़ जाती हैं। और उन समय उनकी गोटे वाली साड़ी जब हम लोग देखते थे तो माँ, मतलब माँ का यही होता था कि भाई ये शादी में बनवाई थी, पापा से लड़ाई लड़ करके कितना खर्चा किया था इस पर पापा बोले थे, और अक्सर माँ ये किस्सा बताया करती थी। और अच्छे कपड़ों की वो अलमारी अलग से रखती थी जिससे वो ख़ास मौके पर पहनने का सपना देखा करती थी, तो इस तरह की यादें होती हैं कि, और किसी भी पुराने डिब्बे में बचा रखी हुई चिट्ठियाँ, तस्वीरें या छोटी छोटी चीज़ें वो माँ उसको दिखाकर अपनी चीज़ें बताया करती थी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: अब देखिए ना, हमारे श्रोता भी इन यादों में बिल्कुल खो गए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद कि माँ अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुनती थी और बुनकर वो अक्सर उपहार में दे देती थी। अंतिम समय में उनकी सलाइयों पर वर्धमान की पिंक कलर की ऊन का एक स्वेटर था, उसे अधूरे स्वेटर को मैंने करीब 10 साल तक संभाल के रखा। अंततः मेरा मन हुआ कि मैं इसको पूरा करूं और मैंने उस ऊन का इस्तेमाल करके खूब सुंदर सी जैकेट बनाई। और तो हमें एक बात याद है कि जब स्वेटर की बात की है तो ऊन का गोला बनाने के लिए बैठा करती थी माँ और घर की जो अन्य सदस्य होते थे सबको, और हमें, हम सबको ऊन का गोला बनाने के लिए थमा दिया जाता था कि आप भी बनाओ, और वो ऊन पूरा उसका एक गुम्फा बन जाता था, संभलता नहीं था,
1: और कई बार तो फिसल जाए अगर गोला बना भी रहे, छोटे छोटे हाथों से फिसल गया तो दूर तक चला गया
0: वो धागा, फिर धागे के पीछे पीछे भागता रहा,
1: फिर माँ बड़ा उलझा भी देते थे, गांठ पड़ गई, फिर माँ कह रही तुम रहने दो, तो लेकिन
0: और बड़ा मजा आता था। खास तरह की कलाकारी भी होती थी उसमें, तरह तरह के, जैसे एक सुपारी का आकार या फिर संतरे का आकार,
1: नहीं उसको अंगूठे और छंगुनिया में ऐसे करके तिकल्ला नहीं होता है जैसे, उस तरह से वो लपेटा जाता था, तो वो भी छोटे छोटे हाथों में कितना लपटेगा, तो वो भी बड़ा मजेदार है।
0: हमारे श्रोता देख नहीं सकते, नहीं तो हम ये जो अभी आपने
1: एक्शन दिखाया
0: ये दिखा सकते थे, मंजरी जी बाकायदा वो हाथ ऐसे हिला के दिखा रहे हैं।
1: हमारे श्रोता बहुत समझदार है, वो सब जान गए कि तिकल्ला बोला है तो वो समझ गए होंगे। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी में सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं, उसके उनके अधूरे सपने भी तह करके रखे होते थे जो उन्होंने शायद विवाह के पहले खुद के लिए संजोए हों। एक तह में वो लाल जोड़ा जो उन्होंने अपनी विवाह के बाद कभी खुलकर पहना ही नहीं, दूसरी तह में वो किताब जिसे वो पढ़ना चाहती थी पर चूल्हे चौकी की जिम्मेदारियों में वक्त नहीं मिला, और सबसे नीचे दबी वो डिबिया जिसमें मेले से लाई बिंदिया आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। उनके अपने सारे रंग हमारे भविष्य को संवारने में घोल दिए और खुद एक फीकी सी साड़ी में सिमट गई। अलमारी खोलो तो आज भी उसमें से ममता के साथ साथ एक अनकही उदासी की महक आती है कि काश किसी दिन हमने पूछा तो होता माँ तुम्हारा सपना क्या था। बहुत ही, मतलब दिल भर आया ऐसी बातों को सुन करके।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पुराने ज़माने की माँ के लिए अलमारी यानी सिर्फ कपड़ों की या गहनों की राशि, वो तो है उनके त्याग की निशानी और अधूरे सपनों की कहानी, ऐसा हम ज़रूर कह सकते हैं। सामाजिक, वैचारिक,

0: अनास्था के कारण खुद की इच्छाएं दबाकर कुटुंब के लिए वो त्याग की मूर्त बन जाती थीं, परंतु उन्हीं के ममता भरी सजग छाया में पली आज की आधुनिक माताएं ऐसी नहीं हैं। बड़ी समझदारी से परिवार और बच्चों को संजोते हुए वे खुद के सपने और कर्तव्य पूरी करती नजर आ रही हैं। दरअसल इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर हम उन परंपराओं से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है और लड़कियों को खासतौर से आगे बढ़ाना है, उन्हें भी समानता से उनके हक के बारे में सोचना है, तो फिर उन परंपराओं से तो आगे निकलना होगा।
1: बिल्कुल।
0: अब कहने का ये मतलब नहीं है कि माँ की जो अच्छाइयाँ थी उसको आप हटा के दूर रख दीजिए।
1: जी, उनको तो रखना ही अपने पास। और हमारे साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी सिर्फ कपड़ों या कागजों का बक्सा नहीं होती थी, वो उनसे उन अनकहे अधूरी इच्छाओं का संग्रहालय होती थी जिन्हें उसने परिवार की खुशियों के पीछे कहीं छुपा दिया होता है। उसके ये अधूरे सपने किसी मलाल की तरह नहीं होती बल्कि उस त्याग की मिसाल होते हैं जो उसने हंसते हंसते खुद पर ओढ़ लिया। उसने अपनी दुनिया को अपने बच्चों और परिवार की खुशियों के इर्द गिर्द बुन लिया और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को उन परतों में हमेशा के लिए छुपा दिया। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उनकी, और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच ना जाने कितनी बार अपने सपनों को वो चुपचाप तह करके रख दिया करती, और बच्चों की खुशी, पति की ज़रूरतें और घर की जिम्मेदारियाँ उनके अपने अरमानों से आगे निकलती रहती, और उनकी अलमारी कि हर तह जैसे कहती कि मैंने भी कभी अपने लिए कुछ सोचा था। और कभी अगर ममता जी उस अलमारी को ध्यान से खोलिएगा तो देखें माँ के कितने सपने उसमें मिल जाएंगे, और जिसमें उनके कोई कभी शब्द नहीं उन्होंने दिए, और अगर मिल जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि माँ के सपनों को उम्र नहीं बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए होता है। और कई बार होता है कि जब उनकी अलमारी देखो तो उसमें बहुत सारे रुमाल दिख जाते हैं तह रख के, उनकी कढ़ाई के धागे दिख जाएंगे, सुई का डब्बा दिख जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माँ की उस अलमारी में दिख जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उनके उसके साथ साथ कुछ कागज़ों के बीच रसीद भी मिल जाती है, जो चीज़ें उन्होंने उस समय खरीदी होंगी वो भी दबी पड़ी हैं, कुछ पन्ने फट गए उनके रसीदों के, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अपने बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े, झबले, टोपी, मोजा, ये सब भी उनकी अलमारी में खूब दिख जाता है। और जब क्या कहते हैं कि उनकी तस्वीर का जो एक पोटली होती है या एल्बम होता है, उसमें भी ना जाने कितने समय के लोगों के परिवार के सदस्यों की फ़ोटोग्राफ्स मिलती हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कितना संभाल के उन्होंने उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को रखा हुआ है।
0: और वो प्रिंट करने का ज़माना भी था कि प्रिंट करवा के सहेज के रखा भी जाता था, कहीं एल्बम में लगाया जाता था या लिफाफे में करके। अब एक गाना सुन लेते हैं और बातें करते हैं।

0: भाई, माँ की अलमारी में जो छुपे उनके अधूरे सपने थे, इसी तरह चांद सितारों के माध्यम से, सूरज के माध्यम से, कुदरत के माध्यम से पूरे होते थे। वो
1: बिल्कुल
0: अपने सपनों को इन्हीं तरीके से, कभी चांद की कहानी, कभी कोई कहानी सुनाकर अपने सपने पूरे कर लेते थे। तो सपन कहानियों के माध्यम से उनके सपने मुकम्मल हो जाया
1: बिल्कुल।
0: करते
1: और
0: थे।
1: ममता जी, कई घरों में उनके पास अलमारियां होती थी, माँ की दीवार वाली अलमारी होती थी, कई बार वैसी लकड़ी की पुरानी जो नक्काशीदार अलमारियां होती थी, और कई बार उनके बक्से या कोठरी में बहुत सारी चीज़ें होती थी, इस तरह से भी
0: अब
1: रखते थी वो लोग।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की अलमारी में पुरानी फोटो, डायरी, कॉपी और बहुत सारी यादगार चीज़ें रखी हुई थी। उन कॉपियों में उन्हें कुकिंग टिप्स, फिल्मों के मनपसंद गाने लिखे हुए होते
1: क्या
0: थे।
1: बात है,
0: और एक हमारी सखी, इन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर बातचीत चल रही है, वो जो अंगूठे और उंगली में लपेटने की बात कर रही हैं मंजरी जी, ऐसे लपेटा हमने लोगों को, हम लोगों के भाई पतंग उड़ाने के समय जब मांझा लपेटा
1: जी
0: करते थे। भाई ये तो हमने भी ये काम किया है
1: हाँ, मांझा लपेटना भी
0: कि
1: तिकल्ला जैसा
0: हाँ वो
1: बनाते थे
0: पतंग उड़ा रहे हैं
1: जी।
0: और मांझा पकड़ो आप संभालो, और उंगली कट जाती थी।
1: हाँ, जैसे वो जब पूरा लपेट के निकलता था ना ममता जी, तो उसका शेप जो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, वो जो गुल्ली होती थी वैसा बन जाता था। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन उसको बड़े अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे और हमारे जन्म से पहले के, और बहुत रेयर अलभ्य थे कुछ सिक्के और कुछ तांबे के, कोई हॉल वाले तो कोई पुराने गोल, मतलब एक गोल छेद वाला सिक्का, और पुराने गोल नहीं होते थे, और राजा महाराजा के मुख्य उसमें छापे बने हुए थे। वे सिक्के उनके नहीं, हमारे सपने पूरा करने के लिए रखे होंगे, मतलब वो
0: और
1: सिक्के देख के।
0: एक

0: जी
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी सेंट बनाया करते थे, मेरी मम्मी की बड़ी बड़ी लोहे के संदूक में से आज भी उनकी खाली छोटी छोटी शीशियों से उनकी खुशबू संदूक में से आती है जब भी वो संदूक खोले जाते हैं, जबकि वो सेंट नाना जी ने आज से कम 70-75 सालों पहले बनाए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में से कोई एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन इसे अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे, और जो आपने बताया कि सिक्के, तो इस तरह की बातें। और एक श्रोता ने लिखा है कि उन दिनों की माँ की अलमारी कहाँ हुआ करती थी भाई, हमने तो माँ की काठ की पेटी या फिर बक्सा देखा था जिसे वही छू सकता था जो बच्चा उनके समीप रहते हुए उनका प्रिय होता था, और मैं उन बच्चों में नहीं आ पाया था। और बिल्कुल ताला बंद होता था उस बक्से में, और चाबी कहीं छुपा के रखी होती थी।
0: इसीलिए तो मैंने बोला ना कि सब चीजें सबके यहाँ नहीं होती थी।
1: हाँ, एक श्रोता लिख रहे हैं कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद है, माँ के अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुना करती थी, और हम स्वेटर की बातें कर चुके हैं।
0: बिल्कुल, और जब स्वेटर बिनती थी तो हमने देखा ही था कि किस तरह से वो बिना करते थे। और माँ की बहुत सारी चीज़ें भी होती थी घर गृहस्थी की, जिन्हें हम सोच सकते हैं कि वो भी कभी कभी उसमें चीज़ें दिख जाती थी उनके बक्से में रखी हुई संभाल करके।
1: अब हम मुहावरों की बातें कर लेते हैं मंजरी जी, तो बताइए आपको कितने मुहावरे याद हैं? आज जो मुहावरा हमने दिया है वो याद है कि नहीं?
0: हाँ बताइए। अपना उल्लू सीधा करना, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना। इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ स्थलों में, अन्य पूजा स्थलों में, जहाँ श्रद्धालुओं में भक्ति भावना होनी चाहिए, अत्यंत भीड़ भाड़ में भी कुछ लोग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी धक्का देते हुए पहले दर्शन करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो कि भक्ति भावना के विपरीत है। और इस तरह की बातें हमारे बहुत साथियों ने लिख करके भेजी हैं। तो हम
1: अच्छा मंजरी जी, आप तो मुहावरों की बातें बता रही हैं और शुरुआत तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी ये माँ की अलमारी की बात तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, उसमें से कपड़े सपने निकलते ही आ रहे हैं। अब हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है, अभी कमेंट लिखा है, हमें लगता है कि इस विषय पर बातें करना हमारी सखियों को बहुत मन भाया है। लिखा है कि अलमारी में उनकी साड़ियाँ इतने करीने से मलमल के कपड़े में लपेटी हुई रखी रहती हैं, जैसे कितनी अनमोल धरोहर है उनकी। साड़ियों में तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है। एक किनारे में उनकी छोटा सा पैकेट बना रहता है जिसमें उनकी पुरानी तस्वीर, पुराने एल्बम और न जाने क्या क्या सहजा हुआ रखा रहता है। काफ़ी सारी डायरी, जो उनको लिखने का शौक़ है, कुछ लिखती रहती हैं, वो भी उनकी अलमारी में सजी रहती है। पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, सब कुछ एक पेंसिल बॉक्स में करके रखा हुआ है। कभी उनको पेंसिल चाहिए तो वो भी वर्क पहली भरने के लिए, और कभी गलत हुआ तो रबर भी चाहिए, शार्पनर भी चाहिए, वो सब संभाल के अपने पास रखती हैं। क्या बात है भाई, हमें लगता है कि जो माँ की अलमारी की यादें हैं वो अंतहीन हैं। अब एक हमारी सखी ने लिखा है कि मम्मी की अलमारी और यादें शब्द नहीं है बयां करने के लिए, अब तो हमारे पास भी जैसे शब्द ख़त्म होने को हैं। और डायरी और कॉपी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि उनकी अलमारी में, उनके बक्से में एक डायरी होती थी, और कुछ डायरी में ये भी लिखा होता था कि किसको कितना दिया गया,
0: खर्चे का हिसाब,
1: खर्च का हिसाब, और तोहफे के रूप में, जैसे शादी विवाह में शगुन के तौर पर देते हैं, तो फलाने को इतना रुपया दिया गया और उनको इतना रुपया दिया जाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में किसी मेले में जाती थी तो वो भी डायरी में दिखता था कि यहाँ पे ये पानी बताशे, दही बड़ा, चटनी, आलू की टिक्की खाई और इतने पैसे ले गए थे, इतने पैसे बचे, मतलब ये सब चीज़ें छोटी छोटी भी वो लिख के रखती थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम उनकी यादों को साझा करते हैं, ताज़ा करते हैं।
1: अक्सर मुहावरों और लोकोक्तियों में बात करती थी, है ना?
0: बिल्कुल, जैसे कुछ काम करने का मन नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं तो बस कुछ ना कुछ अपना बोल दिया उन्होंने, अपनी मुहावरे कहा थे।
1: तो और आज का विषय भी मुहावरा है
0: जी।
1: तो मुहावरे में हमने रखा है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपने आप अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाएं। और हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये पुराना और प्रसिद्ध मुहावरा है, इसका अर्थ है अपना काम सिद्ध कर लेना, और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं ज़िंदगी में जो अपना काम सीधा करके आगे निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया अपना उल्लू सीधा करना, भाई इस नेक कार्य में तो प्रायः सभी लोग लगे हुए हैं, ऐसा करते रहना कोई बुरी बात नहीं बशर्ते उससे किसी का दिल ना दुखे, लिखते हैं हमारे साथी। और एक लिखते हैं कि इस मुहावरे को इस बात से

0: बताना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ, अच्छा ये चीज़ तो मैंने पढ़ी है कि दर्शन करने जाते हैं ये वाली बात, और एक लिखते हैं कि उल्लू सीधा करने वाले मुहावरे पर ये गीत फिट बैठता है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपना काम निकल गया, फ़ायदा हो गया, फिर कौन तू कौन मैं, सावधान ऐसे लोगों से जो दूसरों को उल्लू बनाते हैं। कई बार हो भी जाता है तो बड़ा मन दुखता है कि कैसी लोगों की प्रवृत्ति होती जा रही है जो सिर्फ मतलब के लिए ही साथ में खड़े होते हैं, उनका मतलब निकल गया तो आपको पूछेंगे भी नहीं, पलट कर आपको देखेंगे भी नहीं, मुसीबत के समय तो आप ये उम्मीद ही मत करिए कि वो आपका साथ देंगे। तो अगर आप एक बार धोखा खा जाएं तो हमेशा के लिए उसको अपना बना लें कि इस तरह
1: पर
0: का
1: ऐसा करना नहीं चाहिए
0: जी
1: कि अपना मतलब सिद्ध करके आगे बढ़ के और सामने वाले की मदद ना करें।
0: जी
1: और मंजरी जी, आज आपदा जोखिम नवीनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है।
0: बिल्कुल
1: दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना। जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा और भूस्खलन जैसी आपदाएँ बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी और तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल
1: इसकी सतर्कता की ओर ध्यान दिलाना इसका उद्देश्य है।
0: बिल्कुल। और हमें घर, स्कूल और कार्यालयों में सुरक्षा के उपायों को जानकारी देनी चाहिए, रखनी भी चाहिए, और आपातकालीन जो नंबर होते हैं उनको लिखकर जरूर आप रखें, कभी भी मुसीबत पड़े तो आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। सरकार और आम लोगों को मिलकर आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। जागरूकता और सही तैयारी से कई लोगों की जान बचाई जा सकती हैं। इस दिवस का संदेश है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आपदा के लिए पहले से तैयार रहें।
1: और अब सुनते हैं ये गाना।

0: अभिमान फिल्म का ये गाना था और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा, अब बात करते हैं उस सीरीज की जहाँ से आपको नाम मिला विकास का, इस किरदार का। तो ये पंचायत के साथ जुड़ना कैसे हुआ, क्योंकि शायद दिलचस्प बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियसली इसका ऑडिशन नहीं दिया था या यूं ही हो गया, कुछ तो मज़ेदार किस्सा है इसके साथ जुड़ा हुआ। पंचायत के साथ कैसे जुड़े आप?
2: देखिए, जब मुंबई में ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ मेरा, तो जैसा मैंने कहा कि रोज सुबह, कई बार तो बहुत लंबे टाइम तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं मुंबई आ गया हूँ। सोया हुआ हूँ, नींद खुली, मैंने कहा अरे मैं मुंबई में हूँ, यकीन ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि बचपन से मुझे मुंबई जाना था, बचपन से ही सपना देखा था मैंने। इस कदर दीवानगी थी मुंबई आने का कि अगर मैं किसी ट्रेन में देख लूँ कि पटना टू बांद्रा, मुझे लगता था कि जाकर के उस बॉगी को एक बार प्रणाम कर लें।
1: अच्छा।
2: उसको छू लें, क्योंकि ये मुंबई जा रहा है। और जब मैं मुंबई आ गया तो रात में कभी चौंक के उठ जाता था कि सच में मैं मुंबई आ गया, मैं मुंबई में हूँ अभी, ये यकीन नहीं होता था मुझे। और जब मुझे ये लगता कि जब तुम मुंबई आ गए हो तो तुम सोए हुए क्यों हो भाई, उठो ना, जाओ ना ऑडिशन देने के लिए, करो ना वो काम जो तुम चाहते हो। तो बहुत ही सुबह उठ के थोड़ा गले के लिए कुछ रियाज कर लेता था, चूंकि थिएटर बैकग्राउंड से आया था मैं।
1: बिल्कुल।
2: और वही चावल दाल, कभी चना मूंग खा के, या सत्तू। सत्तू मेरा बहुत ही गो टू फूड है, अभी भी यकीन माने मैं सत्तू पी के आया हूँ।
1: अच्छा। जी।
2: तो उस टाइम में भी ये सब सत्तू या चावल दाल खा के मैं निकल जाता था ऑडिशन के लिए।
1: जी।
2: और कई बार मुंबई की तो आप जानते ही हैं उमस, इधर तो आप गर्मी भी ज़्यादा होने लगी है, बट ये सब चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता था। ना तो उस समय सनस्क्रीन था, ना तो कुछ था, बस जुनून था जिसकी वजह से पूरा शरीर चमक रहा था, है ना?
1: बिल्कुल, आपकी बातों में झलक रहा है।
2: हाँ जी। और मैं निकलता जहाँ मुझे मिल जाए पानी पीने का, पसीने सुखाने का, वो सब चीज़ मैं कर लेता था। ऑडिशन जब भी मैं कहीं जाऊं, और दिन में अगर एक भी ऑडिशन हो जाए तो ऐसा लगता था आज का दिन सफल हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि जब सामने कैमरा होता था तो मुझे लगता मैं क्या कर दूं। कई बार स्क्रिप्ट हम घर से अपना मोनोलॉग तैयार करके ले जाते थे
1: जी।
2: और सामने रिकॉर्ड करने वाला अगर उसको मजा आ रहा है तो हम उसी में इम्प्रोवाइज करने लगते थे।
1: बिल्कुल।
2: किसी तरह इसको मैं इम्प्रेस कर दूं अपने एक्ट से। ये फितूर, ये दीवानगी, ये पागलपन मेरे सर पे सवार हो गया था और ये चलता रहा मैम। बट उस समय एक चीज मेरे ध्यान में था कि ऑडिशन दो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ लोड बढ़ जाता था दिमाग पे कि भाई मैंने बड़ा अच्छा ऑडिशन दिया, कॉल नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। तो अपन ऑडिशन दे दे के भूल जाते थे।
1: तो पंचायत का ऑडिशन भी आपने दे के भूल गए या किस तरह से यहाँ तक?
2: पंचायत का ऑडिशन में ये हुआ कि तब तक 1.5 साल हो चुके थे मुंबई में।
1: अच्छा।
2: 1.5 साल। और मेरे कुछ दोस्त, मेरे नहीं मतलब मेरे रूममेट के एक दोस्त, वो उनकी महफिल जमती थी मेरे घर पे, तो अंकित मैं फ्लैटमेट हुआ करता था
1: जी।
2: फ्लैटमेट क्या, हम लोग समझिए कि रैन बसेरा ही था वो। एक साथ 6-7-8 लोग रह रहे हैं।
1: अच्छा।
2: और कमाल की बात ये थी कि 7-8 लोगों के लिए मैं ही रोटी बेलता था।
1: अच्छा। रोटी का काम आपको सौंपा गया था?
2: नहीं नहीं, सौंपा क्या गया था, कोई कुछ करते ही नहीं थे। और मुझे ये था कि इस समय पे मुझे बाहर जाना है, ऑडिशन देना है, समय पे सो जाना है, तो वो सब इंतजार करते रहते थे कि चंदन आएगा तो खाने को मिलेगा। तो उन सब के लिए मैं रोटी बनाता, और बाद में फिर मैं टिक्कर बनाने लगा।
1: अच्छा।
2: टिक्कर जो रोटी का बहुत मोटा रूप।
1: अच्छा, छोटा और मोटा रूप। छोटा और मोटा रूप।
2: हाँ जी। अच्छा। बहुत मोटा मोटा मैं, चूंकि मुझे बड़ा मुश्किल हो गया था वो
1: जी।
2: मतलब एक एक घंटे तक रोटी बेलना, तो मैं
1: जी
2: बहुत
1: जी
2: मोटा
1: जी
2: मोटा बनाने लगा। खैर,
1: जी
2: तो हाँ महफिल जमती और फिर लोग आते हैं, तो उसमें से एक मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त बन गया लतिन। तो उन्होंने कहा कि यार चंदन तुम कल आ जाओ ऑफिस में, तुम्हारा हम इंट्रोडक्शन करवा देंगे। मैंने कहा अरे वाह बहुत सही, इतने साल से आज तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है कास्टिंग वे में। तो उसने बुलाया, अगले दिन हम पहुंच गए वहाँ। कमाल की बात ये थी कि पंचायत सारे कैरेक्टर लॉक हो चुके थे,
1: अच्छा
2: सिर्फ दो कैरेक्टर बचा हुआ था। एक एक दिन का वो काम था, एक इलेक्ट्रिशियन का और एक दूल्हे का। बोला देख दूल्हा तो तू लग नहीं रहा, इलेक्ट्रिशियन बन जा, उसका ऑडिशन है। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, बोला ये करके तैयार थोड़ा सा तैयारी कर लो और आ जा।
1: जी
2: मैंने कहा ठीक है, एक दो बार पढ़ा और फिर मैंने वो ऑडिशन देखे, फिर वही बातें भूल जाओ। भूल गया फिर अपने दूसरे ऑडिशन की तैयारी घूम घूम के, कि यस ऐसे दरवाज़ा नॉक करता था कि भाई सर कुछ है क्या मेरे लिए, कुछ है क्या मेरे लिए, ये फिर शुरू हो गया मेरा। उस समय चंदन चंदन कुमार जो हमारे पंचायत के राइटर हैं और दीपक मिश्रा जो हमारे पंचायत के डायरेक्टर हैं, तो इन्होंने देखा मेरा ऑडिशन और उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि यार इस लड़के से अपन कुछ और करवाते हैं, बहुत सही लग रहा है। तब तक विकास के लिए कोई और कैरेक्टर लॉक हो चुका था,
1: अच्छा
2: तो उनके मन में आया क्यों ना हम विकास एक बार ट्राई करें इससे। तो आया विकास का ऑडिशन मेरे पास, मुझे लगा कि यार ये क्या ही मतलब, कहाँ मैं वन डे टू डे करता हूँ, इन्होंने पैरेलल लीड कैरेक्टर मुझे ऑफर कर
1: बिल्कुल
2: रहे हैं।
1: बिल्कुल
2: तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना तो चल ही रहा है, रोज भटकेंगे फिर से। और मैं एकदम कफन बांध के आया था अगले 20-25-30 सालों के लिए, ये
1: अच्छा
2: नहीं कि मुझे फट से काम, नहीं बहुत समय बुढ़ापा तक वो सोच के आया था मैं। बट आ गया पंचायत का ऑडिशन और अगले दिन चला गया ऑडिशन के लिए, दिया
1: शुरू किया
2: ऑडिशन।
1: जाए
2: हाँ दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया TVF से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं।
1: अच्छा
2: तो रामनगर में उनका ऑफिस आ गया मैं मिलने के लिए। यकीन मानिए मुझे उस समय तक मैं TVF जानता भी नहीं था, कुछ
1: अच्छा
2: वीडियो मैंने ज़रूर देखे थे बट जानता नहीं था मैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है।
1: क्या बात
2: तो
1: है,
2: इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: क्या बात है, क्या बात है। इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलना ही बहुत बड़ी बात है।
2: हाँ जी,
1: इसी बात पर कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
2: अरे वाह, मैं इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है, जब मैं स्कूल शुरू किया था ना तो अक्सर फिल्म का एक गाना बहुत उस समय, आजकल तो वायरल कहते हैं, उस समय तो लोकप्रिय कहा करते थे।
1: पॉपुलर,
2: हाँ जी हाँ
1: बहुत
2: जी,
1: पॉपुलर।
2: तो एक बार आजा आजा अक्सर फिल्म का गाना है,
1: जी,
2: इमरान हाशमी की
1: सुनवाते
2: फिल्म का
1: हैं गीत,
2: दौर था ये।
1: सुनवाते हैं गीत,
2: हाँ जी हाँ
1: बिल्कुल।
2: जी।

0: पंचायत की बात चलिए तो हम आते हैं कि आपके किरदार पर, उस किरदार के लिए कुछ तैयारी की आपने, जैसे मैनरिज्म कुछ है उसके, उसकी बोली किस तरह से बोलेगा, इसके पीछे कुछ तैयारी हुई, वर्कशॉप हुई, किस तरह से ये क्योंकि बहुत पसंद किया जाने वाला किरदार है, जिस
1: बिल्कुल
0: हिसाब से वो स्लो, बड़े आराम से, इत्मीनान से बोलता है, चलता है, तो वो तैयारी कैसी हुई?
1: जी। तो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो जैसा वो थिएटर में मुझे बताया गया था कि जितने बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो वो कैरेक्टर एक समय के बाद खुद से बोलने लगेगा कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं
0: जी
1: ऐसा हूँ। तो पंचायत का जो विकास है वो स्क्रिप्ट से मैंने उठाया, मतलब
0: अच्छा
1: उसको जितना मैं पढ़ा, मतलब बहुत पढ़ा मैंने
0: जी
1: कि अगर ये प्रधान जी से इस तरह से बात कर रहा है, ये प्रहलाद चा से ऐसी बातें कर रहा, या सचिव से ऐसी बातें कर रहा, तो ये किस तरह का कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कैसी एनर्जी होगी।

0: ये सब कुछ आप जब बार बार बार बार स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, आपको सब कुछ मिल जाता है। इस एक स्क्रिप्ट में अगर आप बार बार पढ़ो तो उसमें सब कुछ रहता है, आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं होती,
1: बस उसमें रमना और बसना होता है
0: बस।
1: स्क्रिप्ट
0: तो
1: में
0: समझिए कि विकास को इतना, मैं चूंकि वो पहला प्रोजेक्ट था
1: जी
0: तो मैं किसी तरह से कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहता था,
1: जी
0: तो उसको बहुत पढ़ा मैंने। जैसे कई बार होता है ना कि जो बुक आपका बहुत पसंदीदा होता है, आप इतना पढ़ जाते हो कि उसके पेज थोड़े से मटमैले हो जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: हर जगह फिंगरप्रिंट होता है, गंदे से
1: बिल्कुल
0: हो जाते हैं हर जगह। तो मेरा स्क्रिप्ट भी इसी तरह से हो गया था,
1: जी
0: कहीं भी मुझे अगर 5-10 मिनट का भी समय मिलता मैं एक दो पेज पढ़ लेता,
1: अच्छा
0: इतनी दीवानगी थी मुझे अपने स्क्रिप्ट को लेकर के। तो एक तो दिमाग में ये भी था मैम कि अपन एक्टिंग नहीं करेंगे कहीं भी, जितना अच्छा ये मेरा ना मतलब अभिनय को लेकर के मेरा अप्रोच भी हमेशा से रहा है
1: जी
0: कि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा हेयर मेकअप करके अभी तैयार है तो अभी मुझे एक्टिंग करनी है। मैं जैसा हूँ या जैसा मेरा कैरेक्टर है अपन उसी तरह से करेंगे, क्यों हम कैमरा लगते ही ये दिखाने लगते हैं कि देखो अब हम एक्टिंग करेंगे, अब तैयार हो जाओ हमें देखने के लिए। मुझे इससे परहेज शुरू से था, मुझे नहीं पता कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, आज तक मैं ढूंढ रहा हूं। लेकिन हाँ, मुझे बुरी एक्टिंग क्या होती है इस बात की समझ बहुत पहले हो गई थी,
1: और मुझे लगता है वो समझ होना बहुत ज़रूरी है
0: बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं उनसे बचता था, और ये था कि क्या करना है ये तो एक्सप्लोर करो, ये बहुत महासागर है, ये पूरा खुला आकाश है, क्या करना है आप ढूंढो, लेकिन क्या नहीं करना है ये पहले उस
1: पहले
0: पर
1: पता होना
0: बिल्कुल
1: चाहिए
0: पता होना चाहिए। तो विकास के साथ भी ऐसा ही किया मैंने,
1: जी
0: अपने गांव में जिस तरह से मैं देखता था कि लोग जिस तरह से खड़े होकर के, 5 लोग अगर पुलिया पे खड़े हैं या बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो कितना, अगर बहुत इन्वॉल्व हैं उस तरह की बातें हो रही हैं तो उनका हाथ पांव कैसे रहता है, एनर्जी कैसी होती है, मेरी ये पूरी कोशिश रही। आप देखना किसी भी फ्रेम में आपको नहीं लगेगा कि ये लड़का अलग किसी दूसरे शहर का है या ये लड़का विकास इस गांव का नहीं है। तो इन सब पे मेरा बहुत ही मैं चाहता था कि घुस जाऊं, जैसे आप कोई शर्ट पहन लेते हो, कोई कोट पहन लेते हो और वो आपका हो जाता है, उसी तरह से विकास को मैंने पहन लिया।
1: बिल्कुल, और
0: अब
1: वो दिखता भी है। और इसके एक दो सीन है
0: जी
1: जिसकी मैं बात करना चाहूँ, जैसे एक था जिसमें विकास वो बाइक पे बैठता है और पूरा पूरा पलंग उठा के सर पर और चल
0: हाँ
1: देता है। तो
0: जी, हाँ
1: इस तरह
0: जी।
1: के जो सीन हैं ये कहीं इम्प्रोवाइज्ड है या स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे पहले से?
0: नहीं, ये जो बेसिकली जो खाट जो हम सर पे उठाते हैं ये
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: स्क्रिप्ट में लिखा था,
1: अच्छा
0: लेकिन पंचायत में एक बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे क्रिएटर्स जो हैं दीपक सर, अरुणाभ सर और चंदन सर जो राइटर हैं, ये अपने एक्टर को बड़ा खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात अभी मतलब शुरू से ही उन्होंने कहा है कि देख ये यूनिवर्स है, हमने अपने सारे कैरेक्टर को इस यूनिवर्स में उतार दिया है, मैं ये इंसिडेंट या ये इवेंट मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है बट ये होगा कैसे, आपको उस मोमेंट में, उस स्पेस में, उस एम्बियंस में जो समझ में आ रहा है आप करो। यही वजह है कि पंचायत में जितने कैरेक्टर हैं कई बार वो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत चीज निकाल के ले आते हैं, है ना। और इसके लिए जरूरी है कि आप उस यूनिवर्स को समझें, अगर आप नहीं समझोगे ना तो ऐसा लगेगा एयर ड्रॉप किया हुआ ये कैरेक्टर है,
1: जी
0: सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रहा है, सिर्फ वो लाइंस बोल रहा है, ऐसा लगेगा। तो ये छूट, ये लिबर्टी हमारे क्रिएटर्स ने हम लोगों को दिया है, और मुझे भी इम्प्रोवाइज करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार जब आप जो हमारे राइटर हैं डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ सोचा है इस सीन को कि ऐसा रखेंगे, उनके अतिरिक्त आप कुछ कर देते हो, उनसे आगे कुछ बढ़ा देते हो अपने सीन को या अपने कैरेक्टर को, तो यकीन मानिए जब आप होटल जाते हो वापस अपने फ्रेश होकर के नहा के अपने बेड पे आते हो तो बड़ी खुशी मिलती है आपको कि वाह मैंने
1: वो
0: सीन में
1: संतोष मिलता है
0: यस
1: कि आज क्या किया।
0: आज बड़ा अच्छा सीन किया
1: जी
0: मैंने,
1: जी जी
0: और
1: बिल्कुल
0: बहुत ही खुशी खुशी आपको नींद आ जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह 4:30-5 बजे का अलार्म बजता है फिर आप वही जुनून वही पागलपन आपको काम आता है
1: तो सेट पे
0: जी।
1: कैसा माहौल है आपके को एक्टर से, ऑफ स्क्रीन भी कैसा माहौल है, किनके साथ मिलना जुलना तो लगा रहता होगा?
0: देखिए एक तो बहुत यह है कि लोगों को लगता है कि बहुत हम लोग मिलते जुलते हैं, पर्दे पे इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन मुंबई बिल्कुल उल्टा है, किसी के पास भी समय नहीं है, और कई बार डर भी लगता है कि भाई कोई कहीं जाऊं पता नहीं क्या होगा।

0: उसकी प्राइवेसी है, उसका क्या है। तो सेट पे तो हम लोग सब बहुत मिलजुल के, सब लोग, और ये सभी अभी इतने 8-9 साल का अनुभव है मेरा,
1: जी
0: सेट पे हम लोग जितनी केमिस्ट्री, और सिर्फ मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, सभी प्रोजेक्ट में यही होता है कि
1: जी
0: हम लोग सेट पे बहुत अच्छे रहते हैं, और जैसे ही हमारा पैकअप होता है हम सब अपने अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, है ना। और ये कई बार सही भी होता है, कई बार मुझे गलत भी लगता है, बट ठीक है, मैं भी इस धारा में बह रहा हूँ। किसी के पास समय नहीं होता कि वो मिले, पुराने दिनों को याद करे, सिर्फ
1: कभी
0: का
1: कभी किसी प्रोजेक्ट में अगर फिर से उनसे मुलाकात हो, फिर वो एक मिलना अलग हो जाता है।
0: एक तो हम लोग का जो भी एक्टर होते हैं
1: जी
0: उनका बहुत रिसीविंग नेचर होता है।
1: जी
0: मान लो कि अगर आपकी एनर्जी मुझसे नहीं भी मिल रही है, आप बहुत अलग ख्यालात के हैं, मैं अलग हूँ, बट जब हमारा सीन होता है तो हमें अपनी एनर्जी को मैच करके और उस वक्त को बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को करना होता
1: जी जी
0: है ना।
1: जी बिल्कुल
0: तो लोग लगा, अरे भाई क्या है, बहुत बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है इन लोगों में। तो ये हमारा जॉब का एक सबसे पहला ये स्टेप है ये।
1: अच्छा, पंचायत के बाद क्या फर्क आया है जब आप अभी वापस गांव जाते हैं मिलने जुलने परिवार से, दोस्तों से, पहले के चंदन में और अभी वो जिस तरह से बिहेव करते हैं या मिलते जुलते हैं, कुछ फर्क है दोस्तों के बीच या बाहर के लोगों के बीच?
0: देखिए, उनके नज़र, उनका नज़रिया बदला होगा मेरे लिए, ये तो मुझे ऐसा लगता भी है,
1: हाँ
0: बट मैं तो बिल्कुल भी अंदर से नहीं बदला हूँ। मैं
1: अच्छा
0: जैसा था वैसा ही हूँ, पहले भी इसी तरह से मैं सोचता था, इतना ही कूल और कॉन्फिडेंस में रहता था जितना आज है। और कभी मुझे अभी कई बार ऐसा लगता है कि ये तो होना ही था मेरे लाइफ में,
1: जी
0: तो कई बार आश्चर्य नहीं होता मुझे कि अरे।
1: लेकिन बाहर जो बाकी लोग मिलते हैं उनकी मेहमान नवाजी में कुछ फर्क आया?
0: बिल्कुल, कई बार तो उनको लगता है कि भाई ये चंदन तो आप, जैसे मुझे बहुत बुरा लगता है जब दोस्त लोग अजीब बिहेव करते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, उनको लगता है कि अरे इसको ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे बैठाओ, इसके लिए थोड़ा
1: कुछ
0: पहले
1: कुछ
0: चंदन
1: बुरा
0: को।
1: लग जाएगा। अच्छा
0: हाँ, तो मुझे लगता है ओ हेलो, मैं वही चंदन हूँ भाई, ऐसा क्यों तुम बिहेव कर रहे हो, जैसा पहले थे वो सही रहो। तो लोगों का नज़रिया बदला है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी, जैसा मैं पहले था
1: अच्छा
0: आज भी वैसे ही हूँ। घर जाऊं या कहीं भी जाऊं,
1: जी
0: मैं वही कहा कि ये मेरा जॉब है अभिनय करना। लोगों को लगता है कि अरे ये तो पर्दे पे आ रहा है ये सब चीज़ें, बट ये मेरा जॉब है। और बहुत ही संजीदा और गंभीरता के साथ, जितना एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर अपने काम करते हैं, उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ हम लोग भी काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपसे बहुत बेहतर हैं या ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं। हाँ, बट कई बार होता है कि कैमरा देख करके लोगों को थोड़ा सा रोमांच फील होता है, मैं समझ सकता हूँ कि वो अगर वैसा सोचते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा एक जॉब है, मैं बस एक जॉब कर रहा हूँ। मुझसे बेहतर काम जो सरहद पे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो
1: बिल्कुल
0: इंजीनियर हैं, वो या जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, उनका योगदान समाज में मुझसे कहीं ज़्यादा है।
1: क्या बात है, बिल्कुल। सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत,
0: बिल्कुल सुनेंगे हम,
1: जरूर बताएं
0: हर घड़ी बदल रही है
1: रूप
0: रूप
1: जिंदगी,
0: जिंदगी की,
1: बिल्कुल सुनवाते हैं ये
0: है
1: गीत।
0: ना।

0: अभी हम बात करते हैं गुलमोहर
1: ओ
0: की।
1: वाह,
0: गुलमोहर में आपने काम किया और उसमें मनोज बाजपेयी जी के साथ काम किया, शर्मिला टैगोर जी भी स्क्रीन पर थी आपके साथ। उससे जुड़े कुछ खास अनुभव किससे आप सुनाना
1: यस यस
0: चाहें,
1: यस
0: कैसा लगा उनके साथ काम करके और कैसा अनुभव रहा?
1: बिल्कुल। गुलमोहर मेरे फिल्मी करियर के लिए एक ऐसा है फिल्म जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा। हालांकि जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया था तो मैंने मना ही कर दिया था।
0: अच्छा, क्यों?
1: हाँ, क्योंकि कैरेक्टर मुझे सही नहीं लग रहा था, यार मैं इस तरह का कैरेक्टर तो नहीं करूँगा। बट हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल चिटेला, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सुनो एक बार मुझसे मिलो, करना ना करना बात की बात है, पहले एक बार मिलो। मैं मिला और मुझे ये था कि अगर मैं जाऊँगा तो ये तो मना ही लेंगे, बट
0: जी।
1: मैं बहुत जिद्दी रहूँगा अपने जिद पे कि भाई मुझे नहीं करना। और गया बैंड्रा में उनके ऑफिस, और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करना चाह रहे हो। मैंने कहा सर मैं ये गेट कीपर इस तरह का कैरेक्टर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक डर भी था कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो लोग मुझे इसी तरह के कैरेक्टर देते रहेंगे,
0: टाइप कास्ट कर
1: टाइप
0: देंगे।
1: कास्ट कर देंगे, और अपन बहुत अंदर भरा हुआ है मामला, तो फंसना नहीं है किसी एक कैरेक्टर में।

0: पढ़ना चाह रहा है, तो कुछ ऐसा कैरेक्टर रखते हैं। राहुल कमाल का, बहुत कमाल के इंसान, वो मेरे हर बात को मानते चले गए। उन्होंने बोला बस मैं यही चाह रहा हूँ, यही करो।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं क्यों मेरी सारी बातें उन्होंने मान ली और मैंने वो फिल्म किया। और मुझे अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं गुलमोहर में हूँ, क्योंकि पता नहीं इतने दिग्गज लोग के साथ फिर दोबारा कब काम करूँगा।
1: बिल्कुल।
0: और जैसे शर्मिला मैम, मुझे एक और घटना याद आ रही है कि एक तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था इस एक्शन, तो एक ऐसा
1: हाँ, एक
0: सीन
1: सीन
0: था
1: में।
0: वहाँ पर
1: जी
0: कुछ झड़प था, आपसी झड़प, उसमें मेरा को एक्टर, उन्होंने मुझे पैर पे मार दिया था, तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। और मनोज सर को लगा कि मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ,
1: अच्छा
0: जबकि मैं दर्द के मारे तड़प रहा था।
1: जी
0: तो एक पॉइंट के बाद जब मैं अपना लाइंस नहीं दिया उनको, तो वो आए और उनको लगा सच में ये कुछ तकलीफ में है, दर्द में है। और आकर उन्होंने फिर मुझे उठाया और तुरंत एम्बुलेंस ला के मुझे भेजा गया हॉस्पिटल। बट मुझे याद है कि शर्मिला मैम का जब रैप अप हो रहा था लास्ट डे उनका, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अरे चंदन को बुलाओ, चंदन को बुलाओ। और उन्होंने केक कट करके वो एक छोटे से प्लेट में रख करके मेरा वेट कर रही थी कि
1: अच्छा।
0: मैं चंदन को खिलाऊंगी पहले, आई डोंट नो। और मुझे था कि भाई बड़े लोग हैं, अपना केक कट हो रहा है, मैं उधर कहीं स्पॉट बॉय लोग के साथ कहीं बैठ के अपना बैठा था। तो प्रोडक्शन भागा भागा आया, अरे सर आपको उधर ढूंढा जा रहा है। मैंने कहा मुझे कौन ढूंढ रहा भाई, शर्मिला मैम। तो जब मैं वहाँ गया तो मैम ने वो प्लेट मुझे दी, अपने हाथों से खिलाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब
1: जिन्हें
0: ये,
1: पर्दे पे बचपन से देखा
0: हाँ जी
1: और वो आज अपने हाथ से आपको केक खिला रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्या बात है।
0: मैंने क्या, मेरे दादाजी ने भी उनकी फिल्में देखी होंगी, मेरे पिताजी ने भी देखी होगी,
1: जी जी
0: और
1: बिल्कुल।
0: मैं उनके साथ काम किया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
1: और मनोज वाजपेयी जी के साथ भी अपने स्क्रीन
0: हाँ
1: शेयर
0: जी
1: किया
0: हाँ जी
1: है,
0: हाँ जी।
1: उनसे क्या कुछ, कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा
0: एक तो
1: किस्सा।
0: हाँ, मुझे एक एक एक सीन याद आ रहा है कि मैं और शांति, एक सीन चल रहा था, वो किचन में थी और फिर वो मेरे पास आती हैं, तो मनोज सर, सब सीन चल रहा था, मनोज सर वहीं पे चेयर लगा करके बाहर बैठ गए। उस दिन उनका सीन भी नहीं था, तो मुझे लगा यार क्यों बैठे हुए हैं ये, भाई मैं नया एक्टर हूँ, मैं मतलब इनसिक्योर हो जाऊँगा मैं, मतलब मुझे डर लग रहा था उनको देख के, कि
1: जी
0: मैं जिनको भाई, जो इतने कमाल के एक्टर हैं, उनके सामने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोल रहा है, नहीं प्लीज़ आप चले जाओ, मेरे मन में यही चल रहा था।
1: अच्छा।
0: और किसी तरह वो सीन बहुत अच्छा हो गया। और फिर जब सीन खत्म हुआ तो सर आए मेरे पास, उन्होंने कहा तू कहाँ से है? मैंने कहा सर मैं तो बिहार से हूँ। अरे बहुत सही, या थिएटर करते हो? मैंने कहा जी सर। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और उन्होंने ऐसे पीठ पे एक बार ऐसे थपथपा के वो चले गए। फिर तो हमारा पहला उनसे जो हम कह सकते हैं मुलाकात, इस तरह से हुआ मनोज सर के साथ मेरा। जी
1: यहाँ पर आपकी पसंद का गीत कौन सा सुनवाना चाहेंगे आप?
0: इस वक्त मैं अपने पसंद का गाना सुनना चाहता हूँ।

0: इतनी दिलचस्प बातें हो रही है आपके साथ।
1: हाँ जी,
0: और अब आते हैं हम चंपारण मटन करके
1: क्या बात
0: एक शॉर्ट फिल्म थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: है। FTI की फिल्म है ये,
0: हाँ
1: रंजन इसके डायरेक्टर हैं, और ये पहली ऐसी फिल्म है जो बज्जिका में बनी है। लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी, मैथिली है ना, लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन ऐसा
0: जी।
1: नहीं है। भोजपुरी के अलावा भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। एक बड़ा खूबसूरत एक कहावत है बिहार में कि कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे बानी, है ना, मतलब
0: तीन
1: हर,
0: कोस पे भाषा
1: हाँ जी हाँ जी
0: बोली बदलती
1: हाँ
0: है।
1: जी। और बज्जिका मेरी मातृभाषा है, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे घर में आज भी जब अगर आपके सामने मेरा फोन आ जाए तो मैं अपनी माता जी से, पिताजी से बज्जिका में ही बात करूंगा। तो इस भाषा में अगर मुझे मिले फिल्म करने के लिए तो मैं कैसे छोड़ सकता था। और ये FTI की फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म इन लोगों ने बनाई। हालांकि मैं उस समय लगातार शूट चल रहा था तो 15 दिन का एक गैप था, मैंने कहा इस बीच ये फिल्म हम शूट करेंगे, स्टूडेंट फिल्म है, मजे मजे में मैं चला गया था। चूंकि एक आदत होती है ना कि आप OTT के लिए काम कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो और अचानक से एक स्टूडेंट फिल्म करने के लिए चले जाते हो जहाँ पे बहुत सारी चीज, ना आपको होटल अच्छा मिलेगा, ना वैनिटी मिलेगी
0: एक
1: कोई,
0: अलग तरह का अनुभव।
1: हाँ जी। बट मैं FTI इसलिए चला गया था इस फिल्म को करने के लिए, उसके दो कारण थे। पहला कि थोड़ा सा मुझे ना एक ब्रेक चाहिए था, जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहा हूँ उसे मुझे एक ब्रेक चाहिए था, मुझे कुछ मज़े करके आ जाएंगे बच्चों के साथ। दूसरा कारण ये कि FTI में मैंने बहुत पहले राइटिंग के लिए अप्लाई किया था, मुझे ये था कि एक्टिंग के लिए तो मेरा होगा नहीं तो क्यों ना अपन राइटिंग में चले जाएं, चूंकि मैं उस समय दैनिक जागरण में जॉब करता था कंटेंट राइटर, तो मैं सोचा कि यहाँ पर भी राइटिंग करके यहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और फिर मैं पूरे दिन एक्टिंग वाले स्टूडेंट के साथ बैठा रहूँगा, उन्हीं के क्लास में बैठा रहूँगा, थोड़ी भगा देंगे क्लासरूम से, बैठूंगा वही एक्टिंग सीखता रहूँगा। बट उस समय मेरा वेटिंग एक रह गया राइटिंग में, और सच पूछी तो अच्छा ही हुआ क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने कुछ पैसे कमाए थे मुंबई आने के लिए, तो उधर खर्च हो जाते हैं।

0: बेहतर है कि, तो ये दो कारण थे। और बड़ी अच्छी फिल्म उन
1: हम्म,
0: लोगों ने बहुत प्यार से बनाया, सब बच्चे ही थे तो 6 या 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, बहुत शिद्दत से बहुत प्यार से हमने ये शूट किया और बहुत इम्प्रोवाइज भी किया हम लोगों ने। बट ऐसा हमने कुछ सोचा नहीं था कि ये
1: अच्छा,
0: फिल्म स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो जाएगी और फाइनल राउंड से बाहर हो जाएगी। कहाँ, हम लोग गांव देहात में छोटे छोटे नाटक करते थे, ऑस्कर के लिए हमारी फिल्म नॉमिनेट हो जाएगी, ये किसने सोचा था।
1: बिल्कुल।
0: बट ठीक है, विधाता को जो मंजूर है, अपन उस पथ पे चल रहे हैं।
1: हाँ, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म गई है।
0: बिल्कुल,
1: इसके साथ ही आरजे बस्तर
0: हाँ
1: फिल्म,
0: जी, हाँ जी,
1: उसके बारे में कुछ बताए। वो भी मेरे ख्याल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गई है। एक
0: बिल्कुल,
1: तरफ ये पंचायत जो मासेस के लिए
0: हाँ
1: है, और
0: जी,
1: एक तरफ ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म, दोनों में काम करने का फर्क कितना है?
0: बहुत खूबसूरत सवाल है मैम ये। मैं इस तरह की फिल्में इसलिए करता हूँ ना, इससे मुझे सुकून और बहुत शांति मिलती है,
1: अच्छा,
0: बहुत प्यार मिलता है। आरजे बस्तर, मैं बस्तर में गया शूट करने के लिए, एकदम बिहर जंगल में, चारों तरफ धान की खेती है और बस्तर बहुत खूबसूरत जगह। जितना भी हम लोग बाहर सुनते हैं कि बस्तर में ये, बस्तर में पूरा बस्तर लाल रहता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई भय नहीं, बहुत ही सपोर्टिव लोग और बहुत प्यारे लोग। मैं पहली बार जीवन में आदिवासी भाइयों से मिला, इतना खातिरदारी करते हैं, ऐसा लगता है कि जान निकाल के रख देंगे आपके स्वागत के लिए।
1: अच्छा,
0: तो जब आरजे बस्तर में शूट कर रहा था, तो एक तो कहानी बड़ी अच्छी, मनीष मानिकपुरी वहीं के रहने वाले हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर, वो आदिवासी लड़की की कहानी है जो रायपुर में काम करता है, दिहाड़ी मजदूर है, और उसको एक लड़की से प्यार है और अपने प्यार के खातिर वो किस तरह से किस हद तक जाता है। और चूंकि आदिवासी में ना, वहाँ महिलाओं पुरुष में कोई ऐसा कुछ है नहीं, वो सब एक समान है, तो वहाँ की महिलाएं भी बहुत सशक्त होती हैं, सारे घर में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वही लेती हैं।
1: हम्म,
0: तो इस फिल्म में भी यही है, जो हमारे अपोजिट हैं उनका ये है। अच्छा, उनको भी आरजे बनना है
1: अच्छा,
0: और मैं पीछे पीछे हूँ, उनका कंधा थामे हूँ
1: हम्म,
0: कि आपको जो बनना है बनो, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। और अपने मोहब्बत के लिए उसका जो कैरेक्टर है रमेश, वो हद से गुजरने के लिए तैयार है। बड़ी बहुत प्यारी कहानी।
1: चलिए, यहाँ पर आपके पसंद का एक गीत हम सुनवा देंगे अपने श्रोताओं को।
0: हाँ जी, हाँ जी।

0: अभी हाल फिलहाल आपकी फिल्म आई गांधारी और आखिरी राइड,
1: हाँ जी, हाँ
0: ये कुछ
1: जी,
0: अलग हटके रोल है जो अब तक आपने किया है,
1: हाँ जी,
0: क्या
1: हाँ जी।
0: अलग है, कैसा अनुभव रहा?
1: गांधारी तो मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि इसके डायरेक्टर देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और मैंने इनको इनका काम जोरम में देख रखा है, और जैसा मैं चाहता था वैसी फिल्म बनी नहीं। और गांधारी करने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है क्योंकि मैं थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता था, है ना। तो मुझे लगा ये एक बेबी स्टेप है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए।
0: एक कदम है वो बस.
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए मैंने वो फिल्म करी। बट ठीक है, हमारा काम सिर्फ अभिनय करना होता है। जैसे ही हमारा रैप अप होता है, ख़त्म हो जाता है सब कुछ कट के बाद, है ना। बाकी ये फिल्म एडिट टेबल पे फिर से फाइनल बनती है, और बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट भी होते हैं जो फिल्म को प्रभावित करते हैं। मेरे हिसाब से गांधारी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। और आखिरी राइड वो भी बहुत मेरे दिल के करीब वाली फिल्म है, इसलिए क्योंकि कहानी बड़ी अच्छी है इसकी, और अनुराग कश्यप सर ने इनको इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। और मुझे याद है कि ये फिल्म भी मैं कहीं और, मेरा शूट था पहाड़ पे किसी और दूसरे फिल्म को लेकर के, लेकिन डेट नहीं मैनेज हो रहा था, मतलब क्लैश हो रहा है डेट, तो मैंने उस फिल्म को छोड़ के आखिरी राइड करना पसंद किया जिसमें बिल्कुल भी बजट नहीं था। बट मेरे लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे अपने पसंद का काम कर सकता हूँ, मेरे लिए अब कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छी कहानी इंपॉर्टेंट है।
0: अपनी पसंद रख सकते हैं अब आप सामने.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बिल्कुल. और ऐसा कौन सा किरदार है जो आप के मन में है कि ये तो मुझे करना है, इस तरह का अगर कुछ किरदार है चाहते हैं? नेगेटिव शेड तो आपने कहा कि नेगेटिव, कोई ऐसा आइडल कि इस तरह का किरदार तो मुझे पर्दे पे उतारना है जब कभी मौका मिले.
1: बिल्कुल। ऐसे तो बतौर अभिनेता अभी तो, मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी तो बहुत नया हूँ, अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर करने हैं, बहुत सारे चीज़ों को जानना है, समझना है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना एक बहुत गंभीर अभिनेता है जो आना बाकी है।
0: सीरियस रोल.
1: हाँ जी, हाँ जी। चूँकि कॉमेडी हो या बाकी चीज़ें हो वो सब तो ठीक है, बट जो मेरा कोर एक्टर है वो एक बहुत ही गंभीर है, बहुत संजीदा है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप हीट देख रहे हो, रॉबर्ट डिनरो और अल पचिनो की फिल्म है जिसमें दोनों एक साथ बैठते हैं, इसमें चोर और पुलिस की कहानी है, और दोनों जब एक टेबल पे बैठते हैं,
0: जी.
1: और वो मेरे ख्याल से 10-11 मिनट का वो सीन है, मैं कई बार उस गंभीरता को महसूस करता हूँ कि मुझे भी कुछ इस तरह कैरेक्टर करना है अपने इस करियर में। इतनी ही स्क्रिप्ट को जज्ब करके, एक एक लाइन को महसूस करके, उस गंभीरता के साथ मैं अपने कैरेक्टर को करूं, मैं ऐसा चाहता हूं।
0: हम भी चाहते हैं कि आपके मनपसंद का किरदार, कैरेक्टर, रोल आपको मिले, संजीदा रोल भी
1: बस
0: मिले और हम उसमें भी आपको देखें.
1: बिल्कुल, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को हमेशा सरप्राइज करता रहूंगा।
0: बिल्कुल. जाते जाते हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक छोटे जगह से आए हैं और यहाँ पर आके आपने अपना मकाम बनाया है. तो जो उभरते कलाकार आते हैं, दो तरह के होते हैं कई बार, प्लान ए और प्लान बी लेकर चलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अभिनय में ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेंगे, इसको भी ऑप्शन लेके चलते हैं. कई बार

0: ऐसा होता है नहीं, पूरी शिद्दत से आते हैं लेकिन थक हार भी जाते हैं, वापस लौट भी जाते हैं। तो आपके ख्याल से आप क्या सलाह देना चाहते हैं उनको, यहाँ पर टिके रहना, अपना मकाम बनाना, क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहली बात कि दूसरों की बात आप ना सुने। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपके अंदर एक बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है, आप मुंबई चले जाओ या इस फील्ड में जाओ, मत सुनो किसी की बात। आप अपने आप से पूछो, क्या वो एक्स फैक्टर है आपके पास? क्या वो हुक पॉइंट है आपके पास जिसकी वजह से आप मुंबई में रह सकते हो या इस फील्ड में पूरी ज़िंदगी अपने आप को दे सकते हो? ये बहुत ज़रूरी है, खुद से पूछना। दूसरे की बातों पे बिल्कुल भी आप मत जाइए। एक बात और कि कभी भी ग्लैमर और मुंबई में ये पैसा, शोहरत, नाम, ये सब देख कर मत आइए। ये आर्ट है। अगर अपने आप को इस आर्ट में समर्पित कर सकते हो तो आओ। बहुत सारे जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो गलती यही करते हैं, उनको चाहिए ग्लैमर, उनको चाहिए बड़ी बड़ी चीज़ें, बट वो आर्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं, और वो अपने जीवन का बहुत ही गोल्डन टाइम बर्बाद कर देते हैं मुंबई में। एक ऐसा ये एज है, ऐसा समय जिस वक्त आपको आपके घर वालों के लिए देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, बजाय आप यहाँ पे अपना समय एक तरह से बर्बाद ही करें, क्योंकि आपने देखा नहीं खुद को, जाना समझा नहीं,
0: जी
1: है ना। और मुझे एक बात और आप लोगों से कहनी है कि दोस्त, सफलता असफलता कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है खुश रहना। और मुझे ये लगता है कि देख, जिंदगी एक ही मिली है, जिंदगी है तो ये सारे गोल हैं, सारे एम हैं, आपके जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्लीज अपने आप को जानिए, समझिए, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। अगर सच में आपके अंदर ये काबिलियत है कि कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप मुंबई या जहाँ कहीं भी हों इस फील्ड में आ जाइए, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट की बड़ी भारी कमी है मुंबई में।
0: बिल्कुल
1: आपका आना बहुत ज़रूरी है, इस इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है और इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे आर्टिस्ट आएँ, चाहे वो किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट हों, राइटर हों, डायरेक्टर हों, पेंटर हों, गीतकार हों, संगीतकार हों, जो भी हों।
0: जी,
1: अगर आप कमाल के हैं तो इस इंडस्ट्री में आपकी बहुत ज़रूरत है।
0: ये बहुत ही सुंदर सलाह दी आपने। और चंदन जी, आपने अपने एक्टिंग का सफ़र तो हमारे साथ साझा किया ही, साथ ही निजी अनुभव और बड़ी ईमानदारी से वो छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर की है, जो हमें बहुत अच्छी लगी है। और पूरी उम्मीद है कि जितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली है और उन्हें बहुत ही वो प्यारी प्यारी सलाह मिली है आपकी
1: जी
0: तरफ से। आपके जो भी भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारी सी बातचीत के लिए।
1: शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ,
0: क्या कहना
1: और
0: चाहेंगे?
1: यहाँ बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे विविध भारती के ऑफिस में बुलाया है। और यहाँ आना किसी सपने से कम नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि बरसों का एक देखा हुआ, एक बालमन में देखा हुआ सपना आज मेरा पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके, विविध भारती के इन दीवारों को देख करके, इन माइक, ये लाइट, ये सब कुछ देख करके। आपको शायद यकीन ना हो कि जब 2:30 बजे मेरा स्कूल छूटता था तो सीधे मैं घर आता था, अपना रेडियो सेट उठाता था, सखी सहेली सुनता था, उसके बाद पिटारा, और फिर रात्रि सेवा में मैं जब जयमाला से शुरू करता था तो गुलदस्ता होते हुए फिर गज़ल वाले प्रोग्राम, और फिर पता नहीं कब मेरी आंखें लग जाती थीं और कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे दादा, कभी मेरी बहन आ करके बंद करते थे रेडियो, या कई बार सुबह तक वो रेडियो चलता रहता था।
0: जी
1: मुझे याद है कि मैं रेडियो से इस कदर स्नेह रखता था बचपन में कि मेरे गली में, आंगन के बगल में गली था, अमरुद का पेड़ हुआ करता था, उसमें मैं कई बार उस अमरूद के पेड़ पे अपने
0: उसका
1: ट्रांजिस्टर को लेकर के चढ़ जाता था, और ऊपर ही कहीं पेड़ के तने में बांध करके रेडियो चल रहा होता था और मैं अमरूद वही नमक लेके खाता रहता था,
0: क्या बात
1: है
0: है।
1: ना। तो रेडियो इस तरह से मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज भी सूट पे जाता हूँ या किचन में होता हूँ या घर में, कहीं भी रेडियो मेरे घर के किसी न किसी एक कोने में बज रहा होता है। रेडियो मुझे लगता है मेरा बचपन का दोस्त है,
0: बिल्कुल
1: एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है।
0: बिल्कुल, हमेशा साथी बनकर,
1: बिल्कुल,
0: क्या बात
1: रेडियो
0: है,
1: सिर्फ इस देश की धड़कन ही नहीं है, ये मेरा भी धड़कन है।
0: क्या बात है, बहुत
1: यस,
0: बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल क्वेश्चन है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजने को हैं, कुछ देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम के सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से बदलते सुरक्षा और तकनीकी परिदृश्य से नई और जटिल चुनौतियां सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमें बेहतर तैयारी, रणनीतिक दूरदर्शिता और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वाधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: पंजाब के मानसा में आज एक दवा विक्रेता ने कथित तौर पर परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी। परविंदर दवा विक्रेता की दुकान पर कथित रूप से मादक पदार्थ बेचने का विरोध करने के लिए गए थे। भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की निंदा की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहाँ पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 4.7% कर दिया है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को सितंबर 2026 का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रिकॉर्ड 5वीं बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

0: इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
1: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
0: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीज पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
3: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0 डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
4: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
5: आइए सुनते हैं फिल्मी भजन।

0: शागिर्द फिल्म से अभी आपने ये भजन सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीस पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
2: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट टीएनसी अप्लाई।

सुन रहे थे महेंद्र कपूर को फिल्म जय संतोषी माँ में। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे थे फिल्मी भजन। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच।

यो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच में। और दोस्तों, आज की इस खूबसूरत सी शाम में सभी लिसनर्स का भी दिल से स्वागत। दोस्तों, आज का मौसम, ये ठंडी हवाएं और गुनगुनी धूप जो थी वो आज कुछ कह रही थी कि उठो, बैग पैक करो और निकल पड़ो किसी अनजान हसीन वादियों की सैर पर, क्योंकि जनाब रोज़मर्रा की इस भाग दौड़ से हम सभी जो हैं वो ऊब जाते हैं और हमारे जो युवा दोस्त हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वही किताबें और वही पढ़ाई, वही कॉलेज जाना, इससे कई बार ऊब जाते हैं। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं एक हसीन वादियों के सफ़र पर। जी दोस्तों, अब आप निकल पड़े हैं किसी अनजान हसीन वादियों की सैर पर। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो क्यों ना आज के इस सफ़र में हम आपको ले चलें दुनिया के उस कोने में जहाँ पहाड़ों की ऊंचाइयाँ बादलों को चूमती हैं और जहाँ की खूबसूरती दिल की धड़कनों को नया सुकून देती है और जहाँ की खामोशी में भी एक मीठा सा संगीत है। और आज हम आपको सैर सपाटा करने के लिए एक ऐसी जन्नत में और ऐसी खूबसूरत जगह पर ले चलेंगे जहाँ पर जाकर आपका दिल भी झूम उठेगा इस खूबसूरत गीत की तरह। तो कार्यक्रम में सुनते हैं पहले ये प्यारा सा गीत।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: अरे नेहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
5: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
4: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
5: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
4: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
5: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
6: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
7: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
8: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: जी हाँ युवा साथी, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा मंच में। और आज के युवा मंच में सैर सपाटा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि हम अपने अपने जो युवा साथी हैं उनको घूमने ले जा रहे हैं एक ऐसी ही बेहद खूबसूरत सी जगह, और जिसका नाम है ऊटी। जी हाँ दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा एक बेहद लोकप्रिय और मनमोहक हिल स्टेशन है ऊटी, और इसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस भी कहा जाता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 2,240 मीटर है। और ऊटी अपनी हरी भरी वादियों, चाय के बागानों, घने जंगलों और शांत झीलों के लिए दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और दोस्तों, ऊटी का इतिहास काफ़ी पुराना और दिलचस्प है, और मूल रूप से यहाँ टोडा जनजाति का निवास स्थान हुआ करता था। और वर्ष 1819 में कोयम्बटूर के ब्रिटिश कलेक्टर जॉन सुलिवन ने इस जगह की खोज भी की थी, और यहाँ की ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी की समर कैपिटल भी बना दिया था। और आज भी यहाँ पर ब्रिटिश काल के बंगले, चर्च, वास्तुकला की झलक जो है वो अक्सर देखने को मिलती है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऊटी की यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के नाम से भी घोषित किया गया था। और ये ऐतिहासिक टॉय ट्रेन जो है वो मेट्टापालयम और ऊटी के बीच में चलती है, और घने जंगलों, गहरी घाटियों, डरावनी सुरंगों और खूबसूरत झरनों के बीच से होकर गुजरती इस धीमी रफ्तार वाली ट्रेन में सफ़र करना किसी जादू

दुई रोमांचक अनुभव से बिल्कुल कम नहीं लगता। और आपको ये बात भी बता दें कि शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा पर फिल्माया गया बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक गीत छैया छैया जो है वो भी ऊटी की इसी चलती हुई ऐतिहासिक टॉय ट्रेन और नीलगिरी माउंटेन रेलवे की छत पर ही शूट किया गया था। तो आइए सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत अपने युवा साथियों को।

0: जी हाँ युवा साथियों, तो इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार से फिर से स्वागत है हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच में। और अब आगे बात करते हैं कुछ और खूबसूरत सी जगहों की। और यहाँ पर आकर आप घूम सकते हैं ऊटी झील और बोट हाउस। और शहर के ठीक बीचों बीच स्थित ऊटी झील एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 1824 में जॉन सुलिवन ने करवाया था। और लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी ये झील जो है वो चारों तरफ से नीलगिरी के पेड़ों से घिरी हुई है। और यहाँ पर स्थित बोट हाउस पर्यटकों के लिए जो पैडल बोट, रोइंग बोट और मोटर बोट की सवारी का आनंद लेने का भी एक मौका मिलता है इसमें। और इसके अलावा डोडाबीटा चोटी के ढलानों पर स्थित ऊटी बोटेनिकल गार्डन लगभग 55 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना वर्ष 1848 में की गई थी। और यहाँ दुनिया भर के पौधे, जड़ी बूटियाँ, रंग बिरंगे फूलों और पेड़ों की हजारों दुर्लभ प्रजातियां जो है वो मिलती हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से 20 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म पेड़ का तना और मखमली लॉन भी है। और इसको देखने के लिए आप ऊटी जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऊटी का जो एक रोज गार्डन है वो भारत के सबसे बड़े गुलाब के बगीचों में से एक है, जो विजयनगरम की पहाड़ियों के ढलानों पर जो है वो सीढ़ीदार रूप में बनाया गया है। और इसकी खूबसूरती जो है वो देखने मिलती है। और लगभग 10 एकड़ में फैले इस खूबसूरत गार्डन में गुलाब जो है वो 20,000 से भी अधिक किस्मों के देखने को मिलते हैं। और जब यहाँ पर गुलाब खिलते हैं तो पूरे बगीचे का नजारा जो है और उसकी खुशबू पर्यटकों के मन को जो है वो मोह लेती है। और श्रोताओ, इसके अलावा ऊटी शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूर डोडाबीटा चोटी नीलगिरी पहाड़ियों की और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई लगभग 2,637 मीटर है। और चोटी के शीर्ष पर एक टेलीस्कोप हाउस भी बनाया गया है। और ये जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तो एक स्वर्ग है। और इसके अलावा आप बहुत से यहाँ पर झीलें, वाटरफॉल और वेन लॉक डाउन, शूटिंग पॉइंट्स, एवलांच और एमरल्ड लेक जो है वो ऊटी की प्रमुख घूमने वाली और बेहतरीन स्पॉट हैं। तो श्रोताओं, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। और उससे पहले सुनते हैं कुछ संदेश और उसके बाद एक और प्यारा सा गीत और फिर जल्द लौटेंगे।
1: वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीज पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
2: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0 डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
4: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
5: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
6: बस यही पूछो व्हाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक व्हाई आपको फ्रॉड से बचाए।
7: हमेशा पूछो WHY, व्हाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
6: आपका साइबर रक्षक।
8: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें।

0: रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
1: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
0: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
1: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, तो इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा मंच में। और कार्यक्रम में आगे बात करेंगे कि ऊटी के मुख्य शहर की हलचल से दूर लगभग 20 से 28 किलोमीटर की दूरी पर एवलॉन्च झील और एमराल्ड झील दोनों स्थित है। और ये दोनों झीलें अपने प्राचीन अछूते रूप और चाय के बागानों से घिरे होने के कारण भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और एवलॉन्च के घने जंगलों में आप फॉरेस्ट विभाग की सफारी का आनंद भी ले सकते हैं और शांत वातावरण में प्रकृति

0: वो भी महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा ऊटी के आसपास घूमने के और भी कई बेहतरीन विकल्प हैं। और यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर कुन्नूर स्थित है, जहाँ अपने चाय के बागानों, सिम्स पार्क और लेम्बस रॉक जैसे व्यू पॉइंट्स के लिए भी ये जाना जाता है। और आपको बता दें कि आप ऊटी में बहुत सारी और भी जगह जो हैं वो घूम सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन ऊटी में घूमने का सबसे समय जो सही है वो है मार्च से जून गर्मियों में, और अक्टूबर से फरवरी तक सर्दियों की ठंडक और हरियाली के लिए जो है ये जगह जो है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जहाँ पे आप जा सकते हैं और घूम सकते हैं। और दोस्तों एक बात आपको और भी बता देते हैं, ये रोचक बात है कि ऊटी बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा के निर्देशकों की भी सबसे पसंदीदा शूटिंग लोकेशंस में से एक रही है। और यहाँ की मखमली घास, घने देवदार के जंगल और खूबसूरत झीलें जो है वो कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही हैं। और हम आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे कि फिल्म कुछ कुछ होता है कि जो सीन्स हैं वो यहाँ पर ही शूट किए गए थे। और इसके अलावा फिल्म राजा हिंदुस्तानी, जो जीता वही सिकंदर, इसके जो गीत थे और इसके जो सीन्स थे, अजब प्रेम की गजब कहानी, इनके सीन्स भी इसी जगह ऊटी में शूट किए गए हैं। तो अगर आप भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बोर हो रहे हैं और कुछ चेंज चाहते हैं, तो हम अपने श्रोताओं से, अपने युवा साथियों से यही कहना चाहेंगे कि काम को थोड़ा सा ब्रेक दें और थोड़ा सा आराम अगर आप करना चाहते हैं तो ऊटी की वादियों में घूमने के लिए प्लान ज़रूर बनाएं। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पूनम को दीजिए इजाज़त और चलते चलते सुनवाते हैं आपको एक संदेश और एक प्यारा सा गीत।
1: इस वेडिंग सीजन गोल्ड शॉपिंग पर गोल्डन ऑफर बाय तनिष्क, जिसमें मिलेंगे 301 रुपीस पर ग्राम ऑफ और मिलेगा बेस्ट गोल्ड रेट, जिसमें बुकिंग या परचेज डेट का जो रेट लोएस्ट होगा वही अप्लाई होगा।
2: ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन और अप टू 20% ऑफ का बेनिफिट भी पाइए।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित व

किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। किसान व बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, और आज जानकारी का विषय रहेगा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। शाम 7:10 पर कार्यक्रम किसानवाणी आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 8 बजे का समय रहेगा विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। 8:30 पर देशगान सुनवाया जाएगा। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें गायक नुसरत फतेह अली खान के गाए कुछ गीत सुनवाए जाएंगे। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीता दी आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। और सभा के अंत में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीत, कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज 8:09 और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के लोगों से घरों में अपनी स्थानीय बोलियां बोलने और युवा पीढ़ी को हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का आह्वान किया है। शिमला में नाट्य महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को नशे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आग्रह भी किया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख

0: करते हुए कहा कि विकास भी विरासत भी का संदेश विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के महत्व को रेखांकित करता है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर जून 2027 तक 900 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। वे आज भटियात क्षेत्र की मलुंडा पंचायत में नवनिर्मित पेयजल योजना का लोकार्पण करने के बाद कैंथली गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कुलदीप पठानिया ने कहा कि क्षेत्र में वर्तमान में 365 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज रिकांगपियो में नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना और बासपा परियोजना के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास व पुनर्स्थापन से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों की विभिन्न समस्याओं, लंबित मामलों और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। राजस्व मंत्री ने पुनर्वास व पुनर्स्थापन के तहत 5 बीघा से कम भूमि वाले पात्र परिवारों के मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सांसद सुरेश कश्यप ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। नाहन में माय युवा भारत द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में बढ़ता नशा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2029 तक देश को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं।
1: आज नशा एक अभिशाप के रूप में हमारी युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में निरंतर लेता जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए, जो कि एक युवा देश है जहां 65% आबादी 35 वर्ष से कम की है, ऐसे देश में अगर युवा हमारे नशे की गिरफ्त में आ जाएंगे तो ये चिंता का विषय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आज उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ जाएगी तो किस प्रकार से हम विकसित राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं तो मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है 2029 में हमारा देश पूर्ण रूपेण ड्रग फ्री भी होगा, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलन में जागरूकता व पंजीकरण शिविर सेवा सेतु का आयोजन किया गया है। 15 अक्टूबर तक चलने वाले शिविर के दौरान लोगों को इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य विद्युत बोर्ड सोलन के विद्युत उपमंडल 2 के सहायक अधिशासी अभियंता विपुल शर्मा ने बताया कि शिविर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण भी किया जा रहा है।
2: इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों तक सूर्य घर योजना की विस्तृत जानकारी, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका लॉनिंग, इसके विषय में है। और अभी तक ये इस कार्य में 15 से 20 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और लोग अभी भी आ रहे हैं।
0: शिविर में अग्रणी यूको बैंक की जिला प्रबंधक तमन्ना मोदगिल ने बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मानदंडों व केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और कम ब्याज दर पर लोन के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: सेवा सेतु अभियान शुरू हुआ है, 13 से 15 तक चलेगा और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, जिसमें सारे नेशनलाइज्ड बैंक बारी बारी आते हैं अपने स्टॉल्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, ताकि लोगों को लोन से बारे में पता चल सके। जो इस स्कीम में लोन मिल रहा है जो 6 लाख तक है, वो सब बैंक आते हैं अपने प्रोसीजर या उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स है और कितना लोन मिल सकता है, यहीं पे आते लोग अपने मतलब फॉर्म भी भर सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते।
0: नाहन में जिला स्तरीय पीएम श्री बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 15 स्कूलों के करीब 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान 3 वर्गों में आयोजित हुई सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। पीएम श्री बाल मेला के जिला समन्वयक संतराम शर्मा ने बताया कि बाल मेले में चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर पर सिरमौर जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
4: MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम सुरमई सांझ में सभी श्रोताओं का स्वागत, और कार्यक्रम में लेकर आए हैं कुछ फिल्मी तराने और

सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में गाया पेंटर बाबू फिल्म से ये गीत। और इस गीत के गीतकार हैं मनोज कुमार और संगीतकार हैं उत्तम जगदीश।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम सुरमई सांझ का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म आशा से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ओ बुल्ला बुली अपने परिवार की फिक्र तो सबना जो होंगी है, पर भविष्य की सुरक्षा बारे तुसा कदी सोचा? हाँ जी, इसा वास्ते डाकघर ले आया है डाक जीवन बीमा, अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य दा भरोसा। डाक जीवन बीमा च कई योजनाएं हैं, जिन्हा की सुरक्षा, संतोष, सुविधा, युगल सुरक्षा ते बाल जीवन बीमा। अपनी जरूरत अनुसार योजना चुनो ते परिवार दे भविष्य जो सुरक्षित बनाओ। हुन शहरी लोका वास्ते भी ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI दी सुविधा आई गई है। गांव हो या शहर, अपने परिवार दी सुरक्षा वास्ते डाकघर तुहांदे कन्ने है। ते फिर देर कजो करा दे, अजे अपने नजदीकी डाकघर जान्यो ते डाक जीवन बीमा दी पूरी जानकारी ले आन्यो। डाक जीवन बीमा, अपने परिवार दी सुरक्षित भविष्य दा भरोसा।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा दुश्मन फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में।
1: ओ बुल्ला बुली अपने परिवार की फिक्र ता सपना ओ चोंदी है पर भविष्य दी सुरक्षा बारे तुसा कदी सोचा? हां जी, इसा वास्ते डाकघर ले आया है डाक जीवन बीमा, अपने परिवार दी सुरक्षित भविष्य दा भरोसा। डाक जीवन बीमा च कई योजनाएं हैं जिन्हां की सुरक्षा, संतोष, सुविधा, युगल सुरक्षा ते बाल जीवन बीमा। अपनी जरूरत अनुसार योजना चुनो ते परिवार दे भविष्य जो सुरक्षित बनाओ। हुन शहरी लोगों वास्ते भी ग्रामीण डाक

जीवन बीमा RPLI की सुविधा आई गई है। गांव हो या शहर, अपने परिवार की सुरक्षा वास्ते डाकघर तुहांदे कन्ने है, ते फिर देर कजो करा दे, अजे अपने नजदीकी डाकघर जान्यो ते डाक जीवन बीमा की पूरी जानकारी ले आन्यो। डाक जीवन बीमा, अपने परिवार की सुरक्षित भविष्य का भरोसा।

शकल लता मंगेशकर की आवाज में गाए जॉनी आई लव यू फिल्म के गीत के साथ आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजां गराएं दियां।

राम राम जी। ता लिया जी अज हाँ ट्याले पर आई पुजे न तुहां कन्ने गल्लां बातां करना कन्ने कन्ने कन्ने तुहां सुनाने मिठे मिठे प्यारे प्यारे लोक गीत कन्ने अज दे कार्यक्रम च अहां तुहां देनियां ने कुछ जानकारियां। ता जियां कि किसान भाइयों तुहें पता है कि मौसम जिहड़ा है सै थोड़ा जिहा बदलना लगी पिया है। हुण कन्ने पिछे जिहड़ी सै बरखा भी खरी होई है तिसते भ्यागा कन्ने संझा दी ठंड जिहड़ी है सै थोड़ी देर बधी होई है ना। कन्ने दिने तां वैसे अज बड़ी छैल सुनहरी जिही धुप्प भी निकली हुई थी तिसते मिंजो लगदा कि अहां दे जिहड़े किसान साथी ने तिन्हां दीआं फसलां ताईं मिंजो लगदा कि इह जिहड़ा मौसम दिने दा था सै बड़ा खरा रिहा होणा है। कन्ने हुण जियां कि अहां दे किसान साथी हन अहां जाणदे हां कि तिन्हां छलियां दी फसल तां जिहड़ी ज्यादातर ले ली होए कन्ने अपणियां छलियां जिहड़ियां ने सै भी बन्नी करी अंदर रखी लईआं होणियां कन्ने फसल जिहड़ी इसे दे नाल कठेरी ली होणी है। कन्ने हुण वारी है दाना दी। तां अज जियां कि मैं उन्दे दिखा दी कि कई अहां दे किसान साथी जिहड़े ने सै दाना बढ़ना भी लगी पे होन कन्ने इस बरखा होने ते कईआं तां किसानां सोचिया कि नहीं जी अहां दी इस वारी दाना दी कटाई च थोड़ा जिहा टाइम जिहड़ा सै होर लगी आना है ना समय जिहड़ा सै होर लगी आना है। कन्ने हो सकदा ज़्यादा बरखा बरने ते किसानां दी जिहड़ी फसल है इस च जिहड़ा सै नुकसान भी हो सकदा था। पर मैनूं जिहा लगदा था कि जिस हिसाबे ने अज सुनहरी धुप्प जिहड़ी होई है छैल दी धुप्प बांकी दी धुप्प होई तिसते अहां दे किसान साथियां जो थोड़ी राहत भी मिलनी है। तां किसान साथी एक गल होर इत्थों गलाना चाहेंगे कि जिहड़ा ये बदलदा मौसम है ना अहां दा जियां जी हुण ठंडी दा मौसम जिहड़ा सै आई चुक्या है कन्ने भ्यागा संझा जिहड़ी है सै ठंड खरी लगे ते तिस चाहे अपना भी कन्ने अपने पशु धन दा जिहड़ा सै कन्ने अपने बजुर्गों दा अपने घर च जिहड़े बच्चे ने तिन्हां दा खास ध्यान रखना जिहड़ा सै बड़ा जरूरी है। क्योंकि किसान भाइयों एक गल तुहें दसी दे कि अहां दे चाहे बच्चे ने घरे चाहे बजुर्ग हैं चाहे अहां दा पशु धन है सब जिहड़े ने सै अहां ताईं बड़े ही उपयोगी न कन्ने अहां ताईं सै सारा ही धन है। तां तिसदा ध्यान रखने ताईं जियां जी अहां दे बजुर्ग हैं घरे च तां अजकल तुहें पता कि हुण अग्ग बालने दा मौसम ते जिहड़ा सै आई है कन्ने चुल्लड़ू च अग्ग पानी जिहड़ी मिंजो लगा सै शुरू करी दित्ती होनी अहां दे किसान साथियां बड़े सारे हैं ना। तां इह गल जिहड़ी तुहें गलानी कि अग्गी दा सेक जिहड़ा हुंदा ना किसान साथी उसे सारिआं ते खरा हुंदा है ना। क्योंकि अग्ग जिहड़ी हुंदी चुल्हे दी अग्ग खास करके है ना चाहे हां कितने भी हीटरां सेकी लैन बलोरां लाई लैन पर चुल्ही दी अग्ग जिहड़ी हुंदी इक वारी तिसने तुहां बेही करी बखे तपी लेंगे ना तां मिंजो लगदा कि फिर अगर तुहां अद्धा घंटा भी अग्ग सेकी लई तां तुहां दा पूरा शरीर जिहड़ा सै गर्म हो जाणा कन्ने तुहें ठंड लगण दी कोई गुंजाइश जिहड़ी इस नहीं रहणी है। तां किसान साथी इक गल तुहां कन्ने इह गलाना चाहांगे कि इस बदलदे दे मौसम च तुहां अपना जिहड़ा कन्ने अपने पशु धन दा अपने घरे दा घरे अपने बच्चे बजुर्गों दा जिहड़ा सै पूरा पूरा ध्यान जिहड़ा सै रखना है ताकि अहां दा जिहड़ा पशु धन है जिहड़े तुहां पशु पाले होए न है ना तिन्हां दा भी खास ध्यान रखना है कि तिन्हां जिहड़ा जिहड़ी जे घराळां न है ना जित्थों सै रहिंदे न तित्थों दा जिहड़ा जी तुहां दिखणा तापमान जिहड़ा है ना तिन्हों दिने जिहड़ा दुपहर है थोड़ी धुप्प भी लगे है ना संझा व्यागा जिहड़े सै तिन्हों जिहड़ा जी तिन्हां दा आश्रय है अंदर जित्थों सै रहिंदे घराळां अंदर तां सै भी सुक्की पक्की होए इस गल्ला दा भी तुहां खास ध्यान रखना है। तां किसान साथीओ अज दे कार्यक्रम च तुहां कन्ने होर भी बड़ियां सारियां जानकारियां असां सांझा करनियां न पर पहले अपने किसान साथियों जो सुनांदे न इक मिठा दिया प्यारा दिया लोक गीत।

0: जी हाँ, तां किसान साथियों, एक मिठा दे प्यारा दे लोकगीत तुहां सुनिया, कन्ने लोक भजन जेड़ा से तुहां सुनाया। हाँ, कन्ने किसान साथियों, एक गल तुहाने और करनी है कि इन्हां जेड़े जी अहां दा कार्यक्रम है अज मौजां ग्राएं दियां, ते इस च अज अहां गल करनी है न्यूनतम समर्थन मूल्य दे बारे च। तां किसान साथियों, कन्ने कन्ने कन्ने तुहां जेड़े मिठे मिठे लोकगीत अहां बिच बिच सुनांदे रहना है। कन्ने एक गल तुहाने और गलाना चाहांगे किसान साथियों कि जैलो भी तुहां अपनी फसल जेड़ी है तिसो ले लैंदे ना, फसलां दी जेड़ी पैदावार जेड़ी इसे हो जांदी, कन्ने तिसो जाई करी तुहां मंडियां च जाई करी बेचना चाहते, तां कई वारी अहां क्या हुंदा कि जेड़े अहां दे किसान साथी ने सै फसलां जैलो मंडी च बेचना चाहते, तां कुछ बिचौलिए जेड़े हुंदे तां सै तिन्हां नूं सही मूल्य जेड़ा सै नहीं दे पांदे। कन्ने किसान भाई जेड़े सै अपने उत्पादन दा जेड़ा सा पूरा लाभ जेड़ा सा तिन्हों नहीं मिल पांदा, तां इस तरह सरकार एक स्कीम चलाई है, कहीं तिसा नाँ ही है, किस तरह तिसे बोलते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, कहीं इस विच किसान जेड़े से सीधे तौर पर अपनी फसला जेड़ी से मंडी च बेची भी सकते, कहीं इसका उचित दाम जेड़ा ऐसा है, उचित मूल्य जेड़ा ऐसा भी हासिल करी सकते हैं, तो तुसे बोलते फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। कहीं एक बिल्कुल सरल शब्दों से तुम्हें बोलिए कि ये किसानों ताई सरकार द्वारा दी जाने वाली एक प्राइस गारंटी या कि सुरक्षा कवच जिससे बोली सकते सह भी है। इसका मतलब ये भी है कि यदि कुछ साले च मन्नी लिया जियां पैदावार जड़ी से ज़्यादा हो जाती है, कने खुले बाजार यानी मंडियां च फसलों के दाम जड़े से बड़े ज़्यादा अगर थले आई जाते हैं, बड़े गिरी आते हैं, तो सरकार जड़ी से किसानों जो इस तय मूल्य ते कम कीमत पर जड़ी से नहीं छड़ी, कने सरकार जड़ी से इस फसलों ताइए जड़ा सा तय रेट जिसे MSP भी बोलते हाँ, से जिस पर किसानों का जी फसल है तिसे खरीदी है। तो मनी लिया अगर जियाँ गेहूं की फसल है, कहीं तिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये क्विंटल आई जाता है, तो बाजारे कोई भी व्यापारी या किसान जोड़ा से 2000 या 2200 का भाव दिता है, तो किसानों जो इसका नुकसान उठाने की जरूरत जी इसे बिल्कुल भी नहीं है। कहीं कहीं इस गरंटी ने मिलने वाले जोड़े लाभ है ना किसानों ताई, तिना बारे भी गल करिए कि फसलों कट्टने के समय जल्द मंडियों से बड़ा ज़्यादा माल आई जाता ना, तो अक्सर क्या होंगे कि भाव जोड़े इनसे गिरी आते, तो इसते MSP किसानों जो ऐसा मौका है जोड़ा सह भारी नुकसान या फिर अपनी जी फसल है औने पौने दाम पर जी सह बेचने ताइए किसान जोड़ा तो मजबूर नहीं करी सकते। कहीं इसते किसानों जो फसल बोने से पहले पता चली जाता कि तिन्हों घट तो घट कितना भाव जोड़ा सह कितना दाम जोड़ा सह इस फसलों का मिलना है, कने इसते से अपनी कमाई का पहले ते ही अनुमान लगाई सकते, कने इसते से ना तो तिन्हें कोई कर्जा लेना पौंदा, कने ना ही तिन्हें कोई निवेश ऐसा करना पौंदा, कने इस ताइए से अपनी पहले योजना जड़ी से तैयार करी सकते। तो तुम इसका पता लगा तो होना है कि MSP जड़ा है जी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसे अहां दे किसान साथियों जो कितने लाभ हैं। तो किसान साथियों, इस कार्यक्रम च असां और भी गल्लां बातां करनियां, तुहां कन्नै और भी जानकारियां सांझा करनियां ने, तो उससे पहले ले सुन दे एक संदेश, कने उसके बाद सुनवांदे एक और मीठा दिया लोकगीत।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई।

0: क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: अपनी जिंदगी को करें थोड़ा और रोशन,
2: क्योंकि तनिष्क लाए हैं फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स।
1: डिस्कवर 10,000 प्लस एक्सक्लूसिव नेचुरल डायमंड ज्वेलरी डिजाइंस क्राफ्टेड टू पुट अ शाइन ऑन यू।
2: गेट अप टू 20% ऑफ।
1: धर्मशाला रोड ऑपोजिट पोस्ट ऑफिस कांगड़ा।
2: TNC अप्लाई।

जी हाँ, तां किसान साथियों तो हाँ मिठा दिया प्यारा दिया लोक गीत जेड़ा सा हुण सुनिया कने कार्यक्रम च अग्गे बढ़दे कने गल करा दे हे यहाँ किसान दियां फसलां दा न्यूनतम समर्थन मुल्य। तां इस तरह तो है जियां कि अहां इस गीते ते पहले भी दस्या कि किसानां नूं फसलां बोणे ते पहले ही पता लग जांदा कि तिसदा कम से कम कितना जेड़ा सा दाम ते नूं भाव जेड़ा सा मिलना है, कने इस ते पैसे अपनी कमाई दा अनुमान जेड़ा सा भी पहले ही लगाई सकदे, कने तिसते कर्जे ते भी सह बची रहिंदे, कने तिस च कितना निवेश करना ते कितना धन तिना लाना है तिसदे बारे च भी सही योजना जेड़ी सह सह टैमे दी सही टैम समय च जेड़ी सह बनाई सकदे। कने एक गल होर है कि सरकार दा ये नियम है कि किसान दी कुल लागत मीनस कि जिस जिना बीज खाद पानी च कितना मेहनत कीती हो कितना खर्चा कीता तिसदा कम से कम 1.5 गुणा जोड़ी करी जेड़ी ऐसे न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करदी है, जिससे किसान जो तिना दी मेहनत दा जेड़ा सा सही फल जेड़ा सा मिली भी जांदा है। कने इस कन्ने एक गल तुसें होर दसनी है कि सरकार जेड़ी ऐसे लगभग जेड़ियां 3 फसलां न जिस च गेहूं धान दाली सरसों आदि पर जेड़ी असें न्यूनतम समर्थन मूल्य दिंदी, कने जिन्हां उगाने ताईं किसाना जो जेड़ा असें लगातार प्रोत्साहित भी कीता जांदा है, कने ताकि तिन्हां पता है कि इन्हां फसलां बेचने पर तिन्हां नूं कोई रिस्क जेड़ा असें नहीं लैना पौंदा, कने इन्हां जेड़ियां 3 फसलां न तिन्हां उगाने पर अगर तिन्हां दी पैदावार ज़्यादा होंदी है कने मुल्य जेड़ा असें घट्ट

0: ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਂਦੇ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਬਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਨੇ ਹੁਣ ਮਿੰਜੋ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा गराई दिया या आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा क्लाइमेट चेंज हो वाटर गवर्नेंस हो पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे नए अवसर पैदा करे
1: सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के घर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है उन्होंने कहा कि अब वो जमीनी स्तर पर लौटना चाहते हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता

पार्टी को मजबूत करने के लिए समय देना चाहते हैं। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इनकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हविलचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदांबी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नॉड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Prime Minister Narendra Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. He said the government's constant endeavour is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well.
1: नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहाँ जिस विजन के साथ आया हूँ वो है पावर टू एम्पावर।
0: मीनवाइल स्पीकिंग

इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
7: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही है कि किसान वाणी के माध्यम से हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और शनिवार को संध्या 7:10 से 7:45 तक प्रसारित किया जाता है। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाता है। किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं अश्विनी शर्मा।
6: और मैं हूं राजेंद्र।
7: राजेंद्र जी, कैसे हैं आप?
6: अश्विनी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, और हम आशा करते हैं कि हमारे किसान और बागवान श्रोता भी ठीक ठाक होंगे, इस समय हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुन रहे होंगे। क्योंकि अश्विनी जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोज एक महत्वपूर्ण विषय कृषि, बागवानी और पशुधन से संबंधित लेकर आते हैं।
7: जी, तो किसान भाइयों, जैसा कि आजकल ठंड थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ठंड में जो है वो अपना ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने पशुधन का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब आपका पशुधन और आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप कृषि और बागवानी से संबंधित कार्यों को अच्छी तरह से कर पाएंगे।
6: जी देखिए, काम की बातों में आज हम बात करेंगे खुम्भ के सूत्रकृमि और उनके प्रबंधन के बारे में।
7: जी,
6: साथ ही करवाएंगे मनोरंजन पहाड़ी लोक गीतों से
7: और सुनाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय रहेगा छिलका रहित जौ।
6: जी, बात करते हैं अश्विनी जी खुम्भ के सूत्रकृमि और उनके प्रबंधन के बारे में।
7: जी, अन्य फसलों की भांति खुम्भ में भी कई प्रकार के कीड़े मकोड़े और सूत्रकृमि क्षति पहुंचाते हैं, जिनमें सियारिड मक्खी, फोरेड मक्खी, स्प्रिंग टेल्स, माइट और सूत्रकृमि खुम्भ की बिजाई से लेकर तोड़ान तक किसी भी अवस्था में क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त खुम्भ एक अंदरूनी फसल होने के कारण उत्पादन कक्षों में सही मात्रा में नमी और तापमान रखने की आवश्यकता रहती है, जो कि खुम्भ के सूत्रकृमियों के प्रजनन के लिए उपयुक्त होता है। कम अवधि की फसल होने के कारण और अवशेष समस्या कीटनाशकों का खुलेआम प्रयोग वर्जित करती है, इसलिए खुम्भ उत्पादन में सूत्रकृमियों से बचने के लिए पहला कदम इनके प्रवेश को रोकना है।
6: जी देखिए, सूत्रकृमि का प्रकोप फसल में किसी भी समय हो सकता है। सूत्रकृमि सूक्ष्म जीव है, खुम्भ का कवक जाल इन सूत्रकृमियों का मुख्य आहार होता है। सूत्रकृमि खुम्भ का प्रमुख परजीवी है, जिसका खुम्भ उत्पादन के समय प्रवेश पूरी फसल को नष्ट कर देता है। कवक जाल को खाने वाले सूत्रकृमि परजीवी, खाद और केसिंग मिश्रण को खाने वाले सूत्रकृमि मृतभक्षी और परभक्षी सूत्रकृमि।
7: जी, सबसे पहले बात करते हैं परजीवी सूत्रकृमि की। इन सूत्रकृमियों के मुंह जो होते हैं वो सुई जैसी स्टाइलेट पाई जाती है, जिसकी सहायता से यह कवक जाल को छेद करके कवक का रस चूसते हैं। इसके फलस्वरूप कवक जाल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इन सूत्रकृमियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जैसे कि 500 से 100 गुना प्रति सप्ताह। इस कारण कुछ ही सूत्रकृमियों का प्रवेश कुछ दिनों में पूरी फसल को नष्ट कर देता है।
6: बात करें मृत भक्षी सूत्रकृमि की, तो ये सूत्रकृमि परजीवी सूत्रकृमि से ही क्षतिग्रस्त बैगों में भारी संख्या में पाए जाते हैं। इन सूत्रकृमियों का स्टाइलेट इसमें नहीं होता, जिसके कारण ये खुम्भ को प्रत्यक्ष रूप से हानि नहीं पहुँचा पाते हैं, परंतु ये सूत्रकृमि बैगों में गंदगी फैलाते हैं और कई बार ये अपने शरीर पर हानिकारक जीवाणुओं का वहन भी करते हैं।
7: जी, बात करें परभक्षी सूत्रकृमियों की, तो यह

0: सूत्रकृमि बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, जो परजीवी सूत्रकृमियों और कीड़े मकोड़ों के अंडे और ब्रूथियों को खाते हैं। सूत्रकृमियों के स्रोत की बात करें तो इनका मुख्य स्रोत अपास्तुरीकृत कंपोस्ट व केसिंग मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त यह खुम्ब उत्पादन में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों से भी फैलते हैं। कई बार खुम्ब की मक्खियां भी सूत्रकृमियों के वाहन का काम करती है।
1: खादु की सतह धसना पाया जाता है। बढ़ते कवक जाल के सफेद रंग का धीरे धीरे भूरा होना, खुम्ब का कम और देर से उत्पादन होना, खुम्ब कलिकाओं का भूरा होना, उत्पादन में गिरावट होना और कई बार पूरी फसल का असफल होना।
0: जी, बात करें इनकी रोकथाम की तो किसान भाइयों, आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कंपोस्ट बनाने का फर्श, बिजाई करने और कंपोस्ट बनाने में उपयोग में लाए जाने वाले सभी उपकरणों को 2% फार्मेलिन के घोल से आपको धोना होता है। बिजाई से 24 घंटे पहले उत्पादन कक्ष और उसमें बने चौखटों पर 2% फार्मेलिन का छिड़काव अवश्य करें। उत्पादन कक्ष प्रवेश द्वार पर 1 से 5 इंच गहरा पोष बनाकर उसमें 2% फार्मेलिन का घोल भरें तथा जूतों के तलवों को इस घोल में डुबोकर ही कक्ष में प्रवेश करें। कंपोस्ट और केसिंग मिट्टी का सही ढंग से पास्तुरीकरण करें। छिड़काव में उपयुक्त होने वाला पानी स्वच्छ होना चाहिए। लंबी विधि से खाद तैयार करते समय चौथी पलटाई के समय 2% कार्बोफ्यूरान अवश्य मिलाएं। श्वेत बटन खुम्ब ढींगरी फसल चक्र अपनाएं। खुम्ब की मक्खियों का नियंत्रण करें। फसल होने के बाद पेटियों को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 8 से 12 घंटे तक अति उष्मायित अवश्य करें। पूरा उत्पादन होने के बाद खाद को उत्पादन कक्ष से दूर गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दें।
1: जी, बात करें सेसिड मक्खी की तो सेसिड की प्रौढ़ मक्खियां इतनी सूक्ष्म होती है कि शायद ही दिखाई देती है। इन्हें इनके छोटे लार्वो की सहायता से पहचाना जा सकता है, जो पद रहित और सफेद नारंगी रंग के होते हैं। इनका मुंडक स्पष्ट नहीं होता। इनके मुंडक के स्थान पर 2 दृढ़ बिंदु मौजूद होते हैं, जो इसे एक्स का आकार देते हैं। सेसिड की प्रजनन क्षमता बहुत तीव्र है, जिसके फलस्वरूप ये उत्पादन को भारी हानि पहुंचाता है। लार्वा, कवक जाल, डंडों के भारी भाग, डंडों और गीलों की संधि स्थल को भक्षण करते हैं। खुम्बों में लार्वों की उपस्थिति और बाद में जीवाणु संक्रमण के कारण खुम्ब भूरे और बदरंग हो जाते हैं और उनमें छोटे छोटे स्त्रावी दाग पैदा हो जाते हैं।
0: जी, बात करें प्रबंधन और रोकथाम की तो सबसे पहले बात करते हैं अग्रिम नियंत्रण की विधियों की, जिनमें की साफ सफाई प्रमुख है। साफ सफाई खुम्ब उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। खुम्ब उत्पादन में साफ सफाई खाद बनाने से पहले ही शुरू हो जाती है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उत्पादन कमरों के आसपास स्पेंट कंपोस्ट की ढेरी पड़ी ना हो। खाद बनाने के प्रांगण में खाद बनाने से 24 घंटे पहले 2% फार्मालिन का छिड़काव करना आवश्यक होता है। बात करें दरवाजे और खिड़कियों में जाले लगाने की तो खुम्ब की मक्खियां बढ़ते हुए कवक जाल की महक की ओर आकर्षित होती है। खुम्ब उत्पादन के समय यह मक्खियां उत्पादन कक्षों में प्रवेश करती है और बीजित कंपोस्ट और खुम्ब क्यारियों में प्रजनन करती है। छोटे आकार के कारण यह मक्खियां साधारण जालों में आसानी से आ जा सकती है, इसलिए इन मक्खियों को प्रवेश को रोकने के लिए महीन जाले लगाना बहुत आवश्यक है।
1: तो देखिए, बात हुई खुम्ब के सूत्रकृमि और उनके प्रबंधन की, तो अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन का। तो आइए सुनते हैं स्मूथ स्वरों में ये सहगान।

0: किसान भाइयों, समूह स्वरों में भी आपने सुना ये सहगान। आइए अब आपको सुनाते हैं एक जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय है छिलका रहित जौ। बातचीत में भाग ले रही हैं डॉक्टर मधु पटियाल और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं राजेंद्र।
1: किसान भाइयों नमस्कार, आज हमारे बीच आए हैं डॉक्टर मधु पटियाल जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश से आए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद श्री राजेंद्र जी।
1: किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है छिलका रहित जौ, पोषण, स्वास्थ्य और किसानों के लिए नए अवसर। तो डॉक्टर साहब, छिलका रहित जौ है क्या?
2: देखिए, सबसे पहले तो जौ कई किस्म के होते हैं। जैसे आपने साधारण तौर पे देखा होगा जौ, तो उसमें छिलका लगा होता है जो हम खा नहीं सकते या जिसको हम गेहूं के साथ पीस नहीं सकते हैं, और मोस्टली किसान भाई इसको जानवर के हरे चारे के लिए लेते हैं। तो जब हम छिलका रहित जौ की बात करते हैं, जिसको हम हलेस बाल भी बोलते हैं, तो ये छिलका रही जौ जो है उसका भूसा जो दाने से जो है बिल्कुल अलग हो जाता है, और जब हम प्रोसेसिंग करते हैं या थ्रेशिंग करते हैं तो इसमें जो इसका छिलका है वो हट जाता है, क्योंकि इसमें जो बाहरी परत है वो हटती नहीं है। तो जो चोकर जिसको हम बोलते हैं, जो ब्रान जो है और जो एंडोस्पर्म है, वो उसका बरकरार रहता है। तो ये जो जौ है ये जो बहुत ही अच्छा है और बहुत पौष्टिक जौ होता है, और इसको हम होल ग्रेन जिसको हम पूर्ण अनाज भी बोलते हैं उस तरह से कहा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, गेहूं और हलेस जौ में जो पोषण में क्या अंतर रहता है?
2: ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि लगभग लोग, किसान भाई या हम लोग भी गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा ये जौ है ये पीछे चला जा रहा है। हालांकि दोनों ही, गेहूं और जौ दोनों ही खाद्य अनाज है, बहुत ही पौष्टिक अनाज है, पर फिर भी इनमें कुछ जो पोषकता में बहुत अंतर आता है। जैसे कि अगर हम रेशे की बात करते हैं तो जो जौ में लगभग 2 गुना रेशा होता है। अगर हम हलेस बाले की बात करते हैं तो हलेस बाले में लगभग 26

0: 36% रेशा है, जबकि गेहूं में जो है 14% जो है वो रेशा है। इसी रेशे में अगर हम बात करेंगे तो जो घुलनशील रेशा जो है वो लगभग 8% है और जो गेहूं में जो है 2% है। तो रेशे के हिसाब से जो जौ है वो बहुत ही पौष्टिक आहार है। और अगर हम जौ की सबसे बड़ी खासियत जो है वो बीटा ग्लूकन है। अगर ये जो आहार में जो ये रेशा है ये लगभग 7.2% जो है वो हरलेस बार्ले में होता है और जो गेहूं में है वो 0.6% होता है। साथ ही साथ अगर हम और पोषक तत्वों की बात करें तो जो जौ है उसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जो जौ है वो बहुत ही अच्छा पोषक तत्व प्रदान करने वाला हमारा खाद्य अनाज है जिसे हम सभी को कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लेना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, जौ से स्वास्थ्य संबंधी क्या-क्या लाभ हो सकते हैं?
0: राजेंद्र जी, जैसा हमने पहले भी बात की कि हल्लेस जो बाले है या जो ये छिलका रहित जो जौ है ये रेशे से भरपूर होता है और ये सबसे इसका सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो है वो बीटा ग्लूकन नाम का एक घुलनशील रेशा होता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं बीटा ग्लूकन, तो ये क्या करता है कि जो हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाने में मदद करता है। और जब अध्ययन किए गए हैं इसमें और अध्ययनों से ये साबित हुआ है कि अगर दैनिक लगभग हम 3 ग्राम बीटा ग्लूकन लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल में काफी कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो बीटा ग्लूकन है वो हमारी पाचन को धीमा करता है। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन के बाद जो शुगर बढ़ने की गति है वो कम हो जाती है, उसमें थोड़ा कमी आती है और इससे जो है इंसुलिन प्रतिक्रिया और रक्त जो शर्करा है जिसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर वो कम हो सकता है। तो शुगर नियंत्रण में भी ये जौ जो है वो बहुत ही सहायक है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो इसमें रेशा बहुत अधिक है तो जिन भी लोगों को जो कब्ज की समस्या होती है तो पाचक में सुधार के लिए जौ बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, रक्तचाप प्रबंधन में सहायता करेगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा हृदय जो है वो भी स्वस्थ रहेगा। जब हम जौ खाते हैं खासकर जो ये हल्लेस बार्ले है या छिलका रही जौ है तो इससे क्या होता है कि हमारा पेट जो है वो काफी देर तक भरा रहता है और हमें बार बार खाने की इच्छा नहीं होती। तो जैसे कि जब हम कम खाएंगे तो हमारा वजन भी नियंत्रित रहेगा। साथ ही साथ जैसे पोटेशियम है, फास्फोरस है या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे जौ में जो है पॉलीफिनोल्स हैं, ये सारे मनुष्य के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी खनिज हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स तो तनाव कम करने में बहुत ही सहायक रहते हैं। तो ये सभी जो लाभ है ये सभी हम सभी जौ को लेके हम अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हल्लेस जौ का उपयोग हमारे किसान भाई किस प्रकार कर सकते हैं?
0: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है राजेंद्र जी कि हल्लेस जैसे हमने इसके स्वास्थ्य के बारे में बता दिया कि क्या लाभ होते हैं, इसमें क्या न्यूट्रिशन होते हैं, पर कैसे इसको कंज्यूम किया जाए। तो जैसे कि हल्लेस जौ है इसमें छिलका नहीं होता है तो ये गेहूं की तरह ही दिखता है। किसान भाई इसको पीस करके आटा बना सकते हैं जिससे रोटियां बना सकते या चीले या बिस्किट्स बनते हैं या फिर मल्टीग्रेन जो आटा है वो भी बना सकते हैं। इस आटे को जब ये पीसते हैं जौ तो या तो वो अकेले ही इस्तेमाल कर सकते हैं या गेहूं के आटे के साथ भी वो 50-50% हिसाब से वो मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दलिया है वो किसान भाई बनाते हैं और काफी इसके लोग भी आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो इस दलिये को वो यूज करते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जैसे हम अपर हिमालय में जाएंगे जैसे पांगी है, भरमौर है, इन इलाकों में जो किसान भाई हैं वो इसका सत्तू के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और सूप इसका बनाते हैं। साथ ही साथ कई जो पीने के लिए पेय पदार्थ है वो भी किसान भाई इसका बनाते हैं और उसको उपयोग करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने बात कही कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले जनजातीय जिले जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी और भरमौर में इस फसल की खेती को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। छिलका रहित जौ इन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से क्यों उपयुक्त है?
0: देखिए, जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं और जौ की बात करेंगे तो जो हमारे जनजातीय जिले हैं जैसे लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर और किन्नौर की, तो इन जो जिलों में इन क्षेत्रों में ये बहुत ही अधिक रूप से उपयोग होता है, उगाया जाता है। तो जब हम उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं

0: वाले इन क्षेत्रों में किसान भाई विशेष रूप से इसको यूज कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे हिमाचल प्रदेश में किसान भाई इसे खेतों में कैसे उगा सकते हैं?
0: देखिए, जैसे कि अभी अक्टूबर नवंबर में जौ का जो बुआई का सीजन आ रहा है, तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को बीज का चयन बहुत अच्छे से करना है, अच्छी गुणवत्ता और प्रमाणित बीज लेना है। और जैसे कि अगर हम छिलका रही जौ की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास BHS 352 एक वेराइटी थी जो हिमाचल प्रदेश में बहुत ही अधिक लोगों ने उसको सराहा, लेकिन अब हमारे पास दो और नई किस्में आ गई हैं, BHS 497 है जो 22 क्विंटल तक पैदावार दे रही है, और अभी हाल ही में हमारी एक जो वैरायटी है जो BHS 500 है जो 25 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार देती है, उसका भी हमने आगे आने वाली है। तो इस वैरायटी में, इस किस्म में जो है वो रतुआ रहित है ये किस्म, और साथ साथ में प्रोटीन इसमें 11% है और जिंक भी ज्यादा है। तो किसान भाई सबसे पहले जो है बीज का अधिक अच्छे से चयन करें, गुणवत्ता वाला बीज ले, और इसकी बुआई जो है 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक किसान भाई करते हैं। साथ ही साथ जब हम खेती की बात करते हैं, तो जब भी बिजाई करनी है तो वो हमेशा हम कहते हैं बिजाई जो है पंक्तियों में करें, और इसमें जो पंक्तियों में जो अंतर होना चाहिए वो 23 पंक्ति से पंक्ति में अंतर जो 23 सेंटीमीटर का होता है, ताकि जो भी हम निराई गुड़ाई या फसल प्रबंधन करते हैं वो बड़ी आसानी से हो जाए। साथ ही साथ अगर किसान भाई जो नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं या जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो इस ये फसल उनके लिए बहुत ही अच्छी है।
1: डॉक्टर साहब, इस जौ की बिक्री के कितने अच्छे अवसर हमारे किसान भाइयों को मिल सकते हैं?
0: देखिए, जब हमने इतनी बातें की कि ये स्वास्थ्य लाभ है, इसको हमने ऐसे लगाना है, तो नेचुरल सी बात है कि इसका जो हम उपभोक्ताओं के बीच में इसका जो मांग है वो बहुत ही बढ़ रही है, क्योंकि इसके स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए लोग जागरूक हो रहे हैं। और जब हम बात करते हैं कि इनको बेचना कैसे है, कहाँ है, तो लगभग काफी सहकारी समितियां, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या स्थानीय प्रोसेसिंग इकाइयां भी हैं जहां पे लोग आजकल इसका आटा, दलिया या सत्तू या फिर फ्लैक्स लेके इसको बेचते हैं। अगर हम अपनी बात करें, तो हमने जैसे अभी बोधरेणी में जो है, कांगड़ा में है एक इलाका, वहां पे जो हल्लेस बारे लगाया था, और ये टाटा फाउंडेशन का एक ट्रस्ट था, और इन्होंने किसानों ने लगभग 70 किलो तक ने उनको बीज दिया, और इसी बीज को जो अगर हम बोलें कि लांबा लोग जो मैक्लोडगंज में है या जो बैशनाथ के साइड में, वो उस सीड को लेके गए और किसानों को बहुत मुनाफा हुआ। तो मतलब ये है कि हर्लिस बार्ले का आज से 5 से 10 साल में बहुत ही प्रचलन होने वाला है, तो किसान भाई इसको आसानी से बेच सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्या ये पशुओं के लिए भी उपयोगी है?
0: देखिए रचिंदर जी, पशुओं के लिए जौ बहुत ही उपयोगी है, पर जब हम पशुओं की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि द्विउपयोगी जौ को यूज करना चाहिए। द्विउपयोगी मतलब दो उपयोग होने चाहिए, और इसमें हमारी किस्म है BHS 380। द्विउपयोगी जौ में क्या होता है कि जैसे हमने जौ लगाई है तो 70 दिन में हम उसको काट लेते हैं, जो पशुओं को हम चारा दे देते हैं, और उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है और बीज देती है, तो इसके बीच में जो फसल जो है वो बहुत अच्छी आती है, और इसके बीज की गुणवत्ता और इसकी उपज में कोई फर्क नहीं पड़ता। जौ जो है पशुओं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन जब हम हल्लेस जौ की बात करते हैं, तो इसकी बड़ी खासियत यही है कि इसे मानव भोजन के लिए ही प्रोसेसिंग या इस्तेमाल में किया जाना चाहिए, ताकि इसके खाद्य बाजार में अच्छे किसानों को मूल्य प्राप्त हो सके।
1: और डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई है, वे इसका बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
0: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बीज सब कुछ तो किसान भाई कर लेंगे, लेकिन गुणवत्ता बीज को हम कहाँ से लें? सबसे पहले जो हमारे गांव में ही या हमारे आसपास में जो ADOs हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको या क्षेत्र विशेष जो भी हमारे अफसर्स हैं एग्रीकल्चर के, उनको इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है, जो कि कृषि विभाग द्वारा आपको प्रमाणित बीज दिलवाएंगे, या फिर किसान भाई जो है वो स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय जो पालमपुर में है उनसे संपर्क कर सकते हैं, या बीज के लिए वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और फिर अपनी रिक्वेस्ट देके फिर हम उसका उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आगामी मौसम की तैयारी कर रहे किसानों के लिए एक सफल फसल सुनिश्चित करने के लिए आप किन प्रमुख कृषि पद्धतियों की सलाह

0: हैं।
1: देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जब भी हम किसी फसल की बात कर रहे हैं, चाहे वो जौ है, गेहूं है या कोई भी फसल है, तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि बीज पे ध्यान दें, क्योंकि आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तो हम बोलते हैं कि बीज जो है वो प्रमाणित बीज होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से बीज लेना है, प्रमाणित बीज लेना है। आप किसके लिए ले रहे हैं, चाहे वो चारे के लिए ले रहे हैं तो द्विउपयोगी बीज लेना है, अगर आप खाने के लिए ले रहे हैं तो आपको छिलका रहित बीज लेना है, अगर आप दाने के लिए ले रहे हैं तो आपको दाने वाला जौ लेना है। तो बीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है जो किसान भाइयों को देखना है। साथ ही साथ वैज्ञानिक विधि से खेती करना बहुत जरूरी है, जिसमें मैंने बताया कि आपको उसकी पंक्ति में लगाना है, 23 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगाना है, वो बहुत जरूरी है किसान भाइयों को। सबसे पहले जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो हम मिट्टी की जांच करने के लिए बोलते हैं, तो मिट्टी की जांच करके ही जो भी आगे की प्रक्रिया है खाद देनी है, उस तरह से किसान भाई दे सकते हैं। पर जौ जो है मोस्टली जो है कम लागत वाला जो धान्य है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें जो फर्टिलाइजर है उसका नहीं यूज होता है। तो ये सारी चीजें किसान भाई तैयार करके अपनी खेती को अच्छा बना सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने छिलका रहित जौ, पोषण, स्वास्थ्य और किसानों के लिए नए अवसर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों से साझा की। इस जानकारी के लिए आपका बेहद धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी ये जानकारी पूर्ण बातचीत, जिसका विषय था छिलका रहित जौ। डॉक्टर मधु पटियाल से जानकारी हासिल कर रहे थे राजेंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस जानकारी पूर्ण बातचीत का पूर्ण लाभ उठाएंगे। जी, अब कार्यक्रम में समय हो चला है पुनः मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं कृतिका तनवर की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, कृतिका तनवर की आवाज में अभी आपने सुना ये पहाड़ी लोकगीत।
1: अश्विनी जी, घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। सभी अपने किसान बहनों भाइयों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: कार्यक्रम किसान वाणी अभी आपने आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुना। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुरा धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912।
2: बिजली के खंभों और तारों की कोई समस्या हो
1: या बिजली के बिलों से संबंधित कोई समस्या हो
2: या हो कम या अधिक वोल्टेज की समस्या,
1: टूटी हो सर्विस तार
2: या समस्या हो ट्रांसफार्मर की,
1: विद्युत संबंधी हर तकनीकी समस्या का समाधान होगा टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1912 पर।
2: ये सुविधा IVRS और कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है।
1: हम आपकी सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर हैं।
2: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मौजूदा युग में डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए खोले अवसरों के द्वार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोगों से युवा पीढ़ी को स्थानीय बोली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का किया आह्वान। सांसद सुरेश कश्यप ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर जताई चिंता। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। जन भागीदारी और सामुदायिक जागरूकता पर बल। और ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद होगा लागू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान युग में डिजिटल शक्ति इस बदलाव के प्रमुख चालकों में से एक बनकर उभरी है और डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए अधिक से अधिक अवसरों के द्वार खोले हैं।
4: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
3: राज्यपाल कविंद्र

0: गुप्ता ने प्रदेश के लोगों से घरों में अपनी स्थानीय बोलियां बोलने और युवा पीढ़ी को हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का आह्वान किया है। शिमला में नाट्य महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को नशे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आग्रह भी किया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास भी विरासत भी का संदेश विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के महत्व को रेखांकित करता है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर जून 2027 तक 900 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। वे आज भटियात क्षेत्र की मलुंडा पंचायत में नवनिर्मित पेयजल योजना का लोकार्पण करने के बाद कैंथली गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कुलदीप पठानिया ने कहा कि क्षेत्र में वर्तमान में 365 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सांसद सुरेश कश्यप ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। नाहन में माई युवा भारत द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में बढ़ता नशा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2029 तक देश को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं।
1: आज नशा एक अभिशाप के रूप में हमारी युवा पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में निरंतर लेता जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए, जो कि एक युवा देश है जहां 65% आबादी 35 वर्ष से कम की है, ऐसे देश में अगर युवा हमारे नशे की गिरफ्त में आ जाएंगे तो ये चिंता का विषय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आज उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारी युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ जाएगी तो किस प्रकार से हम विकसित राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं तो मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है 2029 में हमारा देश पूर्ण रूपेण ड्रग फ्री भी होगा, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसा शिक्षा तंत्र बनाना है जो भारतीय मूल्यों पर आधारित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत के भविष्य और युवाओं को सशक्त बनाने वाला बड़ा कदम बताया है।
2: साथियों, एक और हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत के युवाओं को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करने का माध्यम बन रही है। साथियों, स्कूली शिक्षा में भी बड़े स्तर पर काम हुआ है। देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल विकसित किए गए हैं। शिक्षा केवल किताबी न रहे, बच्चों में इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, इसके लिए 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुई है।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
4: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9वें महीने में।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
5: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
5: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
5: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
6: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई,
6: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को आपदा तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत शिमला द्वारा राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मशोबरा में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आपदाओं के दौरान जान माल के नुकसान को कम करने और छात्रों से सुरक्षा दूत बनने का आह्वान किया गया। उधर राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला में भी आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर भूकंप से बचाव और सुरक्षित निकासी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस बीच कुल्लू जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आपदा मित्रों, नेहरू युवा केंद्र व एनएसएस के स्वयंसेवकों सहित प्रदूषण नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने की दिशा में आकांक्षी जिला चंबा में एक नई मुहिम की शुरुआत हुई है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने आज चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चनेड सहित 5 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं व कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हर्ष महाजन ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा के गुर सीख पाएंगे और जिला के अन्य 20 स्कूलों में इसी माह ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक महाविद्यालय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 5 दिवसीय अंतर कॉलेज युवा उत्सव ग्रुप 2 संगीत का विधिवत शुभारंभ किया। इस 5 दिवसीय उत्सव में प्रदेश विश्वविद्यालय के 42 कॉलेजों के विद्यार्थी गीत संगीत की 11 अलग अलग विधाओं में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि ऐसे आयोजन प्रतिभाशाली युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान में सकारात्मक माहौल बनाने में गीत संगीत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। युवा पीढ़ी की चर्चा करते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस पीढ़ी की ताकत को पहचानते हुए ही 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था। सुनील शर्मा बिट्टू ने युवाओं से भारतीय संविधान व लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने और नशे से दूर रहते हुए देश व समाज के सजग प्रहरी बनने का आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मौजूदा युग में डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए खोले अवसरों के द्वार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लोगों से युवा पीढ़ी को स्थानीय बोली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का किया आह्वान। सांसद सुरेश कश्यप ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर जताई चिंता। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। जन भागीदारी और सामुदायिक जागरूकता पर बल। और ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद होगा लागू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
7: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
8: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
7: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।

0: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार विभाग में एमएलटी अर्थात मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 18 पद बैच वाइज आधार पर भरे जाने हैं। ये पद जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरे जाने हैं। इन पदों को भरने हेतु आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार से हैं: आवेदक ने किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10:2 की परीक्षा विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण की हो। आवेदक ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी एमएलटी अथवा बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी या बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में डिग्री उत्तीर्ण की हो। इन पदों को भरने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है तथा जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के पद 9 भरे जाने हैं। सामान्य श्रेणी ईडब्ल्यूएस का एक पद, सामान्य श्रेणी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का एक, अनुसूचित जाति के 5, अनुसूचित जनजाति के 2 पद भरे जाने हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट www.hphealth.nic.in पर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको पुनः बता दें 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में एक सूचना सुनिए। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा चयनित 101 जेबीटी अभ्यर्थियों की सूची जिला कांगड़ा में रिक्त पदों को भरने हेतु इस कार्यालय में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुई है और इन सभी के प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। अतः सभी चयनित अभ्यर्थी उक्त स्कूल में 15 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे अपने मूल प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति सहित उपस्थित हों। और प्रमाण पत्रों की सूची आपको बता दें, इसमें मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र, 10:2 मूल प्रमाण पत्र और टेट पास प्रमाण पत्र के साथ साथ जेबीटी प्रमाण पत्र या समकक्ष और हिमाचल का मूल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र के साथ साथ नवीनतम सत्यापित फोटो जो है साथ में एक होनी चाहिए। सूचना समाप्त हुई।
1: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
2: सौगात नई, कुछ नए तराने,
3: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
1: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
2: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
1: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
2: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
3: जो पहुंचे दिल से दिल तक।

फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में आपने ये गीत सुना और कार्यक्रम में आगे आपको सुनवा रहे हैं सतिंदर सताज की आवाज़ में ये पंजाबी गीत।

सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

0: आज के इस सबरस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
4: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
5: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
4: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
5: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
4: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
5: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा।

0: कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: लीजिए सुनते हैं देशभक्ति गीत।
2: नफरत

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और 9 न्यूज़ एट 9 रिले किए जाएंगे।
1: विशाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार ऊर्जा प्रौद्योगिकी सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।

0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एन मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
1: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
2: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
1: To strengthen the party.
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
4: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
5: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28% की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5% और 18% कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
6: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
5: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
7: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
5: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
1: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
9: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
10: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
1: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: forex market, the rupee appreciated by 50 paise to close at 95 rupees and 28 paise against the US dollar. With Intercard's report, Rajesh Lake, Akashwani News.
1: India's Anand Kumar Velkumar has won the bronze in the 500-meter sprint at the World Skate Games 2026 in Asunción, Paraguay, adding another medal to his expanding collection on the international speed skating stage. The 23-year-old speed skater from Tamil Nadu finished on the podium in 40.856 seconds, continuing his incredible run following his unprecedented accomplishments at the 2025 World Speed Skating Championships. Velkumar had earned bronze in the 500 meters and gold in the 1000 meters and marathon in the 2025 championships as well, making him a two-time world champion. Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall along with thunderstorms, gusty winds and lightning over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan and Muzaffarabad tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney agree to deepen strategic partnership in trade, energy, technology, security and people-to-people ties. UN Minister L. Murugan resigns from Council of Ministers and membership of Rajya Sabha. New Delhi reaffirms Ladakh is an integral part of the country, says no denial by China can change this fact. UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. Domestic stock markets rally over 1.5%. Sensex closes at 73,034. And Anand Kumar Velkumar wins bronze in the 500-meter sprint at the World Skate Games 2026 in Paraguay. And that is all in the news at 9. Good night.
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक ही कलाकार। श्रोतो, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गायक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान दुनिया के सबसे महान कव्वाल और सूफी संगीत के अप्रतिम गायक थे और उन्हें प्यार से शहनशाह कव्वाली भी कहा जाता है। और इनके प्रारंभिक जीवन की अगर बात की जाए तो 13 अक्टूबर 1948 को इनका जन्म हुआ और इनका जन्म फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में हुआ था और उनका असली नाम परवेज़ फ़तेह अली खान था। बचपन में परिवार जो था वो उन्हें प्यार से पैज़ी भी कहता था और उनका जो संगीत का घराना कम से कम 9 पीढ़ी पुराना था। उनके पिता उस्ताद फ़तेह अली खान एक मशहूर कव्वाल थे और उनके पिता चाहते थे कि नुसरत डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन उन्हें संगीत से भी दूर रखा जाता था। लेकिन नुसरत का रुझान बचपन से ही संगीत और हारमोनियम की तरफ था। तो आइए सुनवाते हैं आपको उनका गाया हुआ एक गीत।

जी हाँ श्रोताओं, तो नुसरत फ़तेह अली खान वर्ष 1964 में अपने पिता के इंतकाल के बाद उन्होंने कव्वाली की विरासत को संभाला और उन्होंने अपनी खुद की कव्वाली पार्टी भी बनाई और पारंपरिक सूफी कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और वर्ष 1980 और 90 के दशक में उन्होंने वैश्विक मंच पर कव्वाली की पहचान बनाई और वर्ष 1985 में इंग्लैंड के वोमेड फेस्टिवल में उनकी प्रस्तुति ने पश्चिमी देशों के श्रोताओं को भी मंत्रमुग्ध कर दिया था। और उन्होंने पीटर ग्रेबिल जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया और कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के संगीत में भी अपना योगदान दिया। उनके गाए गए गीत जैसे दमादम मस्त कलंदर, तुम्हें दिल की भूल जानी पड़ेगी और छा पतले सब चीनी आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू था कि सुनने वाले घंटों तक महफिलों में खोए रहते थे और उन्हें शहनशाह कव्वाली की उपाधि भी मिली थी। तो आइए सुनवाते हैं आपको उन्हीं की आवाज़ में एक कव्वाली।

48 वर्ष की आयु में 16 अगस्त 1997 को लंदन इंग्लैंड में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। और उनके गाए हुए गीत और कव्वालियाँ जो हैं वो आज भी हम सभी के दिलों में राज करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम धाम गीतांदी।

उनका पहला लोकगीत आपने सुना शेर सिंह की आवाज में। कार्यक्रम में अगला लोकगीत शामिल कर रहे हैं ओम प्रकाश व साथियों की आवाजों में।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी, और अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं सपना की आवाज में।

0: पवन डोगरा की आवाज में आपने ये लोकगीत सुना।
1: विकास संवाद,
0: एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बातें होंगी विकास की।
2: विकास के इस सफर में हमारे हम सफर होंगे विभिन्न विभागों से आए प्रतिनिधि।
0: कार्यक्रम के इस अंक में आपके रूबरू होंगे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा।
2: कार्यक्रम का प्रसारण होगा मंगलवार दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:05 पर।
0: तो सुनना न भूलिएगा
1: विकास संवाद।

कार्यक्रम धाम गीता दी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं राजेश कुमार का गाया हुआ।

नीलम शर्मा की आवाज में आपने ये लोकगीत सुना। कार्यक्रम में अगले लोकगीत से पहले ये सूचना सुनिए। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा चयनित 101 जेबीटी अभ्यर्थियों की सूची जिला कांगड़ा में रिक्त पदों को भरने हेतु इस कार्यालय में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुई है और इन सभी के प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। अतः सभी चयनित अभ्यर्थी उक्त स्कूल में 15 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे अपने मूल प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति सहित उपस्थित हों। और प्रमाण पत्रों की सूची इस प्रकार है: मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र 10.2 मूल प्रमाण पत्र, टेट पास प्रमाण पत्र, जेबीटी प्रमाण पत्र या समकक्ष, हिमाचल का मूल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र और नवीनतम सत्यापित फोटो 1। ये सभी जो सत्यापित प्रमाण पत्र हैं इनकी सूची के साथ आप 15 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे बताए हुए पते पर पहुंच जाएं। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धाम गीतांदी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में सभी श्रोताओं का स्वागत। और पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म है ख्वाब और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: चोरी चोरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में।
1: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
2: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से, और जिसे गाया है आशा भोंसले ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

अभी आप सुन रहे थे सुहागन फिल्म से एक गीत जिसे गाया था लता मंगेशकर और तलत महमूद ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म है रूप तेरा मस्ताना।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए ब्लैकमेल फिल्म के गीत के साथ आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग

ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश की बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।